ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 26वीं तिथि। तदनुसार 16 जून सन 2026 प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की पहली सभा अब आरंभ होती है।

0: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। आइए आप सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री कैनेडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्र

0: राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। फ्रांस के एवियो शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने के विषय में रात्रि भोज का आयोजन किया। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो की वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। दोनों देशों ने समझौते पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षर होने की पुष्टि की है, जबकि औपचारिक हस्ताक्षर समारोह शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होगा। समझौते के तहत होर्मुज जलडमरु मध्य को फिर से खोलने, समुद्री यातायात को बहाल करने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित अन्य दो पर 60 दिन की वार्ता शुरू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष के सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए काबो वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही काबो वर्डे के गोलकीपर वोजिन्हा ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। काबो वर्डे करीब 5 लाख आबादी वाला छोटा सा द्वीपीय देश है। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। उधर दांबुला में एक दिवसीय क्रिकेट की त्रिकोणीय श्रृंखला के रोमांचक मुकाबले में श्रीलंका ए ने भारत ए को सुपर ओवर में 7 रन से हरा दिया। भारत ए ने विपराज निगम और सूर्यांश शेडगे के अर्धशतकों की मदद से 265 रन बनाए। श्रीलंका ए ने भी 50 ओवर में 265 रन बनाए। सुपर ओवर में श्रीलंका ए ने 16 रन बनाए जबकि भारत ए 9 रन ही बना सका। अब फाइनल में पहुंचने के लिए भारत ए को बुधवार को अफगानिस्तान ए पर जीत दर्ज करनी होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर प्रातः के 6:05 और 22 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए आज का विचार। विषय है असहयोग के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण। आलेख और वाचन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का है।
3: सहयोग के जन्म के

बाद से कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई हैं, जिनमें से कुछ बहुत कष्टदायक हैं। 1921 में मैंने देश को जो सलाह दी, उसके ऊपर मैंने 2 वर्ष तक प्रार्थना पूर्व मन से चिंतन मनन किया था। असहयोग के विरुद्ध जो कुछ भी लिखा गया है, लगभग वह सभी कुछ मैंने बहुत ध्यानपूर्वक और खुले दिमाग से पढ़ा है, और इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप मैं आपको आज सूचित करने की स्थिति में हूँ कि 1921 में मेरे जो विचार थे और जिन्हें मैंने पिछली बार भेंट होने पर आपके सामने व्यक्त किया था, न केवल मैंने उन विचारों को नहीं बदला, बल्कि उल्टे मेरे वे विचार दृढ़ से दृढ़तर हुए हैं। मेरी यह नम्र राय है कि पिछली 2 पीढ़ियों में देश को उतना लाभ नहीं हुआ जितना लाभ उसे अहिंसक असहयोग का उद्भव होने के बाद हुआ है। अहिंसक असहयोग के विषय में इतिहास का क्या निर्णय होगा, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। मेरा ये भी निश्चित मत है कि उस हर छात्र ने जिसने स्कूल या कॉलेज छोड़ दिया था, उस हर सरकारी नौकर ने जिसने वह नौकरी छोड़ दी थी, जिसे गलती से सार्वजनिक सेवा कहते हैं, इस प्रकार के त्याग से बहुत लाभ उठाया है और वैसा करके कुछ खोया नहीं है। और ये बात कि असहयोग आंदोलन के बावजूद सभी लोगों ने सरकारी नौकरियां नहीं छोड़ दी और हमारे सभी लड़कों ने सरकारी स्कूलों को त्याग नहीं दिया, मेरे सिद्धांत की विफलता का द्योतक नहीं है। सभी स्त्री पुरुष तो सत्यनिष्ठ नहीं होते, किंतु क्या इसीलिए सत्य की प्रभावकारिता या अच्छाई पर संदेह नहीं किया जा सकता? मैं एक कदम और आगे बढ़कर आपसे कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति वर्तमान घटनाओं का ध्यान पूर्वक और निष्पक्ष भाव से अध्ययन करेगा, उसे इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिलेंगे कि बहुत से सरकारी नौकर जिन्होंने अपनी नौकरियां छोड़ दी और बहुत से छात्र जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया था, आज अपनी योग्यता का बहुत अच्छा परिचय दे रहे हैं।

अभी आप सुन रहे थे आज का विचार। विषय था असहयोग के प्रति गांधी जी का दृष्टिकोण। आलेख और वाचन श्री प्रमोद कुमार शर्मा का था। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में लीजिए पहला भजन, सुनिए आनंद कुमार और साथियों के स्वरों में।

अभी आपने सुना आनंद कुमार और साथियों का गाया हुआ यह भजन। अगला भक्ति गीत सुनिए चंदन दास और साथियों की आवाज़ों में।

आनंद कुमार और साथियों के गाए इस भक्ति गीत के साथ ही आज का वंदना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं रामचरितमानस गान। आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे बालकांड की दोहा संख्या 160 से दोहा संख्या 162 की अंतिम चौपाई तक सस्वर गायन। मुख्य गायन स्वर है महेंद्र कपूर का।

राजा प्रताप भानु उस घोर वन में रात्रि विश्राम के लिए आश्रय देने वाले मुनि से बहुत प्रभावित हुआ, अतः सविस्तार उसका नाम धाम जानने की इच्छा प्रकट की। मुनि कपट में डुबोकर मधुर वचन बोला, तुम पवित्र विचार तथा तीक्ष्ण बुद्धि वाले हो, अतः तुमसे यदि कुछ छिपाऊं तो मुझे दोष लगेगा। जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी भी उत्पत्ति हुई, तब से मैंने दूसरी देह नहीं धारण की, इसी कारण मेरा नाम एक तनु है। फिर उसने राजा को तपस्या की महिमा बताई। तप के बल से ही ब्रह्मा जगत की रचना करते हैं, विष्णु उसका पालन करते हैं और तप से ही प्राप्त शक्ति से रुद्र उसका संहार करते हैं।

अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस गान। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए हमारे आज शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा।

रात 10 बजे से रात 11 बजे तक आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। आज का कार्यक्रम आपके लिए लेकर आएंगे श्री जयप्रकाश राजपुरोहित। सुगम संगीत सुनिएगा रात 9:15 पर और शाम 7:45 पर, और लोक संगीत का समय रहेगा रात 8:30। ग्रामीण भाइयों के लिए ग्रामीण जगत का प्रसारण हम करेंगे शाम 7 बजे। आज का कार्यक्रम पेश करेंगे डॉक्टर भरत कुमार जाजड़ा और श्री अनिल सिंह। समय याद रखिएगा शाम 7 बजे।

युवा साथियों के लिए युवाणी का प्रसारण हमारे केंद्र से होगा शाम 5:05 पर। आज का कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी वसुंधरा आचार्य और दिशा भाटी। शाम 6:05 पर होगा फिल्म संगीत। अलावा इसके फिल्म संगीत दिन में 2:30 पर और 12:40 पर, साथ ही 11:35 पर भी आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत। बहनें सुनेंगी घर आंगन कार्यक्रम दिन में 1:05 पर। आज का कार्यक्रम बहनों के लिए लेकर आएंगी श्रीमती खुशबू हर्ष और श्रीमती संतोष चारण।

0: दिन में 11 बजे सुनिएगा हमारे केंद्र से एक विशेष कार्यक्रम, केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज आप सुनेंगे इसका 15वां अंक। सिंधी कार्यक्रम आप सुनेंगे 12:10 पर, जिसका प्रसारण हम आकाशवाणी जयपुर के आमेर चैनल से करेंगे। प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1307वां अंक आज आप सुनेंगे 9:30 पर, और 10 होगा फिल्म संगीत। 8:45 पर सुनना न भूलिएगा। श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा आज आप सुनेंगे इसका 11वां अंक। वाचक स्वर श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा और संयोजन श्री अमित सिंह का रहेगा। समय याद रखिएगा 8:45। ये थी कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:45 हुए जाते हैं। खेती की बातें कार्यक्रम में सुनिए श्रीमती मुक्ता जैन की वार्ता, सोलर पंप से सिंचाई।
1: किसान भैया राम राम। किसान भैया, सिंचाई रे लिए अनुदान पर सोलर पंप खेती सु चोखी आय रे लिए सुनिश्चित सिंचाई रे साधना रो होनो घणो आवश्यक है, जिसु किसान वर्ष में एक सु अधिक फसलारी खेती कर सके है। किसाना ने सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने रे लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है, जिरे तहत किसाना ने सिंचाई रे विभिन्न संसाधना पर सब्सिडी भी उपलब्ध करवाई जावे है। इन्हीं कड़ी में केंद्र सरकार द्वारा देश भर में कुसुम योजना चलाई जा रही है, जिनके तहत किसाना ने सब्सिडी पर सिंचाई रे लिए सोलर पंप

0: दिया गया है। अलग अलग राज्य री सरकारां रे तहत अलग अलग सब्सिडी प्रदान करी जावे है। आपाणी सरकार किसाना रे सोलर पंप उपलब्ध करावण रे वास्ते 75% सब्सिडी दे रही है। राज्य रा इच्छुक किसान इन योजना रो लाभ लेने रे वास्ते आ ऑनलाइन आवेदन कर सके है। पीएम कुसुम योजना रे तहत सोलर पंप पर दी जाने वाली सब्सिडी प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा महाअभियान रे तहत सूक्ष्म सिंचाई ने बढ़ावो देवण में राजस्थान सोलर वाटर पंप रे संचालन रे सागे देश रो अग्रणीय राज्य बन्यो है। इन योजना रे तहत किसान ने सिंचाई संबंधी सुविधा रे लिए सोलर पंप स्थापित करने वास्ते सब्सिडी दी जा रही है। इन अनुदान पर सोलर पंप हेतु आवेदन रे वास्ते आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता हुआ करे है। और अपने आवेदन करण समय किसान रे पास कई कई दस्तावेज होना चाहिए बेन प्रकार है, जिया कि अपने सबसे पहला परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, और दूसरो कृषि भूमि री जमाबंदी होनो चाहिए, और सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली स्थापित री सूचना होनी चाहिए। अगर आ नहीं है तो आपने एक शपथ पत्र भर रहे देनो होसी कि जी आपा सोलर पंप लगावण वास्ते। एर योजना री अधिक जानकारी रे लिए आपने नवीन एर नवीकरण ऊर्जा मंत्रालय री आधिकारिक वेबसाइट www.mnre.gov.in पर विजिट करनो है। एर इनके अलावा टोल फ्री नंबर है 1800180333 पर कॉल भी कर सका हाँ। आज खेती किसाना में लोगों रो बिजली कटौती री काफ़ी परेशानियाँ रो बने सामनो करनो पड़े है। अनियमित बिजली रे कारण फसला री सिंचाई समय पर कोनी हो पावे है, जिसू अपनी उत्पादन क्षमता पर भी बुरो प्रभाव पड़िया करे है। वही कारण है कि लोग बिजली रे वैकल्पिक साधना रे रूप में डीजल या जनरेटर रो भी इस्तेमाल कर रहा है। इनमें काफ़ी महंगो हुए है। हालांकि हाल कुछ वर्षा में भारत में सोलर पंप री मांग काफ़ी बढ़ गई है, जिसू लोगों में बिजली रे महंगे साधना पर निर्भर कोनी रहनो पड़े है। आज आपणी सरकार है बिजली री जी अलग अलग श्रेणी है वे अलग अलग रेट तय करया है, जिया कि घरेलू खेती ग्रामीण शहरी कमर्शियल एर इंडस्ट्रियल इस्तेमाल रे वास्ते बिजली री अलग अलग दरिया हुआ करे है, जिन्हें बिजली कंपनियां तय करे है। अगर आपरे पास खेती रे लिए बिजली कनेक्शन है तो आप इनो इस्तेमाल अपने घर में नहीं कर सका हाँ, और यदि आपरे पास घरेलू कनेक्शन है तो आप इनो इस्तेमाल अपने खेती कार्य में कर सका हाँ। खैर यदि आप इसो करते पकड़ा जावा तो अपने ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सके है और अपने भारी जुर्मानों रो भुगतान करनो पड़े।
1: खेती की बातें कार्यक्रम में अभी आपने सुनी श्रीमती मुक्ता जैन की वार्ता सोलर पंप से सिंचाई। लीजिए अब सुनिए सतीश देहरा और साथियों का गया हुआ ये लोक भजन।

0: अभी आपने सुना सतीश देहरा का गाया हुआ लोक भजन। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। भारत स्लोवाकिया देशयोः संबंधः समग्र सहभागित्वेन संवर्धितः अस्ति। ब्रातिस्लावा नगरे प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना तस्य स्लोवाकिया समकक्षीयेण रॉबर्ट फिको इत्यनेन सह वार्तालापस्य अनन्तरं श्रम प्रवास डिजिटल तंत्रज्ञान रक्षादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं उभौ पक्षौ समग्र एकादश सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। पश्चात् संयुक्त वार्ताहर सम्मेलनं संबोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् संबंधानां उन्नतिः सह विश्वासानां प्राथमिकतानां भविष्यस्य च प्रतीकः अस्ति। कस्यापि भारतीय प्रधानमन्त्रिणः यूरोपीय राष्ट्रस्य प्रथमायां यात्रायां श्रीमोदी अवदत् यत् उभौ देशौ रक्षाक्षेत्रे सन्धिपत्रे हस्ताक्षरं कृतवन्तौ।
2: AI का भविष्य केवल इनोवेशन से नहीं बल्कि ट्रस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ह्यूमन डिग्निटी पर आधारित होना चाहिए। रक्षा सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास और स्ट्रेटेजिक

0: कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया, इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपतिना पीटर पेलेग्रेनी इत्यनेन स्लोवाकिया देशस्य सर्वोच्चं प्रशासकीय सम्मानं द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास इति प्रधानमन्त्रिणं श्रीमोदिनं प्रदत्तम्। श्रीमोदी स्लोवाकिया देशस्य राष्ट्रपत्ये सर्वकाराय नागरिकेभ्यश्च विशिष्ट सम्मानाय कृतज्ञतां प्रकटितवान्। द्वयोः राष्ट्रयोः यात्रायाः तृतीये चरणे G7 शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय प्रधानमन्त्री श्रीमोदी अद्य फ्रांस देशस्य एवियन नगरं सम्प्राप्ष्यति। तस्य आगमनावधौ फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन औपचारिक रूपेण तस्य स्वागतं क्रियते। द्विपञ्चाशत्तमं G7 शिखर सम्मेलनं ह्यः एवियन नगरे समारब्धम्, यत्र विश्वस्य प्रमुखानां अर्थव्यवस्थानां नेतारः प्रमुखेषु वैश्विक समाह्वानेषु विचार विनिमयं कुर्वन्ति। राष्ट्रपतिः मैक्रों वर्यः प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय समाह्वानान् निवारणाय संयुक्तरूपेण कार्याचरणस्य विषये कार्यरात्रिभोजस्य आयोजनम् अकरोत्। ततः पूर्वं सः अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प, यूके देशस्य प्रधानमन्त्री कीर स्टार्मर इत्यादिभिः नेतृभिः सह G7 देशानां नेतृणाम् औपचारिकरूपेण स्वागतं विहितवान्। यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षा उर्सुला फोन डेर लेयेन, यूरोपीय परिषदः अध्यक्षः एंटोनियो कोस्टा च शिखर सम्मेलने भागं भजन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः ह्यः फ्रांस देशे मोनाको देशस्य राज्यमन्त्रिणा क्रिस्टोफ मिरमेंड, विदेश कार्य सहकार मन्त्रिणा इजाबेल बेरो आमादेई, वित्त अर्थव्यवस्था मन्त्रिणा फेडरिक कोटालोर्डा इत्येतैः सह मेलनं कृतवान्। सामाजिकान्तर्जालीये पटले श्रीगोयलः अवदत् यत् द्वैपाक्षिकव्यापारं सुदृढं कर्तुं नूतनान् निवेशावसरान् अन्वेष्टुं भारत मोनाको देशयोः मध्ये उपवेशनम् आर्थिकसहकारं सुदृढं कर्तुं च केन्द्रितम् आसीत्। संघलोकसेवा आयोगेन UPSC इत्यनेन अस्य वर्षस्य लोकसेवा प्राथमिक परीक्षायाः परिणामाः घोषिताः। UPSC ह्यः सूचितवान् यत् अस्मिन् वर्षे 1,000+ रिक्तस्थानेषु लोकसेवा मुख्यपरीक्षायाः कृते आहत्य 13,000+ अभ्यर्थिनः चिताः सन्ति। परीक्षार्थिनः UPSC इत्यस्य आधिकारिक वेबफलके upsc.gov.in इत्यत्र प्राथमिक परीक्षाफलं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। इति वार्ताः।
2: मीडियम वेब 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। समय मिलाना चाहिए तो मिलाइए, सुबह के ठीक 7:17 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

नई सुबह, नया आगाज, एक नई किरण के साथ। खुशियों की महक हो या अपनों का हो साथ, खोलिए पलकें और मुस्कुरा कर देखिए जरा, आज फिर जिंदगी ने थामा है आपका हाथ। सुप्रभात कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को हितेंद्र व्यास का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बेहद खूबसूरत सुहानी सुबह

आपका स्वागत कर रही है और इसके लिए हाजिर हैं हम आपके पसंदीदा कार्यक्रम सुप्रभात के साथ। जी हाँ साथियों, सुबह का ये वक्त वाकई बेहद जादुई होता है। जब रात का अंधेरा छंटता है तो सिर्फ सूरज ही नहीं उगता बल्कि हमारी उम्मीदें, हमारे सपने, हमारी जिंदगी एक नई करवट लेती है। धीरे धीरे सुबह हुई जाग उठी जिंदगी। जी हाँ, रात की आगोश से निकलकर अब पूरी कायनात जाग चुकी है। पंछियों की चहचहाट शुरू हो गई है, हवाओं में एक नई ताजगी घुल गई है। तो क्यों न हम आप सभी अपनी इस सुस्ती को कहें अलविदा और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजाएं और आज के दिन की शुरुआत पूरी ऊर्जा, जोश और उमंग के साथ करें। और साथ हो आपका हमारा, और तो फिर गीत संगीत भी होना लाजमी है।

जी हाँ साथियों, कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इसी कश्मकश में भूल गए कि खुद का दिल कहाँ रखा। जी हाँ, सुबह का ये वक्त कुछ पल भगवान के लिए और उसके बाद कुछ पल अपने लिए। साथियों, ये जीवन की भाग दौड़, ये जीवन का सफ़र चलता रहेगा, लेकिन हाँ, कुछ पल रुकना आवश्यक होता है, खुद के लिए, अपनों के लिए। कार्यक्रम जारी रहेगा, आपसे बातें होती रहेंगी। एक छोटा सा विराम।

साथियों, हमने बात करी सुबह की, भोर की और अपने लिए समय निकालने की। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने शरीर को सजाने संवारने में या दुनिया की दौड़ में आगे निकलने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपने अंदर, अपने भीतर झांकना ही भूल जाते हैं। ईश्वर ने हमें इतना शरीर दिया, सुंदर सा मन दिया, तो बस अपने लिए कुछ समय निकालने का मतलब इसको मालिक की जो ये कुदरत ने हमें नेमत बख्शी है इसको स्वस्थ रखें। केवल शरीर को मोड़ने या कठिन आसन

करना आवश्यक नहीं। योग और ध्यान बस ये बदलता है, ये जोड़ता है। अपने विचारों को समेट कर खुद को खुद से जोड़ना ही योग है। जी हाँ, बस सुबह उठकर 10 से 15 मिनट एक गहरी सांस ले लें। जी हाँ, प्राणायाम, चाहे भ्रामरी हो या दूसरे, हमारे दिमाग की नसों को शांत करते हैं। सुबह की ये शुद्ध ताजी हवा हमारे भीतर जाती है तो केवल ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि जीवन जीने की एक नई उमंग भरती है। जो लोग सुबह थोड़ा सा समय योग को देते हैं, उन्हें तनाव, चिंता और ये भागदौड़पन से जो चिड़चिड़ापन होता है उससे मुक्ति मिलती है। ध्यान योग के साथ हो तो सोने पे सुहागा हो जाता है। किसी गुफा के अंदर जाकर बैठना ध्यान नहीं बल्कि इस शांत सुबह में आंखें बंद करके बस कुछ पल अपने लिए, अपनी जो आती जाती सांस है उसको महसूस करना ही ध्यान है। अपने विचारों को शांत करना ही ध्यान है। ध्यान हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यह हमारे भीतर छुपे गुस्से, उदासी और किसी भी तरह की नकारात्मकता हो, इसे धीरे धीरे बाहर निकाल देता है। ध्यान हमें यह सिखाता है कि जो बीत गया उस पर हमारा बस नहीं था, लेकिन जो आने वाला है वो हमारा है। तो फिर बीते हुए दिन, बीते हुए पलों की चिंता क्यों करें? आज का ये प्यारा सा दिन क्यों गंवाएं? जी हाँ, जीना है तो वर्तमान में, तो फिर क्यों ना आज एक छोटा सा संकल्प लिया जाए। सुबह की चाय की चुस्की लेने से पहले या उसके साथ मोबाइल स्क्रीन देखने से पहले सिर्फ 10-15 मिनट खुद को दे, शांत बैठे, गहरी सांस लें और ईश्वर को धन्यवाद दें इस खूबसूरत जीवन के लिए। यकीन मानिए, सुबह सुबह शांत और खुश हमारा मन रहेगा तो हमारा तन भी खिला खिला रहेगा, और जो इस भागदौड़ भरे जीवन में आने वाली चुनौतियां हैं उससे हम संतुलन भी बना चाहेंगे। खुद को बदलो तो यह संसार बदलेगा। और जी हां साथियों, योग और ध्यान से मन का हर विकार बदलेगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी बीकानेर।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
5: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
4: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
5: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
4: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
5: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
4: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
5: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
4: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
5: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
6: श्रोताओं, अंतराल से पहले हम बात कर रहे थे मन की, मानसिक शांति की और खुद की, योग की, ध्यान की। जी साथियों, ये हमें शांत और शक्तिशाली बना सकता है, लेकिन जरा सोचिए, इंसानी दिमाग की ताकत इतनी अद्भुत है कि उसने अपने जैसा ही एक और दिमाग तैयार कर लिया। जी हाँ, आज की हमारी ये दूसरी चर्चा है आधुनिक चमत्कार पर, AI यानी कृत्रिम बुद्धिमता, मशीन लर्निंग के नाम से जानते हैं जिसे हम। अब कई श्रोता सोचेंगे कि भारी भरकम सा एक नाम ले लिया आपने सुबह सुबह, इससे हमारा क्या नाता। लेकिन साथियों, सच ये है कि सुबह उठने से लेकर सोने तक हर वक्त AI और मशीन लर्निंग से घिरे हुए रहते हैं। जब आप अपने मोबाइल को सिर्फ अपना चेहरा दिखाकर अनलॉक करते हैं, तब YouTube या सोशल मीडिया पर एक गाना सुनते हैं, अगला गाना वो फिर आपकी पसंद का खुद ब खुद आ जाता है, तो समझ लीजिए कि पर्दे के पीछे मशीन लर्निंग काम कर रही है। इसका सीधा सा अर्थ है कि कंप्यूटर मशीनों को इंसानी अनुभव से, हमारी आदतों से खुद ब खुद सीखता है। जी हाँ, लेकिन

सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं। जहां ये एआई मशीन लर्निंग से हमारे कामों को आसान किया है, तेज बनाया है, वहीं एक चुनौती भी खड़ी करी है। हमारे मूड को भांप कर वही चीजें हमारे सामने लाता है जो हमें पसंद है। तो बात टेक्निक की होती है तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाने के लिए, हमें नियंत्रित करने के लिए नहीं है। मशीन कितनी भी लर्निंग कर ले, वो इंसानी दिल की भावनाएं, हमारी संवेदनाएं, हमारे अपनों का प्यार कभी नहीं सीख सकती। असली इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता तो ईश्वर ने हमें दी है। जी हां, तकनीक का हाथ थामे पर अपनों का साथ न छूटने पाए। मशीनें कितनी भी स्मार्ट हो पर दिलों की मिठास न रूठने पाए। साथियों, योग ध्यान इसके साथ इंटेलिजेंस आगे बढ़ रहे हैं। बस समय भी कह रहा है कम है, तो चलते चलते ये प्यारा सा गीत

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारु चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आशा भोसले और शब्बीर कुमार की आवाजों में, फिल्म है सोहनी महिवाल।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

कार्यक्रम का अंतिम गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर में फिल्म का नाम है अवतार।

0: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावारू चैनल से बोल रहे हैं। बिंदु 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित समाचार प्रभात।
1: जीवन

0: क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्दे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। और अब समाचार विस्तार से। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया की सरकार और जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये भारत के 140 करोड़ लोगों और भारत स्लोवाकिया की मजबूत मित्रता का सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्लोवाकिया यात्रा संपन्न हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी की स्लोवाकिया यात्रा कई मायनों में बहुत

0: महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज फ्रांस के एवियों पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर मजबूत करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले वीवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों फ्रांस।
0: फ्रांस के एवियों शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने अपनी नवीनतम समीक्षा में डीजल और विमान ईंधन ATF के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क SAED में वृद्धि की है। डीजल पर निर्यात शुल्क 13.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं ATF निर्यात पर शुल्क 9.05 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.05 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। ये वृद्धि आज से लागू हो गई है। पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तरल प्राकृतिक गैस ने ले जा रहा टैंकर दिशा ने हुरमुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। पश्चिम एशिया में युद्ध शुरू होने के बाद से इस जल मार्ग को पार करने वाला ये पहला भारतीय LNG टैंकर है। इस टैंकर में 62,370 मीट्रिक टन LNG है और भारतीय शिपिंग निगम के अंतर्गत कंसोर्टियम यास का प्रबंधक है। अमरीका और ईरान के बीच प्रारंभिक युद्ध विराम समझौते की घोषणा के बाद से ये हुरमुज जल डमरू मध्य को पार करने वाले पहले वाणिज्यिक हाजों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
3: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
4: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
3: नो टेररिस्ट एक्ट इन इंडिया वुड गो अनपनिश्ड।
2: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर

0: से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
1: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण न केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: अमेरिका में दक्षिणी कैलिफोर्निया के मुजावे स्थित अमेरिकी वायुसेना के अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद B-52 बम वर्षक विमान कल रात दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सवार सभी 8 लोगों की मौत हो गई। सोशल मीडिया पर अमेरिकी सेना ने बताया कि एडवर्स वायुसेना अड्डे पर स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 11:20 पर विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन दल मौके पर पहुंच गया। इसके बाद हवाई अड्डे को बंद कर दिया गया और आने वाले विमानों का मार्ग बदल दिया गया। पश्चिम एशिया में तनाव कम होने की आशा बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान लगभग 4 महीने से जारी संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण समझौते की रूपरेखा पर सहमत हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा की घोषणा से पश्चिम एशिया में उम्मीद की नई किरण जगी है। क्षेत्र के देशों ने लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की इस पहल का स्वागत किया है। औपचारिक रूप से इस समझौते पर शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए जाएंगे। समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलने और वार्ता जारी रहने तक युद्ध विराम बढ़ाने का प्रस्ताव है। इस घटनाक्रम का असर तेल बाजार पर भी दिखा है। आपूर्ति में सुधार की उम्मीद के बीच तेल की कीमतों में गिरावट आई है। समझौते की घोषणा के बावजूद पूरा विवरण जारी नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिबंधों में ढील, ईरान के परमाणु कार्यक्रम और होर्मुज जलडमरू मध्य में नौ वहन नियमों पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी कायम है। ऐसे में इसराइल लेबनान सीमा की स्थिति इस समझौते की सफलता की अहम कसौटी बन सकती है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
2: फीफा विश्व कप में केप वर्डे की टीम ने प्रबल दावेदार स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोक दिया। पहली बार विश्व कप खेल रही केप वर्डे के गोलकीपर वोजिन्ना ने शानदार खेल दिखाया और स्पेन को गोल करने का कोई अवसर नहीं दिया। इस परिणाम को टूर्नामेंट में अब तक का सबसे बड़ा उलटफेर माना जा रहा है। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ रहा। ग्रुप एच में सऊदी अरब और उरुग्वे का मैच 1-1 से बराबरी पर छूटा। केंद्र ने नीट यूजी पुनः परीक्षा के लिए सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला किया गया। बैठक में राज्य सरकारों की तैयारियों की समीक्षा की गई। गृह सचिव ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से विद्यार्थियों की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इस वर्ष लगभग 1000 रिक्तियों के लिए 13000 से अधिक उम्मीदवारों का चयन सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के लिए किया गया है। उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट upsc.gov.in पर परिणाम देख सकते हैं। अंक, कट ऑफ और उत्तर कुंजी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद वेबसाइट पर जारी की जाएगी। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने शिकागो स्थित भारतीय दूतावास में स्वामी विवेकानंद की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। श्री क्वात्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण करके गर्व का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने हम सभी के लिए सेवा और समरसता के जीवन का कालजयी संदेश दिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी NUS को अमरावती में वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय शाखा स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि अमरावती को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया जा सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
4: धन्यवाद फरहत। अमेरिका ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध को समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने पर सहमति बनने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका ईरान में समझौता, होर्मुज से निकलने लगे जहाज। जनसत्ता की सुर्खी है, स्विट्जरलैंड में 19 को समझौते पर किए जाएंगे हस्ताक्षर। ट्रंप ने नाकेबंदी

0: खत्म करने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने समझौते का स्वागत किया। अमर उजाला के शब्द हैं, भारत के लिए बड़ी राहत, तेल आपूर्ति सुधरेगी, घटेगी महंगाई। 1000 किलोमीटर मार करने वाली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। पत्र लिखता है, स्वदेशी माणिक टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल, सभी मानक पूरे किए। वैष्णो देवी के तीर्थ स्थान पर इस बार पिछला रिकॉर्ड टूटने के आसार, श्रद्धालुओं की संख्या 1 करोड़ होने के पार होने की उम्मीद, देशबंधु की खबर है। वीर अर्जुन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हुए महिला किसानों की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, किसानों की किस्मत बदल देगा जेवर हवाई अड्डा, वाणिज्यिक उड़ानें शुरू, पहली उड़ान से लखनऊ पहुंचे जमीन देने वाले किसान। मानसून लापता, सैटेलाइट तस्वीरों में गायब हुए बादल, दैनिक भास्कर की खबर है। पत्र लिखता है, देश में 4 से 15 जून के बीच 64% कम बारिश दर्ज हुई। लोकसत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर भारत में पिछले कुछ वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में हो रही बढ़ोतरी पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, हर दिन सड़क हादसों में 500 जिंदगी खाक। लेखक ने विश्लेषण दिया है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस के स्टाफ और लापरवाह वाहन चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के साथ साथ लोगों द्वारा वाहन चलाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। लेटे लेटे मोबाइल चलाना, जवानी में दे रहा बुढ़ापे का दर्द। 18 से 45 आयु वर्ग के 5400 युवाओं पर किए गए सर्वेक्षण में हुआ खुलासा। टेकनेस सिंड्रोम से गर्दन दर्द, अकड़न, कंधों में तनाव, सिर दर्द जैसी समस्याएं हो रही हैं, हिंदुस्तान की खबर है।
1: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। स्लोवाकिया ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के व्यों में G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कनाडा और ब्रिटेन के प्रधानमंत्रियों तथा संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। सरकार ने डीजल और विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क बढ़ाया, पेट्रोल पर निर्यात शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं। भारतीय जलपोत दिशा 62,370 मीट्रिक टन LNG के साथ हॉर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित निकला। दक्षिणी कैलिफोर्निया में अमरीकी वायुसेना ठिकाने पर B-52 बम वर्षक विमान हादसे में 8 लोग मारे गए। और फुटबॉल में फीफा विश्व कप में बड़ा उलटफेर करते हुए केप वर्डे की टीम ने स्पेन को 0-0 से बराबरी पर रोका। बेल्जियम और मिस्र का मैच भी 1-1 से ड्रॉ। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। स्लोवाकिया कन्फर्स इट्स हाईएस्ट ऑनर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास ऑन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू पार्टिसिपेट इन G7 समिट इन एवियन फ्रांस टुडे, to also hold bilateral meetings with Prime Minister of Canada and UK and UAE President. Government hikes export duties on diesel and aviation turbine fuel. Export duty on petrol remains unchanged. Indian ship Disha, carrying 62,370 metric tons of LNG cargo, safely crosses Strait of Hormuz. 8 people killed after B-52 bomber crashes at US Air Force base in Southern California. And in football, Cape Verde stunned Spain in scoreless draw at FIFA World Cup. Belgium also settled for 1-1 draw with Egypt. President of Slovakia, Peter Pellegrini, has conferred Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class, upon Prime Minister Narendra Modi. Secretary West in the Ministry of External Affairs, C.B. George, said that the Prime Minister expressed his heartfelt gratitude to the President, the government and the people of Slovakia for the distinguished honor.
3: As a special gesture, President conferred the highest state decoration of Slovakia, Order of the White Double Cross First Class, upon Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi for his role in an exceptional contribution in building India-Slovakia relationship. Minister dedicated the award to the people of India and Slovakia who have contributed in strengthening this partnership. Prime Minister also met with His Excellency Mr. Richard Rasi, Speaker of the National Council of the Slovak Republic, reaffirming the commitment to strengthen relationship between

और कोई नहीं है तेरे सिवा, और कोई नहीं है तेरे सिवा।

जाने किसकी है आरजू दिल में। कुछ न बोलो अभी खुदा के लिए,

कुछ अलग कैफियत है बासित की, कुछ अलग कैफियत है बासित की, जब से आया वो खूबरू दिल में, जब से आ

लाख खसारे जिंदा हैं इश्क में खाकर, लाख खसारे जिंदा हैं। लाश हमारी कब्र की जानिब मत ले जा।

हम तो प्यारे जिंदा हैं, तुमसे बिछड़े एक जमाना बीत गया, तुमसे

उनका जिक्र रहेगा दुनिया में बासित, जब तक सूरज चांद

और एक गज़ल से चंद अशआर तहत में, उसने वादा तो किया है मगर आना नहीं है, उसने वादा तो किया है मगर आना नहीं है, उसको दरअसल मेरा साथ निभाना नहीं है, उसको दरअसल मेरा साथ निभाना नहीं है। हिजर को मैंने मुकद्दर का लिखा मान लिया, हिजर को मैंने मुकद्दर का लिखा मान लिया, दिल को समझाने का कुछ और बहाना नहीं है, दिल को समझाने का कुछ और बहाना नहीं है। उसका क्या है वो मेरे साथ रहे या न रहे, उसका क्या है वो मेरे साथ रहे या न रहे, उसकी यादों को मेरे दिल से तो जाना नहीं है, उसकी यादों को मेरे दिल से तो जाना नहीं है। बस तेरे दर पे पड़े रहने की आदत है इसे, दूसरा कोई भी बासित का ठिकाना नहीं है, दूसरा कोई भी बासित का ठिकाना नहीं है, उसको दरअसल मेरा साथ निभाना नहीं है। और कुछ अशआर, हालात के असर से ना हो गमज़दा समझ, हर गम के बाद है खुशी हुक्मे खुदा समझ, आसान नहीं है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ, आसान नहीं है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा समझ, मुश्किल है राह ज़ीस्त मेरे हमनवा समझ, मुश्किल है राह ज़ीस्त मेरे हमनवा समझ, नाज़ुक है वक्त सब्रो तहम्मुल से काम ले, नाज़ुक है वक्त सब्रो तहम्मुल से काम ले, बदली हुई है मुल्क की आबो हवा समझ।

0: बदली हुई है मुल्क की आबो हवा समझ, कर कदर उसकी जो है मैसर तुझे अभी, कर कदर उसकी जो है मैसर तुझे अभी, जो छोड़ कर गया है उसे हादिसा समझ, जो छोड़ कर गया है उसे हादिसा समझ। बासित खुदा की इसमें भी है कोई मसलहत, बासित खुदा की इसमें भी है कोई मसलहत, क्यों हो रहा है रोज़ कोई सानहा समझ, क्यों हो रहा है रोज़ कोई सानहा समझ, हालात के असर से ना हो गमज़दा समझ, हर गम के बाद है खुशी हुक्मे खुदा समझ।
1: सौरभ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे श्री इमदाद उल्लाह का काव्य पाठ। आइए सुनते हैं चंदन दास की गाई ये गजल।

0: 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। समय मिलाना चाहिए तो मिलाइए, सुबह के ठीक 8:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा। आज आप सुनेंगे इसका 11वां अंक। वाचिका श्रीमती मधु शर्मा, प्रस्तुति श्री रेवंत राम लेघा और संयोजन श्री अमित सिंह का है।
1: श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का सफरनामा।
2: रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि आकाशवाणी ने 90 वर्ष का सफर पूर्ण कर लिया है। जी हां श्रोताओं, बीते 8 जून को 90 वर्ष का स्वर्णिम सफर पूर्ण कर आगे का सफर फिर से शुरू कर दिया है। हम भी आने वाले अंकों में आपको पुराने श्रोताओं की यादों और अनुभवों से रूबरू करवाते रहेंगे। चलिए श्रोताओं, आज का सफर आरंभ करते हैं और जानते हैं आज के मेहमान श्रोता कौन है।
3: नमस्कार जी, मेरा नाम रविंद्र भटनागर, मैं 38 साल से अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ।
2: जी, आप हैं श्री रविंद्र भटनागर, आप 38 वर्षों से अधिक समय से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं। जैसा कि आपने स्वयं ही बता दिया, आपका रेडियो से परिचय बाल्यावस्था में ही हो गया। क्या कहते हैं अपनी आरंभिक यादों में?
3: जी, जब मैं ये कहूँ कि बाल्यावस्था में था, उसी समय मेरा रेडियो से परिचय हो गया था। कुछ ऐसी यादें हैं जो मैं आपके साथ में साझा करना चाहूँगा। भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय जब ब्लैकआउट हो जाता था और इतने संसाधन नहीं थे, उस समय वो वाल्व वाले रेडियो हुआ करते थे, तो मेरे चाचा जी उस समय नई नई मोटरसाइकिल लेके आए थे और उसकी बैटरी से वो उसको जोड़ करके और युद्ध से संबंधित आकाशवाणी के समाचार जो है वो सुना करते थे। और उस समय मोहल्ले के कम से कम 10 से 20 व्यक्ति उस समाचारों को सुनने के

0: लिए हमारे घर में एकत्रित हुआ करते थे। तो बड़ा उत्सुकता रहती थी हमारे मन में कि ये किस प्रकार से, ये कहाँ से आवाज आ रही है और कैसे आ रही है। धीरे धीरे ये जो है बढ़ता चला गया शौक।
1: भटनागर जी बताते हैं कि हमारे चाचा जी की एक विशेष बात यह थी कि अगर घर में 5 कमरे हैं तो प्रत्येक कमरे में अलग अलग रेडियो सेट रखे जाते और अलग सेट पर अलग अलग आकाशवाणी के स्टेशन ट्यून करके रखे जाते थे। किसी भी रेडियो सेट को छूना भी मना था।
0: हमारे चाचा जी की एक विशेषता थी, घर में अगर 5 कमरे हैं तो 5ों कमरे में उनका एक एक रेडियो जो था वो फिक्स रहता था और जिस पर आकाशवाणी बीकानेर है उस पर बीकानेर ही चलेगा, जिस पर बीबीसी है बीबीसी चलेगा, गीतमाला आया करती थी उस पर वही चलेगा, उसको परिवर्तित कोई भी नहीं कर सकता था। रात को सोने के समय जब वो छत पर जाया करते, हम सारा परिवार छत पर जाते थे, तो छत पर भी एक पिंजरे नुमा जगह बना करके उसमें भी एक रेडियो रखा गया था और जिसमें बीकानेर से बड़े मधुर गीत 70s के उस समय के प्रसारित हुआ करते थे, जिन्हें सुनते हुए हम कब पता नहीं हमारे को नींद आ जाती थी। तो वो भी एक वातावरण था। से कम 5 तो थे ही, 6 भी हो सकते थे, इतने तो पक्के थे उस समय, क्योंकि हमारे घर में सभी को रेडियो का शौक था।
1: भटनागर जी से जब पूछा गया कि क्या आपके परिवार से कोई आकाशवाणी से जुड़ा है या जुड़ा था अथवा नहीं, तब आपने बताया,
0: और मेरे परिवार में से ही कई जने आकाशवाणी में अपनी कुछ ना कुछ प्रस्तुतियां देते रहे हैं। मेरी बड़ी बहन, मेरा बड़े ब्रदर, उनके आकाशवाणी में युवाणी से जुड़े रहे वो, और साथ में वार्ताएं वगैरह भी देते रहे।
1: भटनागर जी ने स्वयं वार्ताकार के रूप में जुड़ने की बात करते हुए बताया कि बहुत ही अच्छा अनुभव उनका रहा।
0: जी, मैंने स्वयं भी वार्ता 3 बार मैंने आकाशवाणी केंद्र में जाकर के अपनी वार्ता की प्रस्तुति दी है। जी, बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा वहाँ का, एक अलग रोमांच था। जब मैं वहाँ गया तो उस समय सुशील कांत सिन्हा जी जो थे वो डायरेक्टर थे, तो उनके पास में हम बैठे तो उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया कि वार्ता बोलनी है तो पहले बोल के बताओ आराम से।
1: पुराने उद्घोषक श्री यशपाल सिंह राठौर का जिक्र करते हुए आपने बताया कि उन्होंने रेडियो में रिकॉर्डिंग की बारीकियां बताई,
0: और उस समय जो थे यशपाल सिंह राठौर उस समय उद्घोषक थे और जो बड़े ही आकर्षक ढंग से अपनी प्रस्तुति दिया करते थे, तो जब उनसे मुझे कुछ प्रोत्साहन मिला तब मुझे लगा कि हाँ मैं बोल पाऊंगा। लेकिन जब स्टूडियो में गया तो स्टूडियो का वातावरण तो बिल्कुल भिन्न था। अब वहाँ तो अकेला बैठ करके बोलना था और जो पेज होते थे उनकी आवाज़ भी नहीं आनी चाहिए, तो बड़ा डरते डरते मैंने बोला, और जब पहली बार सुना तब मुझे लगा कि ये तो मेरी आवाज़ ही नहीं है, बिल्कुल परिवर्तित हो गई थी वहाँ। तो ये भी एक अलग अनुभव था। विज्ञान के सार्थक उपयोग पर मेरी वार्ता थी, क्योंकि मैं विज्ञान का विषय का ही छात्र था, तो मेरे परिवार वालों ने भी सुना, मेरे परिचितों ने भी सुना, और जब कई समय बाद में उनका मिलना हुआ और उन्होंने कहा हमने आपकी वार्ता सुनी तो बहुत अच्छा लगा, फिर प्रोत्साहन मिला, आगे भी मैंने 2 बार और वार्ता दी।
1: श्रोताओं, आकाशवाणी में उस समय इंटर कॉलेज क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई जिसमें भटनागर जी फाइनल विजेता रहे। क्रिकेट और आकाशवाणी का श्रोताओं गहरा संबंध है, क्योंकि क्रिकेट की कमेंट्री रेडियो के माध्यम से ही सुनी जाती थी। क्या कहा रविंद्र भटनागर जी ने?
0: जी, मैं कह सकता हूँ क्रिकेट लवर हूँ, तो मैं अभी भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ हूँ। उस समय जो जसदेव सिंह जी, सुशील दोषी जी कमेंट्री किया करते थे और वो नज़ारा बिल्कुल सजीव हो जाता था हमारे नेत्रों के सामने, जैसे हम खुद मैदान में बैठे हों, और वो उस गेंद को पूरी सीमा तक पहुँचा करके ही दम लेते थे, तो वो भी हमारे लिए बहुत ही एक अद्भुत कह सकते हैं पल हुआ करते थे उस कमेंट्री को सुनने का। उस समय भारत उभर रहा था और 1983 का जो वर्ल्ड कप भारत ने जीता उसका तो एक किस्सा मैं आपको जरूर सुनाना चाहूंगा, क्योंकि वो अविस्मरणीय है हमारे लिए। इतने सुलभता से सबके पास में ट्रांजिस्टर उपलब्ध नहीं हुआ करते थे और घर में बैठ करके, घर में पिताजी वगैरह कॉमेंट्री में इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, तो हम मित्र जो थे वो बाहर बैठ करके और करीब 50 जने उस फाइनल का आकाशवाणी पर प्रसारण सुन रहे थे, और एक ट्रांजिस्टर था जिसमें हम सुन रहे थे, और जैसे ही भारत ने विजय प्राप्त करी और अंतिम रन भारत को प्राप्त हुआ, उत्साहवश हमारे साथी ने उस ट्रांजिस्टर को ऊपर उछाल दिया और वो ट्रांजिस्टर नीचे गिर करके टूट गया, तो वो भी एक याद है अपने आप में।
1: भटनागर जी ने युवाओं का जिक्र करते हुए कहा कि रेडियो एक बहुआयामी रूप है, आपने आकाशवाणी के कार्यक्रमों का भी जिक्र किया।
0: ये निश्चित रूप से जो रेडियो का एक बहुआयामी रूप है वो विद्यार्थियों

0: युवाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। प्रातः काल का जो शुरुआत है हमारे घर में रेडियो के मधुर ध्वनि से ही होती है, उसके बाद जो भजन आते हैं, फिर सुंदरकांड का जो आता है पाठ आता है वो सुनना, उसके बाद में कृषि दर्शन आता है वो भी बहुत उपयोगी होता है, अन्य जो जानकारियाँ युवाणी में मिलती हैं या कोई और वार्ताएं आती हैं।
1: समाचारों की विश्वसनीयता के बारे में आप मानते हैं कि आकाशवाणी के मुकाबले किसी और की नहीं है?
0: समाचार की विश्वसनीयता मैं मानता हूँ आकाश

0: भाषा का प्रभाव। जी हाँ श्रोताओं, आपने भाषा के प्रभाव पर भी अपनी यादें कुछ इस तरह रखी।
1: सबसे अच्छी बात भाषा पर नियंत्रण। हिंदी भाषा को पोषित करने का जितना श्रेय मैं आकाशवाणी को दूंगा उतना शायद किसी और को नहीं जाएगा। यदि कोई आकाशवाणी का श्रोता है तो वो निश्चित रूप से हिंदी पर उसकी पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, भाषा का ज्ञान उसका बहुत अच्छा हो जाएगा और वो विस्तार से अपने विचारों को किसी के समक्ष भी प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाएगा। तो मेरी युवाओं को निश्चित रूप से सलाह है कि वो कोई ना कोई किसी भी कार्यक्रम का चयन करें और जो बीकानेर आकाशवाणी केंद्र है उसको अवश्य सुने।
0: भटनागर जी ने कुछ संगीत के कार्यक्रमों को याद किया और एक गीत कन्या मन्या कुर का जिक्र किया, वहीं लोक कलाकारों के नाम भी बताए।
1: आकाशवाणी से बहुत सारे लोक संगीत के भी, शास्त्रीय संगीत के भी और गीत संगीत के भी, बॉलीवुड के भी कार्यक्रम आते रहते हैं, लेकिन एक आकाशवाणी पे एक लोक गीत आया करता था, पक्का तो मेरे को ध्यान नहीं है, शायद कालूराम प्रजापति थे या कौन गाते थे, कन्या मान्या कुर चालना जोधपुर, गोविंद सिंह राठौड़ जी के गाया हुआ ये था। बहुत ही अच्छा लगता था हमको उस समय, जोधपुर रा कबूतर रे उड़ता रे फुर फुर। तो इस प्रकार के गीत अब सुनने को नहीं मिलते हैं। और अभी मैं प्रोग्राम सुन रहा था आपके आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ही राजकुमारी जी का एक इंटरव्यू आपने प्रसारित किया था और अभी सुनने को मिला कि वो इस दुनिया से विदा हो गई हैं, तो बड़ा अफसोस हुआ। तो ऐसी भी लोक गायिका थी जो हमारे बीकानेर शहर से ही थी और इतनी अच्छी गायिका थी। अल्लाह जिलाई बाई के भी गीत जो हैं वो सुनने को मिलते रहते हैं। फिर लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी, आशा भोसले जी अभी विदा हुई हैं हमारे से, उनके गीत तो कहने ही क्या हैं। तो मैं मुकेश जी, आशा जी, किशोर जी, इन सभी के गीतों को बहुत पसंद करता हूँ और अभी भी सुनता हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि अब जो अलग अलग वर्जन आ गए हैं मोबाइल पर, टीवी पर, या जो संगीत अब का है उसमें वो कर्णप्रिय जिसको बोलते हैं उतना नहीं है जितना कि पहले के संगीत में मधुरता हुआ कर।
0: श्रोता भटनागर जी, सुबह पहले प्रसारण के आरंभ में जब संकेत ध्वनि बजाई जाती है तब से सुनना आरंभ कर देते हैं और रेडियो के साथ ही चाय व अखबार का स्वाद लेते हैं, फिर दैनिक कार्यों में लग जाते हैं।
1: मैं अभी भी, हमारा फिक्स है, मैं हमेशा इधर आकाशवाणी पर का जो साइनिंग ट्यून है वो शुरू होती है, मैं अपनी चाय स्वयं बना करके और अखबार लेकर के बैठ जाता हूँ और निश्चित है कि जिस समय तक भजन चलेंगे उस समय तक मुझे अखबार पढ़ लेना है, फिर तैयार होकर के स्कूल जाना है। तो मैं निश्चित रूप से उस समय अपने स्कूल के लिए प्रस्थान कर जाता हूँ और घड़ी भी मैं, अब तो मोबाइल का समय है लेकिन हमारे घर की घड़ियाँ भी हम आकाशवाणी से ही मिलाते हैं और बहुत अच्छा आकाशवाणी का समय प्रबंधन है। अब तो बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं लेकिन अगर हम 70, 80 या 90 की बात करें तो बिल्कुल उसका मुकाबला ही नहीं था। कौन सी पिक्चरों के नए गाने आएंगे, पुराने गाने आएंगे, जगजीत सिंह के और एक जो असमिया गायक थे उनका गाना था गंगा बहती है क्यों, मेरे को बहुत ही पसंद है।
0: समय प्रबंधन और आकाशवाणी, क्या कहा भटनागर जी ने। साथ ही कुछ महान संगीतकारों और गायक कलाकारों की भी चर्चा की, अपनी पसंद भी बताई।
1: भूपेन हजारिका का, जो कि असमिया गायक हैं, उनकी बहुत ही ठहरी हुई आवाज में एक गीत था, विस्तार है अपार है गंगा बहती है क्यों, ये बहुत ही अच्छा गाना था जिस पर हमने अपने विद्यालय के जो विद्यार्थी थे उनको एक डांस तैयार करवाया था।
0: नए जमाने के साधनों के बारे में क्या कहते हैं भटनागर जी।
1: देखिए, अब न्यूज ऑन AIR नाम से जो ऐप है हमारे मोबाइलों में उपलब्ध है और उसके अलावा हमारे जो गाड़ी है उसमें भी हम सुन सकते हैं। अब FM पर 101.6 पर हम सुन सकते हैं और मैं निश्चित रूप से लगा के रखता हूँ क्योंकि मेरी बेटी का प्रोग्राम जो है वो 5 बजे शुरू होता है और उसी समय मेरे घर आने का समय होता है, तो वो युवाणी का कार्यक्रम मैं उसमें ही सुन पाता हूँ गाड़ी के अंदर ही। तो ये तो आज बहुत सुविधा हो गई है, हम ट्रेन में जा रहे हैं तो भी मोबाइल पर सुन सकते हैं और मैं तो कहूँगा निश्चित रूप से सुनना ही चाहिए। व्यक्ति जहाँ पर भी हो उसे अपने प्रदेश से जुड़े रहना चाहिए। चेन्नई में मैं गया था आँख का ऑपरेशन करवाने, वहाँ भी मैं आकाशवाणी बीकानेर के प्रोग्राम सुनता था।
0: 90 वर्ष पूर्ण होने पर क्या कहते हैं भटनागर जी।
1: जी, मैं तो कहूँगा आकाशवाणी के 90 नहीं 900 वर्ष पूरे होने चाहिए और इतने अच्छे अच्छे यहाँ के अनाउंसर रहे हैं।

0: जिसमें से एक आधे तो हमारे मित्र भी थे, अब बीकानेर से बाहर चले गए हैं, लेकिन जो प्रोग्राम प्रस्तुत करने का उनका ढंग है और जानकारी देने की सहजता है और अपने भूमि से जुड़े हुए ज्ञान प्रदान करने का बहुत ही अच्छा तरीका है, ये युवाओं के लिए या हमारे बुजुर्गों को अपनी संस्कृति का पुराना जो खजाना है वो प्रस्तुत करने के लिए, पहले मैं विविध भारती भी सुनता रहता हूँ लगातार, तो वो एक हवामहल नाम का एक जो आता था जिसमें कि बहुत ही अच्छे नाटक आते थे, फिर बीकानेर से भी एक प्रोग्राम आया करता था जिसमें बीकानेर के जो कार्यक्रम वाले थे वो अपना एक नाटक प्रस्तुत किया करते थे, वो भी बहुत बढ़िया लगता था। तो ये भी चीजें जो थी वो हमारे को अपनी संस्कृति से जोड़े रखने के लिए बहुत, अभी भी मैंने जो आपकी ये श्रृंखला चल रही है 90 वर्ष, इसमें मैंने हरीश बी शर्मा जी का, उसके अलावा राजकुमारी जी का, और भी मेरे को पूरे नाम ध्यान नहीं आ रहे, मैंने कईयों के कार्यक्रम सुने हैं और बहुत अच्छा लगा।
1: तो श्रोताओं, आज आपने पुराने श्रोता श्री रविन्द्र भटनागर जी की यादें और अनुभव सुने। आज के सफर का समय यहीं पूर्ण होता है। संयोजक थे श्री अमित सिंह, प्रस्तुति थी श्री रेवंत राम लेगा की और वाचक स्वर था मधु शर्मा का। अब अगले मंगलवार एक नए अंक के साथ नए श्रोता की यादें और अनुभव लेकर फिर आने की उम्मीद के साथ अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोताओं की रेडियो से जुड़ी यादों पर आधारित कार्यक्रम रेडियो का।

0: आपने सुना रेडियो का सफरनामा कार्यक्रम का 11वां अंक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलावरु चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से नवाजा गया है। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री श्री मोदी को यह विशिष्ट सम्मान प्रदान किया। श्री मोदी ने इसके लिए स्लोवाकिया के राष्ट्रपति, सरकार और वहां की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया है। इससे पहले दोनों देशों के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा, सहयोग, गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य नवाचार और विश्वास, जिम्मेदारी तथा मानवीय गरिमा पर आधारित होना चाहिए।
2: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर किए गए एमओयू से डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। रक्षा सहयोग हमारे स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का प्रमाण है। इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में हमने लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। इससे ज्वाइंट डेवलपमेंट, ज्वाइंट प्रोडक्शन और डिफेंस इंडस्ट्रीज के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने किया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये पहल लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में युवाओं की भागीदारी को नए सिरे से परिभाषित करती है और इससे युवाओं को शासन, नीतिगत विचार विमर्श और संसदीय कार्य प्रणाली की व्यावहारिक जानकारी मिलती है। मंत्रालय ने कहा है कि विकसित भारत युवा संसद एक ऐसा जन आंदोलन है जिसको लेकर भारत के युवाओं की ऊर्जा, विचारों और आकांक्षाओं की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होती है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शहरी

0: और ग्रामीण सेवा शिविरों में लोगों की समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में जयपुर में आयोजित शिविर में पट्टा, लीज, भवन निर्माण स्वीकृति और नामांतरण जैसे कार्यों को प्राथमिकता के साथ समाधान किया जा रहा है। जेडीसी सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि सिद्धार्थ शिविर के पहले दिन 327 प्रकरणों का सफलतापूर्वक निस्तारण किया गया।
1: जो जो हमारे एप्लीकेशन पेंडिंग चल रही हैं, जो हमारे पास अपने ट्रिपल सी सर्विसेज के ऊपर ऑनलाइन हैं, उन लोगों को हम मैसेज भेज रहे हैं कि जिनकी एप्लीकेशन लास्ट स्टेज पे है उनको जैसे आज हमने बुला रखा है, और जिनमें अभी थोड़े से काम है उनको जब नेक्स्ट कैंप लगेगा उनका तो बुलाएंगे। हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि लगभग जो हमारे 6000 से ज्यादा ट्रिपल सी पे पेंडेंसी चल रही थी वो सारी पेंडेंसी को हम इस कैंप में खत्म करेंगे। इसके साथ साथ जो नई एप्लीकेशन आएंगी उनको भी इस कैंप में टेकअप करके खत्म करेंगे।
0: प्रदेश के अन्य जिलों में भी इन शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। सवाईमाधोपुर की लाभार्थी सुनीता अग्रवाल ने आवासीय पट्टा मिलने पर खुशी जाहिर की है और सरकार का आभार व्यक्त किया है।
2: मैं सवाईमाधोपुर जिले की रहने वाली हूँ और हमने पट्टे के लिए 1.5-2 साल पहले आवेदन करा था तो आज हमें प्राप्त हुआ, हमें बहुत खुशी हुई और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री साहब का दिल से आभार करना चाहूँगी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: प्रदेश में गिवअप अभियान के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना NFSA से 82 लाख पात्र लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम हटवाया है। वहीं 84 लाख से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को योजना से जोड़ा गया है। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि नए जुड़े लाभार्थियों को अब मुफ्त राशन के अलावा निःशुल्क इलाज, गैस सिलेंडर सब्सिडी और 5 लाख रुपये की दुर्घटना सहायता का लाभ भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का गिवअप अभियान की देश भर में सराहना की जा रही है। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारियों की समीक्षा की है। कल नई दिल्ली में आयोजित बैठक में श्री मोहन ने सभी राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों को सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षार्थियों की सुगम यात्रा के लिए भी आवश्यक व्यवस्थाएं करने को कहा। इधर प्रदेश में परीक्षा के सफल आयोजन के लिए राज्य सरकार ने जिला कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। 21 जून को होने वाली इस परीक्षा में राजस्थान के 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल होंगे। इसके लिए 27 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने CBI की उस अर्जी को मंजूरी दे दी है जिसमें नीट यूजी पेपर लीक मामले में 3 आरोपियों से जेल में पूछताछ करने की इजाजत मांगी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में अब झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कल पुलिस मुख्यालय में हुई अपराध समीक्षा बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि संगठित अपराध और धमकी देकर वसूली करने वाले गिरोहों पर लगाम कसी जाएगी। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों का उपयोग करते हुए गैंगस्टरों द्वारा बनाई गई अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने और उनके बैंक खातों को सीज करने के भी निर्देश दिए। पुलिस महानिदेशक ने सभी पुलिस अधीक्षकों को नशा तस्करी रोकने के लिए एक विशेष कार्य योजना बनाने को कहा है। इसके अलावा साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय पर उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां की जा रही हैं। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि जिले में स्वास्थ्यकर्मी घर घर जाकर बच्चों को दस्तरोधी दवा देंगे।
3: 5 वर्ष तक के बच्चों में दस्त रोगों से होने वाली गंभीर समस्याओं को रोकने के लिए आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य कर्मियों की टीमें घर घर संपर्क कर दस्त रोग की पहचान, बचाव और उपचार संबंधी जानकारी देंगे तथा ORS पैकेट और जिंक टैबलेटों का वितरण करेंगे। सभी चिकित्सा संस्थानों में ORS कॉर्नर स्थापित कर ORS तथा जिंक टैबलेट का वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही सही से हाथ धोने की विधि, स्वच्छ पेयजल उपयोग, भोजन को ढककर रखने तथा खुले में शौच से रोकने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा ताकि दस्त रोग से होने वाले

0: गंभीर परिणामों से बचा जा सके। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर।
1: और अब मौसम। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। इससे लोगों को भीषण गर्मी और लू से राहत मिली है। ज्यादातर स्थानों पर दिन का पारा 35 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान भी 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान फलौदी में रहा। वहीं जैसलमेर में 41.3 और बाड़मेर में 40.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। इस बीच कल कई स्थानों पर आंधी बारिश की गतिविधियां हुई। श्रीगंगानगर, सीकर, कोटपुतली बहरोड और चूरू में तेज धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन प्रभावित रहा। जयपुर और पिलानी तथा झुंझुनू सहित कई शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी और बारिश का ये दौर जारी रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से नवाजा गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन करेंगे। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने झूठे मुकदमे दर्ज कराने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। और बच्चों में दस्त रोग से बचाव और उपचार के लिए प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: मिनिमम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और एफएम बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सतीश डेहरा और साथियों के गए कुछ लोकगीत।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

लोक संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री सतीश देहरा और साथियों के गए लोकगीत। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 और 12 सेकंड हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1307 अंक।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
3: नमस्कार, मैं हूँ अजीत। करते हैं एक बार फिर से कार्यक्रम की शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने। इन्होंने पर्यावरण संदेश भेजा है, लिखते हैं,
2: आज जल पेट्रोल डीजल बचाओगे, कल बहुत सुख पाओगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो ग्राम नागर कोहरा, जीरा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा बेबी आराध्या साहू लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत सर जी, विमलेश मैम जी, सब प्रेम नमस्ते। इस हफ्ते ये भी जानिए, मैं फूलों की जानकारी से हमारा हर पल महक उठा। बहुत सुंदर जानकारी थी। नव तपा की इस चिलचिलाती गर्मी में इन फूलों की जानकारी ने हमें शीतलता प्रदान की। प्रोग्राम की शानदार, मस्त, मनभावन, लाजवाब प्रस्तुति के लिए एनसीईआरटी की पूरी टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं एवं साधुवाद। आपकी इस अथक मेहनत को हम दिल से नमन करते हैं।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें प्रोत्साहित करने वाले इतने सुंदर संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से अखिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
3: और कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
2: और भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता।
3: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संदेश श्रोताओं हमें हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह से भेजते रहिए संदेश और जुड़े रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए कि अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस श्रृंखला की कड़ियों में हम लेकर आते हैं देश विदेश की रोचक जानकारियाँ,
3: इतिहास, भूगोल, विज्ञान, साहित्य और अनेकानेक विषयों की जानकारियाँ।
2: आशा है आपको वे जरूर पसंद आती होंगी। तो अजीत जी, क्या विषय रहेगा हमारा इस सप्ताह की चर्चा का?
3: विमलेश जी, इस सप्ताह हमारी

0: चर्चा होगी भारत की अनूठी और खूबसूरत झीलों के बारे में।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा विचार है। तो श्रोताओ, इस सप्ताह हम आपको उमंग कार्यक्रम के माध्यम से लेकर चलेंगे भारत की सुंदर झीलों तक और लेंगे उनकी रोचक जानकारियाँ। लेकिन आइए सबसे पहले जानते हैं कि झील किसे कहते हैं या इसकी सामान्य परिभाषा क्या है।
0: श्रोताओ, सामान्य भाषा में कहें तो धरती के किसी गड्ढे नुमा भाग में चारों ओर से घिरा हुआ स्थिर जल का संग्रह झील कहलाता है। यहाँ का पानी खारा और मीठा दोनों हो सकता है। वैसे कई झीलों में जलधाराएं भी गिरती हैं। लेकिन श्रोताओ, एक प्रश्न और उठता है कि चारों ओर से भूमि से घिरा हुआ जल का संग्रह ये तालाब भी तो हो सकता है, तो तालाब और झील में अंतर क्या है? जी, आपको बताते हैं। तकनीकी रूप से तालाब और झील अलग अलग हैं। सबसे पहली बात, झील का आकार सामान्यतः बहुत बड़ा होता है जबकि तालाब का अपेक्षाकृत बहुत छोटा। झील की गहराई बहुत अधिक होती है जबकि तालाब की अपेक्षाकृत कम। झील का निर्माण अधिकतर, यदि आप ध्यान दें, तो प्राकृतिक होता है जबकि अधिकांश तालाब मानव निर्मित होते हैं। तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी झील की। आज हम चर्चा करेंगे भारत की एक अनोखी झील के बारे में। इसका नाम है लोकटक झील। ये भारत के मणिपुर राज्य की राजधानी इम्फाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मोइरंग में स्थित है। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। झीलें तो बहुत हैं हमारे देश में, लेकिन आइए जानते हैं जरा कि इस झील में ऐसी कौन सी बात है जो इसे दूसरी झीलों से अलग बनाती है। तो आपको बता दें श्रोताओं, लोकटक झील को तैरते हुए द्वीपों वाली झील कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि तैरती हुई झील का क्या मतलब? तो आपको बताते हैं कि इस झील पर मिट्टी, पौधों और ऑर्गेनिक चीजों से निर्मित घने दलदली समूह हैं जो तैरते हुए द्वीपों की तरह दिखाई देते हैं, जिन्हें हम फुम्दी कहते हैं। सचमुच ये बड़ी अनूठी बात है। और श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि इस झील में दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है केबुल लामजाओ। लेकिन एक प्रश्न श्रोताओं मन में आता है, और मुझे लगता है कि ये भी आपको बहुत रोचक लगेगा कि आखिर ये द्वीप तैरते कैसे हैं। जी, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बड़ी दिलचस्प बात है, इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरने वाले अधिकांश यात्री विमान लोकटक झील के ऊपर से ही गुजरते हैं। विमान की खिड़की से झील साफ साफ दिखाई देती है और ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे झील पर बहुत सारी गोल गोल सी दिखने वाली आकृतियां हैं। तो अब आप पूछेंगे कि ये आकृतियां क्या है? तो आपको बताते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बताया, इन्हें स्थानीय भाषा में फुम्दी कहा जाता है। ये इतने मजबूत होते हैं कि इन पर लोग झोपड़ियां बनाकर रहते हैं। और हाँ श्रोताओ, इन झोपड़ियों में उनके पालतू जानवर भी रहते हैं। यहाँ रहकर लोग छोटी मोटी खेती भी करते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आपको एक बात और बता दें कि लोकटक झील को देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। वे आसपास की सुंदरता को देखते हैं और बोटिंग करते हैं। जी हाँ श्रोताओ, लोकटक झील सैलानियों के आकर्षण का केंद्र तो है ही। कहा जाता है कि मणिपुर में यदि लोकटक झील नहीं देखी तो फिर कुछ नहीं देखा। आपको बता दें, लोकटक झील जैव विविधता से भरी हुई है। यहाँ लगभग 233 जलीय पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो श्रोताओं, कभी यदि आप इस क्षेत्र में आए तो अक्सर दुकानों में, होटलों पर और सामुदायिक स्थानों में आपको हिरन की तस्वीर देखने को मिल जाएगी। जी हाँ, इसे संगाई हिरन कहते हैं। इसे नाचने वाला हिरन भी कहा जाता है। ये दुर्लभ हिरन यही मिलता है और ये मणिपुर का राजकीय पशु है। लोकटक झील के आसपास ये बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। तो श्रोताओं, आज की चर्चा को समाप्त करने से पहले आपको बता दें कि लोकटक झील मणिपुर की जान है, क्योंकि विद्युत उत्पादन से लेकर जलापूर्ति और हजारों लोगों की आजीविका का ये मुख्य आधार है। तो यदि कभी आपको इम्फाल जाना हो तो अपनी घूमने की सूची में सबसे ऊपर रखिए लोकटक झील। सचमुच यहाँ फुम्गी से बने हुए तैरते द्वीपों को जब आप देखेंगे तो सचमुच आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत की प्रसिद्ध अनूठी लोकटक झील की। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से प्रश्न है, लोकटक झील में तैरते द्वीप किस चीज से बने हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? हाँ, आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। आप हमारा IBS नंबर भी नोट कर दें, 8800440559। और हाँ, आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सुनते हैं आज का सबसे पहला कार्यक्रम, वो आखिरी पत्ता।
2: साथियों नमस्कार।
3: नमस्कार साथियों।
2: साथियों, आज हम प्रस्तुत

0: कर रहे हैं कक्षा 9 की अंग्रेजी की पूरक पाठ्य पुस्तक मोमेंट्स के एक पाठ की कथा नाट्य प्रस्तुति। शीर्षक है द लास्ट लीफ यानी आखिरी पत्ता।
1: ये कहानी प्रसिद्ध अमेरिकी कहानीकार ओ हेनरी द्वारा 1905 में लिखी गई थी। ओ हेनरी का पूरा नाम था ओलिवर हेनरी। तो आइए सुनते हैं ये कथा नाट्य प्रस्तुति।
0: अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन। इसी शहर का एक बहुत सुंदर कस्बा है जो ग्रीनिच विलेज के नाम से जाना जाता है। प्राकृतिक रूप से ये बहुत ही रमणीक और सुरम्य गांव है। इसीलिए इस गांव में अक्सर बहुत से चित्रकार आया करते थे
1: ताकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को वो अपने कैनवस पर उतार सकें और दुनिया के सामने ग्रीनिच गांव की खूबसूरती का नजारा पेश कर सकें। इसी ग्रीनिच गांव में एक दिन दो लड़कियां रहने के लिए आईं। वो दोनों चित्रकार थीं और वो भी वहां के सौंदर्य को अपने कैनवस पर उतारना चाहती थीं। एक थी कैलिफोर्निया से और एक थी मेन से।
0: इन लड़कियों में से एक का नाम था जॉन्सी और दूसरी का नाम था सू। दोनों साथ साथ रहने लगी और उन्होंने चित्रकारी शुरू कर दी।
2: अरे जॉन्सी, तुम इतनी सुबह सुबह अपना पेंट ब्रश और कैनवस लेकर कहाँ चल दी?
3: ओ सू, ग्रीनिच के सुहाने सूर्योदय को अपने कैनवस पर उतारना जो है।
2: अरे हाँ, तो चलते हैं और यहाँ की सुंदरता को घर लेकर आते हैं, वो भी अपने अपने कैनवस पर।
3: यस।
1: साथियों, वो मिली तो थी वसंत के महीने में, लेकिन धीरे धीरे शरद ऋतु शुरू हो गई और अब भयंकर सर्दी का मौसम था। उस भयंकर शरद ऋतु में अचानक एक अजनबी ने ग्रीनिच गांव में प्रवेश किया और उसने अपने ठंडे हाथों से लोगों को छूना शुरू किया। उस अजनबी को डॉक्टरों ने नाम दिया था मिस्टर निमोनिया। उसके ठंडे स्पर्श में राहत नहीं थी बल्कि मौत थी। अब ये महामारी बन गई थी दोस्तों। बहुत से लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, जिनमें एक जॉन्सी भी थी। वो गंभीर रूप से बीमार थी और दिन प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी।
0: उसके मित्र सू उसकी बहुत सेवा करती थी। बड़ी मुश्किल से उसने किसी डॉक्टर से संपर्क किया और दवाओं का इंतजाम किया। एक दिन जब डॉक्टर उसे देखने आया तो उसने नोट किया कि जॉन्सी उससे ठीक से बात भी नहीं कर रही है, बस हां हूं कर रही है। डॉक्टर ने एक खास बात नोटिस की कि जॉन्सी बस खिड़की की ओर लगातार देखती जा रही थी।
1: साथियों, डॉक्टर ने उधर भी देखा लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आया। उसने सू से कहा,
4: सू
2: जी,
4: जॉन्सी तुम्हारी दोस्त है।
2: जी हाँ।
4: भाई मुझसे तो वो ठीक से बात नहीं कर रही, जरा उससे पूछकर मालूम करो कि उसे ऐसी क्या तकलीफ है।
2: जी डॉक्टर साहब।
4: और वो क्यों हमेशा खिड़की की तरफ देखती रहती है?
2: मैं पूछती हूँ।
0: दूसरे दिन सू ने गौर से देखा तो उसे समझ में आया कि जॉन्सी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से खिड़की के बाहर किसी चीज को घूरते हुए कुछ बुदबुदा रही है।
1: वो धीरे से उसके पास गई और सुनने की कोशिश करने लगी।
5: 15, 40
2: क्या?
0: थोड़ी देर के लिए वो चुप रही, फिर उसने गिना, लेकिन इस बार उसने कुछ जल्दी में गिना, जैसे कुछ जल्दी जल्दी घटित हो रहा हो।
5: 13, 12, 11 ओह
2: जॉन्सी,
5: अब सब कुछ जल्दी जल्दी हो रहा है सू।
1: सू ने जॉन्सी को झकझोरा और पूछा,
2: क्या गिन रही हो?

0: 11.
1: Dan. 9.
0: ओह, उस दिन वो करीब 100 थे, लेकिन सू, अब वो बहुत कम हो गए हैं।
2: क्या कम हो गए हैं?
0: पहले मुझे गिनने में मुश्किल होती थी, लेकिन हाँ, अब मैं इन्हें गिन सकती हूँ, आसानी से गिन सकती हूँ सू।
3: सू ने फिर से बाहर देखा। खिड़की के सामने बस एक आईवी क्रीपर का पेड़ था, जो पतझड़ की मार से बहुत बुरी हालत में था, लगभग अधमरा सा। बस कुछ पीली पत्तियां दिखाई दे रही थी। सू ने उसे दोबारा झकझोरा और पूछा,
2: जॉनसी, उस दिन क्या 100 थे जब कम हो गए हैं? तुम क्या गिन रही हो?
0: 6, now it's 6, 5, 4, oh!
2: जॉनसी, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे डर लगने लगा है। खिड़की में तो कुछ नहीं है। तुम क्या गिन रही हो? उधर नहीं, मेरी तरफ देखो जॉनसी।
0: Only 4.
2: मेरी तरफ देखो।
0: सू, only 4. ओह, अब सिर्फ 3 बचे हैं।
2: क्या 3 बचे हैं? What's 3, dear?
0: 3 पत्तियाँ।
2: पत्तियाँ?
0: हाँ, खिड़की के पास जो आईवी क्रीपर का पेड़ है ना सू?
2: हाँ, हाँ।
0: मैं उसकी पत्तियाँ गिन रही हूँ। मुझे लगता है।
2: क्या लगता है?
0: यही कि बस अब 3 पत्तियाँ बची हैं, और जिस दिन आखिरी पत्ता गिर जाएगा ना, उस दिन
2: क्या जॉनसी?
0: उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: ओह नो, ये क्या कह रही हो तुम जॉनसी? ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है।
0: नहीं, ये तय है सू कि उस दिन मेरी मौत हो जाएगी सू।
2: हाँ
0: सू, अब सिर्फ 3 पत्तियां बची हैं, ज्यादा समय नहीं है मेरे पास सू।
2: ओह जॉनसी।
3: साथियों, सू ने उसे बहुत समझाया। उसी दिन डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर ने भी बहुत समझाया, सारे तर्क दिए, लेकिन जॉनसी मानने को तैयार नहीं थी।
4: अचानक उस दिन कुछ अजीब सा हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति जॉनसी को देखने आया। सभी उस बूढ़े व्यक्ति को सनकी और लगभग पागल समझते थे।
3: उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर बेयरमैन। वो बहुत दिनों से ग्रीनिच गांव में रह रहे थे।
4: वो चित्रकार थे। बहुत बार उन्होंने चित्रकारी में असफलता देखी थी और लोगों का मजाक भी सहा था। वो घर घर घूमकर हमेशा लोगों से कहा करते थे,
5: मैं अपनी चित्रकारी से एक मास्टरपीस बनाना चाहता हूँ, जो अब तक नहीं बना पाया, लेकिन बनाऊंगा जरूर।
3: लोग उसे देखते ही उससे कतराने लगते थे। लोग उस पर हंसते और कहते, देखो मास्टरपीस वाला बुड्ढा आ रहा है। जब वो जॉनसी को देखने के लिए आए तो सू ने उन्हें बताया कि वो किस वजह से पत्ते गिन रही है।
4: इतने में जॉनसी ने अपनी दुर्बल आवाज में फिर से गिना,
0: 2, ओह, अब सिर्फ 2 पत्तियां ही बची हैं।
3: मिस्टर बेयरमैन ने बड़ी खामोशी से सू को देखा और एक लंबी सांस लेने के बाद गंभीरता से कहा,
5: जॉनसी, अभी मैं जा रहा हूं, लेकिन देखना तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जल्दी ही तुम्हें देखने आऊंगा।
3: इतना कहकर तेज कदमों से मिस्टर बेयरमैन वहां से चले गए।
4: अब मात्र 2 पत्तियां ही बची थी। दूसरे दिन की शाम एक पत्ता और गिर गया। सुबह हुई तो जॉनसी ने देखा अब सिर्फ

0: एक ही पत्ता बचा हुआ है। उसका दिल धक धक कर रहा था। वो सोचने लगी,
1: आखिरी पत्ता अब शायद गिरने ही वाला है। अब मेरी चंद सांसें ही बाकी हैं। आखिरी पत्ता गिरने ही वाला है, बस गिरने ही वाला है।
2: साथियों, जॉन्सी खिड़की की ओर देखती रही और इस तरह पूरा दिन बीत गया, पर वो आखिरी पत्ता अभी भी वहीं था। हैरत की बात तो ये कि दूसरा दिन भी बीत गया पर पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी खिड़की की ओर टकटकी लगाए बैठी रही और इस दौरान बर्फबारी के साथ पतझड़ के मौसम की बारिश शुरू हो गई। साए साए आंधी चलने लगी। रात भर रुक रुक कर बारिश होती या बर्फ गिरती।
0: जैसे ही सुबह हुई, जॉन्सी ने सू से कहा,
3: सू, मेरी दोस्त।
4: हाँ जॉन्सी।
3: जरा वो खिड़की खोल दे, मैं देखना चाहती हूँ कि वो आखिरी पत्ता वहाँ है या नहीं। खोल सरा खिड़की सू।
2: सू की तो मानो रूह ही कांप गई थी। कांपते हुए हाथों से डरते डरते सू ने खिड़की खोली। जॉन्सी ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन आश्चर्य, वो पत्ता अभी भी गिरा नहीं था। सुहानी सुबह थी, मंद मंद हवा चल रही थी, आकाश मानो पूरी तरह से धुला हुआ था, चमकता हुआ सूरज निकल आया था। वो आखिरी पत्ता हवा में कांपता हुआ अभी भी वहीं का वहीं था। फिर अचानक जॉन्सी को कुछ हुआ और उसने सू को बुलाया और कहने लगी,
3: सू।
4: हाँ जॉन्सी।
3: सू, ऐसा लगने लगा है कि मुझे नई जिंदगी मिलेगी। मैं नहीं मरूंगी।
4: हाँ बिल्कुल,
3: अब मैं नहीं मरूंगी सू।
4: बिल्कुल जॉन्सी।
3: हाँ, इसलिए ये पत्ता नहीं गिरा।
4: पत्ता?
3: हाँ, मेरी सोच अच्छी नहीं थी जो मैंने अपनी मृत्यु के बारे में सोचा। देखो ना, वो पत्ता अभी भी वही है।
4: हाँ,
3: हाँ,
4: मैंने देखा, मैंने देखा जॉन्सी, मैंने देखा।
3: देखो, अब वो वहीं पर है। अभी वो नहीं गिरा सू।
4: हाँ जॉन्सी, वो वहीं पर है, वहीं पर है।
3: हाँ, हाँ।
0: दो दिन और बीत गए, वो पत्ता वहीं का वहीं था। जॉन्सी अब ठीक होने लगी थी। डॉक्टर ने आकर उसे चेक किया और कहा,
5: गुड, थैंक गॉड, अब इसकी तबीयत अच्छी हो गई है, ये लड़ाई जीत जाएगी।
0: जॉन्सी मुस्कुराई और उसने खिड़की की ओर देखा। वो आखिरी पत्ता वही था, पर डॉक्टर के जाने के बाद सू ने कहा,
4: जॉन्सी, कैसा महसूस कर रही हो?
3: बेहतर।
4: ये लो, कॉफी पियो।
3: थैंक यू
4: जॉन्सी। एक बुरी खबर भी है।
3: क्या हुआ?
4: वो मिस्टर बेरमैन, उनकी कल अस्पताल में मौत हो गई।
3: कौन बेरमैन? वही बुरे कलाकार?
4: हाँ।

0: जो मुझे उस दिन देखने आए थे?
1: हाँ वही।
0: ओह, जो कहते थे मैं मास्टरपीस बनाऊंगा, वही ना?
1: हाँ वही मिस्टर बेयरमैन।
0: ओह गॉड,
2: उनकी हालत दरअसल उस दिन बहुत खराब हो गई थी जब तुमने वो आखिरी पत्ता देखा था। जॉनसन, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।

0: पत्ता देखा था जॉनसन। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ।
1: क्या?
0: क्या कभी तुम्हें ये ख्याल नहीं आया कि सारे पत्ते इस पतझड़ में गिर गए, पर वो आखिरी पत्ता
1: क्यों नहीं गिरा?
0: हाँ,
1: क्यों नहीं गिरा? आखिर क्या हो सकता है सू?
2: जॉनसी सोच में पड़ गई। फिर सू ने कहा,
0: जॉनसी, जिस दिन वो आखिरी पत्ता बचा था ना, उसके दूसरे दिन किसी ने मिस्टर बैरमन को हमारी ही खिड़की के पास बहुत बुरी हालत में पाया। उनके जूतों में बर्फ भरी हुई थी और उनके पेंट ब्रश और कैनवस इसी आईवी क्रीपर पेड़ के पास पड़े पाए गए थे, जहां वो रात भर पेंटिंग करते रहे।
1: पेंटिंग?
0: हाँ।
1: कैसी पेंटिंग?
0: जो पत्ता तुम देख रही हो वो कुछ और नहीं लेकिन मिस्टर बैरमैन की पेंटिंग है, जो उन्होंने आखिरी पत्ते के गिरने के बाद उस कड़कड़ाती सर्दी वाली रात में उस पेड़ पर चिपका दी थी।
1: ओह, तो वो पेंटिंग है?
0: हाँ।
1: असली पत्ता नहीं है?
0: नहीं।
1: लेकिन सू, कितना असली लग रहा है।
0: हाँ जॉनसी, बिल्कुल असली है ना, मास्टरपीस?
1: हाँ सू, मास्टरपीस। वो कहा करते थे कि मैं कभी ना कभी मास्टरपीस बनाऊंगा, और सू, उन्होंने बना दिया।
0: हाँ जॉनसी,
1: आखिर बना दिया उन्होंने मास्टरपीस सू।
0: हाँ, उन्होंने बना दिया।
1: उन्होंने बचा दिया मुझे, उन्होंने मेरी जान बचा ली सू, बचा लिया उन्होंने मुझे, उन्होंने मरने से बचा लिया मुझे सू।
0: हाँ,
1: मास्टरपीस।
0: हाँ,
1: मास्टरपीस। आखिरी पत्ता, वो आखिरी पत्ता।
3: डबडबाई आंखों से जॉनसी ने एक बार फिर से खिड़की के बाहर देखा। वो आखिरी पत्ता वहीं था जो अब मास्टरपीस बन गया था।
2: ग्रीनिच गांव के कलाकार एक एक करके आ रहे थे और उस आखिरी पत्ते को विस्मय और श्रद्धा से निहार रहे थे। जॉनसी और सू की आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे, मानो वे अश्रु अविरल बहकर उस बूढ़े कलाकार को श्रद्धांजलि दे रहे हो।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वो आखिरी पत्ता।

0: घटना को शेयर न करें, सावधान रहें और जिम्मेदार नागरिक बनें। NCERT द्वारा जनहित में जारी।
1: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का 1307वां अंक। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ पर और FM बैंड के 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10 बजने को हैं। लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है प्रेम नगर।

सोशल मीडिया पर कभी ऐसी सामग्री न भेजें जिससे किसी की भावना को चोट लगे। छानबीन किए बिना और सत्यता की जांच किए बिना किसी भी सूचना

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: मैं आकाशवाणी हूँ, 90 साल की आपकी आकाशवाणी।

90 साल और एक स्वर्णिम सफर, आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

रेडियो रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है। आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में
1: सोमवार से शुक्रवार।

0: 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
1: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
0: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
1: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
0: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: फिल्म संगीत के कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत। फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी।

अभी आपने सुना बाबुल सुप्रियो का गाए हुए गीत, फिल्म का नाम था ढाई अक्षर प्रेम के। कार्यक्रम में लीजिए, सुनिए लता मंगेशकर और अमित कुमार का गाया हुआ ये गीत, फिल्म का नाम है लवर्स।

101.6 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को है प्रस्तुत है केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम।

0: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूं निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज़्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूँ, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूँ कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। PMAY प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले PMAY 1 था, PMAY 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो देंगे। तभी हमने यहाँ पर जो जे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाएं, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो TOD बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रैवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रैवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें TOD पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे MoHUA डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप लोग अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। PMAY में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो। हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
2: बहुत

फिल्म सलामी में कुमार सानू और अलका याग्निक के गाए इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम

0: चीज़ें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता है, उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुँच गया है। इसी प्रकार पानी, लगभग करोड़ों के रूप में जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में, राशन हो। 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं, उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो, ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपके रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की, अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहाँ चीज़ें, खास करके ज़मीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार हैं, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है, तो 15 साल में दुगुने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी, उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है, तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज़्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नज़दीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है, आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है, और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज़्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज़्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम हैं, थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफ़र लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता है। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीम राणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना 1/2 घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई, कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझें इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल

0: प्लान नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा। ये स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है, उस
1: जैसे अभी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा, किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था, थोड़ा सा सात कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहाँ की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहाँ 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 योजना चलाई, इसीलिए चलाई, पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीज़ों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है, वो है अर्बन चैलेंज फंड। तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी, तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी है कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से, लोगों से, साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसका जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरी बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले ले, उसी तरीके से वो वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इस

0: लाभ उठाया है। 1,05,00,000 लोन्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन्स लिए जा चुके हैं। 75,00,000 लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स अर्बनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें, इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का एक प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए हैं ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहाँ ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है, जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे, और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है, और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरनमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिलें, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है, पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहाँ मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे, तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं, लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है, कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की

0: भी करने लग जाता है। अब जब ये सारी चीजें होती हैं तो इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी।
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 100 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में दे करके उसमें से पैसे भी कमाए तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिला के 78,000। 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे। ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहाँ तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूँ, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं। बाकी अंडर पाइपलाइन है, कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है। कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम 0 बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो को तो मेरा पहले ही 0 आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा है कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो 0 है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी,
1: इनकम होने लगेगी।
0: इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूँ, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो। वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत, बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं
1: जी। पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूँ, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए, लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: दिस इज आकाशवाणी। इन द स्पेशल सीरीज 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, नाउ वी ब्रिंग यू एन इंटरव्यू विद मनीष सबरवाल, को फाउंडर ऑफ टीम लीज सर्विसेज। इंटरव्यूअर इज अनिल पद्मनाभन, सीनियर जर्नलिस्ट।
4: ओवर द लास्ट 12 इयर्स, इंडिया हैज स्ट्राइव्ड टू मेक अ ग्रेजुअल ट्रांजिशन टुवर्ड्स अ मोर रूल्स बेस्ड ट्रस्ट एनेबल्ड इकोनॉमी थ्रू लेबर रिफॉर्म्स, डिजिटाइजेशन, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ लॉज। Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise,

अभी आप सुन रहे थे केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर विशेष कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत के कार्यक्रम में भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर, स्वर है आशा भोसले का।

फिल्म यादों की बारात का ये गीत अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है लावारिस, स्वर है किशोर कुमार का।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: यहाँ

0: फ्रांस के एवियां शहर में 52वां G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज दोपहर एवियान पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। इस दौरान नई साझेदारियों की तलाश और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को फिर सुदृढ़ करने पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के निमंत्रण पर फ्रांस की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 13वीं और प्रधानमंत्री मोदी की लगातार 7वीं भागीदारी है।
1: G7 देशों के लिए भारत का बढ़ता महत्व अब केवल रणनीतिक और कूटनीतिक स्तर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में भी दिखाई दे रहा है। हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ व्यापार समझौता, नीस में आयोजित भारत इनोवेट्स कार्यक्रम और पेरिस में होने वाले विवोटेक में भारत आधिकारिक AI साझेदार देश के रूप में भागीदारी इसकी स्पष्ट मिसाल है। इससे पता चलता है कि G7 देश भारत को केवल एक बड़े बाजार के रूप में नहीं, बल्कि प्रौद्योगिकी, नवाचार, विनिर्माण और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में देख रहे हैं। गौरतलब है कि फ्रांस की G7 अध्यक्षता कई प्रमुख प्राथमिकताएं, जिनमें वैश्विक असंतुलन को कम करना, अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी को मजबूत बनाना और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदार उपयोग शामिल है, भारत की क्षमताओं और प्राथमिकताओं के साथ काफी हद तक मेल खाती हैं। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियों, फ्रांस।
0: इससे पहले स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि आगामी नीट UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा है कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो इसमें सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही। श्री पर्वतानेनी ने कहा कि वीटो का अधिकार रखने वाले 5 स्थायी सदस्यों चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमरीका के निर्णय लेने के तौर तरीकों में बदलाव की भी आवश्यकता है। ओमान के तट पर हुई एक दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज बताया कि राजदूत ने बचाए गए चालक दल के सदस्यों से उनके प्रस्थान से पहले मुलाकात की, उन्हें शुभकामनाएं दी और इस कठिन परिस्थिति में उनके धैर्य और दृढ़ता की सराहना की। दूतावास ने विदेशों में भारतीय नागरिकों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। नागालैंड में आज से जनगणना 2027 का पहला चरण शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने नागरिकों से स्वगणना प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। स्वगणना की सुविधा 30 जून तक उपलब्ध रहेगी। घर घर जाकर जानकारी जुटाने का काम अगले महीने की 1 जुलाई से 30 जुलाई तक किया जाएगा। आज सुबह के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में मामूली तेजी देखी गई। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सेंसेक्स 318 अंक बढ़कर 76582 और निफ्टी 66 अंक बढ़कर 23920 पर था। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams.

हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दिन के 12 बजने को हैं। प्रस्तुत है हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी में समाचार।

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

शाम 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, और दिन के 1:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण महिलाओं के लिए के बैंक खातों और डिजिटल बैंकिंग से आया सामाजिक बदलाव, कम आय में भविष्य के लिए निवेश, योग के स्वास्थ्य लाभ। कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता का डॉक्टर हंसा स्वामी की वार्ता, विषय राजस्थानी गीत माए 16 संस्कार।

शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा गतिशीलता और संतुलन के लिए योग। लघु जानकारी के विषय रहेंगे परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, देशबंधु चित्रंजन दास पुण्यतिथि, डिजिटल इंडिया तकनीक से बदलता भारत, राष्ट्रीय मरु उद्यान।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्रामीण जगत। कार्यक्रम में चर्चा के विषय रहेंगे एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, खरीफ फसलों हेतु बीजोपचार, कुसुम योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण।

अब से थोड़ी ही देर में 12:10 पर आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम, और शाम 7:45 पर आप सुनेंगे गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत। शाम 8:30 पर आप सुनेंगे लोक गीतों का कार्यक्रम लोक संगीत। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर 2:30 पर। शाम 6:05 पर और रात्रि 9:15 पर। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे फरमाइशी पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। यह था कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोलामारू चैनल से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम।

असां मल्हाईंदा आहियूं इंटरनेशनल फैमिली रेमिटेंस डे माना अंतर्राष्ट्रीय परिवार जे प्रेषण जो ॾींहुं। बदिलजंदड़ वक़्त में अहिड़नि माण्हुनि जी तादाद लाॻीतो वधंदी पई वञे जंहिं में माण्हू रोटी रोज़ीअ लाइ पैसो कमाइण पंहिंजे मुल्क खां ॿाहिरि ॿियनि मुल्कनि में वेंदा आहिनि ऐं उते पैसो कमाए पंहिंजे मुल्क में माइटनि वटि मोकिलींदा आहिनि। इन्हनि पैसनि सां न रुगो कुटुंब जी माली हालत सुधरंदी आहे साण मुल्क जी माली हालत में बि वाधारो थींदो आहे। संयुक्त राष्ट्र जे मुजिबि सॼी दुनिया में अटकल 20 करोड़ माण्हू पंहिंजे रोटी रोज़ी कमाइण लाइ ॿियनि मुल्कनि में वेंदा आहिनि ऐं उतां पैसो कमाए पंहिंजे माइटनि खे मोकिलींदा आहिनि, जंहिंसां अटकल 80 करोड़ माण्हुनि खे फ़ाइदो थींदो आहे। इन्हनि मां अधु खां वधीक आबादी ॻोठनि यानी गांवनि में रहंदी आहे, जेका इन्हनि पैसनि जे मिलण सबबि न रुगो पंहिंजे रहण सहण में वाधारो आणींदी आहे, गॾो गॾु ॿारनि जो आईंदो पिणु सुधरंदो आहे। ग़रीबी ऐं भुखमरी बि घटि थींदी आहे। इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस माना परिवारिक प्रेषण जो ॾींहुं हिन 20 करोड़ आबादीअ खे इज़त ॾियण जे मक़सद सां हर साल 16 जून जो मल्हायो वेंदो आहे। ॿियनि मुल्कनि में वञी करे कमु करे पैसो कमाए पंहिंजे माइटनि खे मोकिलण जो ही सिलसिलो जारी आहे ऐं इन में लाॻीतो वाधारो थींदो थो वञे। इन में सुठी ॻाल्हि इहा बि आहे त करोड़नि घरनि जी रहण सहण जी हालत में सुठो वाधारो थी रहियो आहे। हर सरकार खे इहा कोशिश करणु घुरिजे ही जेके कमु करण वारा माण्हू आहिनि उन्हनि जे शोषण ते पाबंदी लॻाई वञे ऐं प्रोग्राम में हाणे अचो त मज़ो माणियूं घनश्याम भगत ऐं साथीअ जी आवाज़ में ॻातल हिन भगत जो।

साथियूं हींअर वा मज़ो माणे रहिया हुआ घनश्याम ऐं साथियुनि जी आवाज़ में ॻातल हिन भगत जो। जीअं भगत हिकु मशहूर कला आहे तीअं ई घणेई शख़्सियतूं आहिनि जिन पंहिंजे कमनि सां पंहिंजो नालो मशहूर कयो आहे। अहिड़ी ई हिकु शख़्सियत जो जनम ॾींहुं कल 15 जून जो हो, नागपुर जे सिंधी अदाकार नाटक नवीस लेखक ऐं तर्जमेकार किशोर लालवाणी जी जो जनम ॾींहुं हो। बालपण जे शुरूआती सालनि में मिमिक्री ऐं एक्टिंग खे कमाल जे नज़रिए सां ॾिसण वारे किशोर लालवाणी जी जे नाटक मंच ऐं अदाकारी जी शुरूआति संदसि स्कूली पढ़ाई खां ई थी वई हुई। पंहिंजे स्कूल में हिननि सिंधी नाटक लालूअ मां पंजूअ मां पेश कयो। मज़े जी ॻाल्हि इहा रही जो किशोर जी हिन नाटक में छोकिरो हूंदे बि औरत जो किरदारु मतिलबु लालूअ माउ जो किरदारु निभायो हो। कॉलेज जी पढ़ाई में बि हिननि घणेई नाटक पेश कया। पंहिंजा पंहिंजा अधिकार उनवान वारो सिंधी नाटक जॾहिं किशोर लालवाणी जी पेश कयो त ही नाटक किशोर लालवाणी जी खे न सिर्फ़ कामयाबी जी ख़ुशीअ जो अहसासु करायो पर संदसि वास्ते अदाकारी ऐं नाटक मंचनि जी शाही राह बि खोले छॾी। हिन वक़्त ताईं किशोर जी नागपुर शहर में अदाकारी में सुठी महारत रखण वारे सिंधी नौजवान तौरु मशहूरी हासिल करे वरिती हुई। वक़्त जी ज़रूरत ऐं घुर्ज समझंदे किशोर जी वीडियोज़ ऐं फिल्म्स में न सिर्फ़ अदाकारी शुरू कई पर बतौर लेखक भी जुड़िया। सिंधी फिल्म टप्पा स्टेशन ते ऐं वायसरी गुम सां किशोर लालवाणी जी जो नालो बतौर कहाणीकार ऐं स्क्रिप्ट लिखण वारे तौर जुड़ियल आहे। किशोर लालवाणी जी जा कुझु लिखियल किताब आहिनि झूलण तू दया कर, सजण देर कई ईंदे ईंदे, जलवेदार सिंधी, बंद लिफ़ाफ़ो, होजमालो, असां वॾनि जो कमु आहे सलाह ॾियण, ऐं घणेई सारा किताब ऐं नाटक हुननि लिखिया आहिनि। ऐं साथियूं हिन ॼाण खां पोइ अचो त मज़ो माणियूं आबिदा परवीन जी आवाज़ में ॻातल हिन सुहिणे कलाम जो।

0: हीअंर अवां ॿुधी रहियो आहे आबिदा परवीन जी आवाज़ में गातल हीअ कलाम ऐं हिन सां गॾु ई
1: अॼु जो असांजो सिंधी कार्यक्रम इते ई पूरो थो थिए। वरी अवां सां गॾिजाणी थींदी ईंदड़ विस्पति ते, ईअं ई ॾींहं में 12:10 ते। तेसीं ताईं खिलंदा रहो, मुश्कंदा रहो ऐं ॾियो अनुष्का रंगानीअ खे इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित सिंधी कार्यक्रम। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM 101.6 मेगा हर्ट्ज पर। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, लोफर फिल्म से, स्वर है मोहम्मद रफी का।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करणी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज़ जन जन तक।

स्वर्ग से सुंदर इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है लव, स्वर है एसपी बाला सुब्रमण्यम और केएस चित्रा के।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 1 बजने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे हमारे जयपुर केंद्र से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करते हुए श्री बिरला ने कहा कि लोकतंत्र देश की कार्य संस्कृति और विचार प्रक्रिया का अभिन्न अंग बना हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र में सक्रिय और समावेशी भागीदारी आवश्यक है।
1: आज 50 लाख से ज्यादा युवा संसद से जुड़े, अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे, दृष्टिकोण रखे और किस तरीके से सकारात्मक योगदान भारत के युवाओं का हो सकता है, भागीदारी हो सकती है, इसके लिए ये युवा संसद विशेष रूप से नई दिशा, नया दृष्टिकोण देगी।
0: 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम ऐप पर संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इस फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही टेलीग्राम को 30 जून तक पहले से पोस्ट किए गए पुराने संदेशों को एडिट करने की सुविधा भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। एनटीए के अनुसार यह कदम परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने के झूठे दावे गढ़ने और अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए उठाया गया है। एजेंसी ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए मंत्रालय का आभार जताते हुए कहा है कि इन उपायों से छात्रों के व्यापक हित में परीक्षा का सुरक्षित और सुचारू संचालन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। प्रदेश भर में आज से स्टॉप डायरिया कैंपेन शुरू हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों में डायरिया की रोकथाम, समय और उपचार, स्वच्छता, पीने का साफ पानी और जन जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान की थीम स्वच्छ जल, समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार रखी गई है। इसके अनुसार सभी जिलों में गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। बालोतरा जिले के पाटोदी गांव के पास आज एक सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये हादसा कार के रोडवेज बस से टकरा जाने से हुआ। ये सभी लोग भाई थे और कोड़ुका गांव से मजदूरी करने के लिए जा रहे थे। वहीं एक अन्य हादसे में 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक महिला घायल हो गई। ये दुर्घटना पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास पर हुई, जब एक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। ये सभी लोग जोधपुर से सिरोही जा रहे थे। उदयपुर के कोटड़ा में सेई बांध टनल के विस्तार का 95% काम हो गया है। पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने कल कार्यस्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को 15 जुलाई तक निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री कुमावत ने बताया कि इस परियोजना पर 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई है। टनल की चौड़ाई बढ़ने से इसकी जल निकासी क्षमता 328 से बढ़कर 1376 क्यूसेक हो जाएगी। इससे मॉनसून के दौरान सेई बांध का पानी बेकार बहकर गुजरात नहीं जाएगा और जवाई बांध अब 50 की जगह केवल 22 दिन में भर सकेगा। प्रदेश में प्री मॉनसून बारिश और आंधी से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जिलों में आंधी बारिश का ऑरेंज और 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इस बीच आज भरतपुर में आंधी बारिश की गतिविधियों से मौसम सुहावना हो गया। वहीं किसानों ने खरीफ फसलों की बुवाई शुरू कर दी है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जयपुर सहित कल कई जिलों में तेज आंधी के साथ बरसात हुई। हनुमानगढ़ में ओले भी गिरे। चूरू के सरदार शहर में तेज अंधड़ से दिन में ही अंधेरा छा गया। तापमान में आए इस बदलाव से कई शहरों का अधिकतम तापमान 35 डिग्री से नीचे आ गया है। हालांकि फलौदी 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आंधी बारिश का ये दौर जारी रहेगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। आज

मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोलमारू चैनल है। प्रस्तुत कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन कार्यक्रम सुनवाई मारी सगली बहना ने, मैं संतोष चारण
1: और मैं खुशबू हर्षरा, घना न घना राम राम सा।
0: बूंद बूंद सू भरे घड़ो, थोड़ी बचत सू काम बढ़ो।
1: आज री मेहनत आज री बचत, काल करेला काम जीवन में राहत।
0: समय री चाल ने समझो थोड़ो, बूंद बूंद सू भरे घड़ो। तो सब प्यारी सखियां, आ कविता की कर लागी छेवट आचे ही लागे वेला। और आ खाली कविता नहीं है, बल्कि आपने जीवन री सच्चाई है। आपा कम आय सू भी भविष्य सारू निवेश की कर सका। अब कई जना यूं सोचेला कि कम कमाई सू बचत और निवेश की कर वह सके है, पर थोड़ी सावचेती सू अने थोड़ो थावस राख अने ओ संभव वह सके है।
1: बिल्कुल संभव है कि असंभव तो की भी नहीं है बेना, कि निवेश सारू घणो पैसो होनो जरूरी को नहीं। जरूरी है तो एक आदत बननी चाहिए अपारे जीवन रे मायने। जे कोई भी व्यक्ति है जिको हर महीने थोड़ो थोड़ो रकम अलग राखे, तो समय आने पर बा बहुत ही ज्यादा काम आवेला। और आ आदत घालाला तो जीवन रे मायने अच्छी भली बचत कर सकला।
0: बिल्कुल साची बात है। और कम आय माय पहले तो आपनो खर्चो कई हुए तो उवे नापन समझनो चाहिए। और जरूरी और खास खर्चा ने कर उरे पछे आपा थोड़ा पैसा बचा सुरक्षित रखाला, जिनसु उए आवन वाले बखत में आपने काम आ सकेला। तो बेना निवेश रो सगड़ा सु बड़ो फायदो है कि अचानक आवन वाली जिकी आपनी जरूरत है, जो कि टाबरारी पढ़ाई है, परिवार बीचा कोई काम है, बुढ़ापे सारू, तो इनसु आपने जिको वो बहुत बड़ो आर्थिक सहारो मिल सके है।
1: सही बात है बेना, कि आज की बचत आपा करा हाँ भी मैं सबु जरूरी बात है कि जिको भी निवेश करा बचत करा वो सोच समझ करा। और बिना जानकारी रहे तो कदी भी पैसा रो जमा करनो ही नहीं चाहिए। छोटी शुरुआत भी बड़ो बदलाव ला सके है। और आज री जिकी बचत हुए नहीं बा काल री और आपा रे परिवार री सुरक्षा हो सके है।
0: तो इन सारू सबू पहला तो आपने वो समझना जरूरी है कि निवेश आखिर है कहीं। और निवेश जो को महत्व है वो आज राज्य का बचोड़ा रुपया है, आज राज्य का पैसा है, उन्होंने एड़ी जगह लगावनो जिको की बखतरे सागे आपने अड़ी माथे काम आ सके है। और जब भी आप ए रुपया बैंक डाकघर या कोई दूसरी सुरक्षित योजना में सारू लगावा, यानी कि आजकल तो देखा यहाँ के स्वयं सहायता समूह भी बने उड़ा है, तो उठे लगावा तो बखत पड़तिया ए आपने काम आ सके है।
1: सही है संतोष, की निवेश रो असल फायदो तो कम आए आड़ा परिवार ही ज्यादा समझ सके है। जहाँ अचानक बीमारी आ जावे, टाबरारी पढ़ाई है, बुढ़ापे रे मायने अगर कमाई नहीं हुए, तो इसी परिस्थिति रे मायने बचत और निवेश है जी की बहुत ही ज्यादा काम आवे है।
0: और खास बात के निवेश शुरू करने से पहला घर रो बजट बनावनो घणो जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और महीने री पूरी आय और फिर खर्चो जो की राशन, बिजली, पानी, पढ़ाई, दवाई, आवागमन, और इन बात आपन जिको भी खर्चो हुए, यानी कि जिको आपन लगे कि बिना फालतू खर्चो हुए आपन नहीं करनो चाहिए। और चाहिए तो खर्चो हुए आपन ने करनो चाहिए। और खास हम खास कि आपन सोचनो चाहिए कि इन बजट में आपन बचत की
1: बचत
0: कर
1: किया
0: सका
1: करा।
0: और आजकल तो देखा यहाँ की जीवन स्वयं सहायता समूह या दूजी कोई भी खाता
1: योजना
0: है,
1: हाँ।
0: तो उनमें आपा 100 रुपया से ले 500 रुपया महीना तक भी आपा
1: शुरुआत कर
0: सका।
1: हाँ, इस वास्ते जरूरी को नहीं कि आपा रखना है बड़ी रकम ही हुए, आपा छोटी छोटी रकम से भी बचत कर सका। हाँ, बचत खातर बैंक बचत खाता है, आवर्ती जमा है, डाकघर योजना है और भारत सरकारी डाकघर योजना भी लोकप्रिय है, जहाँ आवर्ती जमा है, सावधि जमा, मासिक आय योजना। और बेना निवेश करता बखत भी की बातारो ध्यान रखनो जरूरी है, ज्या की बिना सोचे समझे रुपया नहीं लगानो, लालच में यार बहुत ज्यादा लाभ रो लोभ दिलाने वाले सु सावधान रहनो, और सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान रो ही चुनाव करनो, और आपरा जिका भी दस्तावेज हुए बे सुरक्षित रखना। और बेना आपा रखने तो यहाँ भी बचत रो एक हुए जिको घर में कठे भी आपा थोड़ा

0: थोड़ी थोड़ी थोड़ी रकम राख पर आप तो बचत करा ही आ, और जद घर में कोई काम पड़े तो आप झट सू बे रुपया निकाल दे दू, तो भी घर वाला पूछे भी कि थार खाने ता कठे सु आया। तो बी टाइम आप ने इतनी खुशी हुए कि भाई मैं जी की छोटी छोटी बचत करी आज आप घर वाला रे काम आ रही है। और इनरे साथ एक बात और है बहना कि अपारे टाबरा ने भी बाल पड़े सु ही बचत री आदत डालनी जरूरी है। बिया ने भी बताना जरूरी है कि भाई अपारी आवश्यकता में और फालतू खर्चा में बहुत ज्यादा फर्क हुए। आवश्यकता री चीजा तो लानी ही पड़े, लेकिन जठे अपा ने जरूरत कोनी भी चीजा ने अपा नहीं लेवा तो बढ़िया रहे।
1: सही है, बिल्कुल साची बात है खुशबू बहन। तो सबे ना आ तो ही आपा कम आय में आपा बचत टीकर कर सका। तो अबे हाला सुना लो एक अच्छो सो गीत।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आपका व्यवसाय, आपकी पहचान,
3: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
2: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
3: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
2: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
3: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।

0: बुक कराइए, अपना विज्ञापन पहुंचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: बिना अभी बात कराला एक एड़े बदलाव री जो को आपने जीवन ने और भी आसान बना देवे है, और वह है डिजिटल बैंकिंग। क्योंकि खुशबू आप जाने हाँ कि पहला बैंक का माए कितनी लंबी लंबी लाइन आप लगाता है, उभार रहता है, और पैसा जमा करावण हुए चाहे निकालना हुए तो उन माए अपने घणो ही बखत है वो लागन टूकतो हो।
3: एकदम सही बात है, पर अबेरी बात करा तो मोबाइल री मदद सु आज आप घर बैठा बैंकिंग रो काम कर सका हाँ। रुपया भेजना हुए, बिल भरना हुए या खरीदारी करना हुए है, ऐसा काम चुटकी बजावता ही पूरा हो जावे, और इरने मायने पारदर्शिता भी बढ़ी है, और बीच में होने वाली परेशानी भी कम हुई है। और सब मोटी बात आ है बेना कि आपारे बखतरी भी बचत हो जावे, आपा भी बखतरे मायने घर रहा है या टाबरा रहा है या पर आपारा भी कोई काम हुए तो वे भी आप कर सका हाँ। मतलब कि एक आपा ने एक चीज सु कितना फायदा हुए है।
2: बिल्कुल, और इनरे साथे देखो सा कि आज आपनी लगो तक सगली बेना आपा देखा हा कि मोबाइल सु बैंकिंग सीखने आर्थिक दृष्टि सु मजबूत वेंट होकी है
3: हाँ।
2: पर सागे सागे बेना इन माय सावचेती राखनो घणो ही
3: जरूरी है
2: कि आपने किणी भी अनजान ने आपनो ओटीपी या पिन नंबर या आपने बैंक री किणी भातरी जानकारी आपने नहीं देनी चाहिए।
3: तो डिजिटल सुविधा अपनानो पर समझदारी और सुरक्षा रह सागे, क्योंकि डिजिटल बैंकिंग सिर्फ रुपया रो आदान प्रदान को नहीं है बल्कि समाज ने समाज रे लोगा ने आगे बढ़ाने रो एक माध्यम है। और आपा तो बैना ने कही हुए कि भाई खरीदारी रो शौक होया करे तो आपा तो कही करा कि आजकल भाई मोबाइल खोला और आपा देखो कि ऐसा कई माध्यम है जिके सु आपा घरे बैठा खरीदारी कर सका हाँ, तो आपा झटसू खरीदारी करना। तो बिनरे मायने ओ जरूरी है बैना की थोड़ी सी सावधानी रखनी, थोड़ी सी चूक हुई नहीं और आपा ने फायदे री जगह नुकसान हो जाया करे है। और इनरे माने ओ भी ध्यान रखना जरूरी है कि फोन है जिको टाबरा ने नी देवा, क्योंकि टाबर ने तो देखो ध्यान को नहीं हुए तो बेबी कई भी है जिको खटको दबा देवे तो आपा ने नुकसान हो सके है। तो आपा इरी जिको फायदो है वो लेवा पर समझदारी सु, थोड़ी सी चूक आपा ने नुकसान पहुंचा सके है।
2: बिल्कुल साफ साची बात। तो सा आ तो ही डिजिटल बैंकिंग सारू घणी ही आछी चर्चा। अबे हाला फेरू मनोरंजन सामी और सुना लो आछो सो गीत।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: बिना आपने सनातन धर्म रे माया 16 संस्कारों घणो ही बड्डो धार्मिक महत्व
3: है।
2: और 16 संस्कार आपने लोक गीता में पिरोई छोड़ा भी है। 16 संस्कार आ रहा है इन गीता माए मानव जीवन ने पवित्र अनुशासित और संस्कारी बनावरी सांची परंपरा है। गर्भाधान सु लेर अंतिम संस्कार तईरा जका भी लोकगीत है उणामय संस्कार आपार जी का संस्कार जीवन है। उणार जी की आस्था है उठे निजर आवे है। ए संस्कार मिनक जात ने धर्म कर्तव्य और उणारा सदाचारी ठावी सीख देवे है। तो सा इनी कड़े माए अबे सुनाला एक वार्ता राजस्थानी गीता में 16 संस्कार रो महत्व। वार्ताकार है हंसा स्वामी। तो हालाना सुनाला एक वार्ता।
4: लोकगीत शब्द रा कई अर्थ होवे जिया लोक प्रचलित लोक निर्मित लोक विषयक आदि। लोकगीत रे माए लोकगीता री रचना करण वाले रो निजी व्यक्तित्व नी हुए वो लोगा रे जीवन सु संबंध रखे। लोकगीत रे माए मानवीय भावां री छवि देखण ने मिले। लोकगीत रे माए आशा निराशा सुख दुख राग द्वेष विरह मिलन रो शांत रो चित्राम देखण ने मिले। राजस्थान रे माए लोकगीता रो घणो मोटो रिवाज है जिन रे माए लुगाया द्वारा गाए जावण वाला अपौरुषीय गीत आदमी द्वारा गाए जावण वाला लोक रंजन गीत और मिनखा लुगाया दोनों द्वारा गाए जावण वाला सामूहिक गीत आपरे संस्कृति ने एक खानी बढ़ावो देवे तो दूसरो खानी मन ने ठंडक पहुंचावे। आदमी रे जीवन में जन्म सु लेर मरण तक री यात्रा रे माए ने लोकगीता रो साथ रेवे। भारतीय संस्कृति रे माए लोकगीता रो महत्व घणो शांत रो है। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार रो महत्व शरीर मन आत्मा ने उत्तम बनावण री क्रिया माने। ए 16 संस्कार है गर्भधान पुषमानती नयन जात कर्म नामकरण कर्ण वेदन अन्न प्राशन चूड़ाकरण विद्या आरंभ उपनयन जिके ने आप जनेऊ भी कहवा वेदा ज्ञान समावर्तन केशांत ऋतु शुद्धि विवाह संस्कार और अत्येष्टि संस्कार आदि। राजस्थानी लोकगीता री शुरुआत गर्भधान संस्कार शु हुए। गर्भधान धारण गर्भधारण करण रे बाद में जच्चा बच्चा दोनों री दशावा ने 9 मास तक रो वर्णाम इन भांसु हुए। मैं ई गीत रे मायने थोड़ो सो बताऊं। पहलो मासज लागियो जी बाल बहुली जीव जाए। दूजो मासज लागियो जी थुकतड़ी जीव जाए। अगणो मासज लागियो जी कोई खीर खांड जीव जाए। सातवो मासज लागियो जी कोई सातव पूजन जाए। पूरा मासज लागिया जी कोई होलर शब्द सुनाए। इन तरह पछे टाबर होण रे बाद नामकरण संस्कार माथे घणी तरह रा गीत गाई जे। इन माए सुसे सु ज्यादा पीलो गाई जे। दिल्ली शहर सु साहिबा पीलो मंगाई दो हाथ पची

गड्ढे बीसा गड्ढा मारू जी पीलो रंगाए दो। गडरे भी काने सुसाइबा रंगारा बुलाओ जी, छोटी सी बूंद बधाओ गड्ढा मारू जी पीलो रंगाए दो। पीलो तो ओढ़ मारी जच्चा पाटे जी बैठी, जोशी जी सरायो घणरो पीलो गड्ढा मारू जी पीलो मंगाए दो। नामकरण रे बाद चूड़ाकरण संस्कार रे माय टाबर रे मुंडन संस्कार भी इन्हें बोले। इन संस्कार रे माय आप रे कुल देवता री जात जड़ूला रे वास्ते यात्रा कर मुंडन संस्कार करे। अठे में हनुमान जी रो एक गीत जी को बखान करूँ वो ई तरिया है सुसुरु।

मुंडन संस्कार टाबर रे एक साल रो होण सु पहला पहला करे। इरे बाद करण छेदन रो संस्कार और रिवाज आजकल थोड़ो कम देखने मिले। जब टाबर री उम्र 3 साल री हो जावे तो उन रे बाद आप री मर्जी सु ओ संस्कार पूरो करे। घण खरा लोग आखा तीज माथे वातावरण अनुकूल होवण रे कारण प्राय आखा तीज माथे ही कर्ण बिंदावे और ओ गीत गावे, पीला सा सोना उज्जल सा मोती, ए लाला जी रे सोवे लाजी, इन सोने री बाली बनवाई दो, लाला जी रा कान छिदवाई जो जी। कर्ण छेदन रे बाद जनेऊ संस्कार आयु बल और विद्या पावन खातर गुरु खन्ने पढ़न ने जावण सारू ही ई संस्कार रो आयोजन करे। वे दादू जी नानण वायो, माता जी बाई कातो जी नी सूत, पैरो मारा कंवर कन्हैया, जनेऊ पैरो ब्राह्मण होजो जी, बना पंडित बन घर आवो जी। विवाह संस्कार रे माय कई गीत गाइजे, जिन में देवी देवता बन्ना बन्नी भात भात बधावा गीत राती जोगा और वर पख में बरा जावण रे बा टूटा टूटी रा गीत गाइजे। विवाह रे माय सेसु पहला देवी देवता रा गीत गाइजे, इन में गणखरा लोग फांबड़ली रो गीत जरूर गावे, जिनसु सगला देवी देवता रो नाम लेजे। थे तो ओडो नी हरिराम जी पीली फांबड़ली, थाने फांबड़ली रे हीरा मोती लाल पल्ला पर गमके गुगरा जी। इन तरह देवी देवता रे गीत रे बाद गणेश जी रो गीत गाइजे, जिकेरी शुरुआत यूं हुए गड।

मारी आली बोली लाडली सवाग बिड़लो, मारी छोटी सी लाडलड़ी सवाग बिड़लो। ब्यावरे घर में जब जवाई आवे तो तालोटो पुखंडा गीत और मुमल आदि जवाई रा गीत गवे। जवाई रा गीत में सेसु मजाक बिरी साल्या करे, जो मांजा धोया थाल परोस दिया बात जी, आवो आवो श्री राम जी भाणे गालो हाथ जी, भाणे गालो हाथ बतावो थारी जात जी, बाप थारो रंडी और माँ अच्छी नाल जी।

डारे साथ जी काकी थारी कुतड़ीर मुते चुला ला माए जी। ब्याम रे गीता में गीता ने खत्म करन रो टाइम बदावो गीत जरूर गाई जे। वो इया हुए मारे आंगणे आंबो मोली यो पी छोकड़े अमलेरी डाल सहेलियाए आंबो मोली यो मारा सासू जी।

अंतिम संस्कार गीत में हरजस गीत गाया जावे, इन्हें मृत्यु गीत रे नाम से भी जानी जे। घर में बुढ़ा बडेरा री मौत पर लुगाया पालकी गावे, कटे सू आई ओ बडेरा थारी पालकी, ओ जी कटे सू आयो रे विमान, ओ जी बड़े भागी आयो हले कारो जी श्री भगवान रो, सुरगा सू आईयो बडेरा थारी पालकी, ओ जी दरगा सू आयो रे विमान, ओ जी बड़े भागी आयो हले कारो श्री राम रो। मृत्यु संस्कार रे माय मृतक री अस्थियां रा अवशेष हरिद्वार में जाए और गंगा रे पानी में घालन री परंपरा है। इन रे खातर केवे के इया सु मरोड़े आदमी रे आत्मा ने मोक्ष मिले। अस्थियां लेर जावण वालो रो रस्तो झाड़ बुहार साफ रखण और लारे सु खेती रो काम करण संबंधी क्रिया अपनावे, जिनने पथवारी सींचनो कहवे। ई टेम लुगया आप रे पल्ले सु पथ बुहार और खेजड़ी रे पेड़ री पानी दूध पतासा मूली गेहूँ आदि सु पूजा करे और गीत गावे। सोने रो हलियो रूपेरी नाली, मोतिया रो बीज बुवाई पथवारी, हर पथवारी बावो राम सींचो राम, पथवारी माता पतड़ेरी रानी, भूखा ने भोजन तिसा ने पानी, भूलिया ने राह बताई पथवारी, हर पथवारी बावो राम सींचो राम। हरिद्वार सु परिवार रा सदस्य रो पाछो घरे आवणो आवण पर खेजड़ी री पूजा अर्चना रे बाद घरे आवते ही ओ गीत गावे। ये

0: राजस्थानी गीत रे माए बधावे गीत रा बधावे रा गीत सब गीता और हरजस रे बाद नहीं गावे तो गीत आधा मानी जे और हरजस गीता रे बाद ओ बधावो गाई जे ए मोती समदरिया में नीप जे सोवे मारे कानू राम रे कान बधावो राजा राम रो। इन तरह आपा देखा कि अपना लोकगीत में प्राय सगला संस्कार देखने ने मिले।
1: तो बेना घणी ही आछी वार्ता रही हंसा बेन 16 संस्कारारा अच्छा अच्छा गीत भी सुनाया आपने। तो सगला सू पहला डॉक्टर हंसा बेन ने आभार व्यक्त करा और अबे सुना ओ गीत।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल,

0: सम्मेलन में विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं के नेता प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन के इस सम्मेलन में वैश्विक असंतुलन को कम करने, बड़े भू राजनीतिक संकटों से निपटने, बच्चों से जुड़े मुद्दों और संगठित अपराध तथा अवैध धन के प्रवाह को रोकने पर चर्चा होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज एवियन पहुंचेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे। सत्र का विषय है नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना। सत्र में G7 देशों, भागीदार देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री का काफी व्यस्त कार्यक्रम रहेगा। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। रात्रि में वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भोज में शामिल होंगे। सम्मेलन के दौरान कल प्रधानमंत्री मोदी की अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक प्रस्तावित है। दोनों नेताओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है। और अधिक जानकारी के लिए अब चलते हैं एवियो में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। जी अंकित, G7 के कई देश वर्तमान में धीमी विकास दर और आबादी से जुड़ी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इन देशों की विनिर्माण, नवाचार और सेवा क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी नए अवसरों की खोज में किस तरह सहायता कर सकती है?
1: जी जागृति, आपने वैश्विक परिदृश्य में आ रहे जिन बदलाव की बात की है वो बिल्कुल सही है। देखिए, अगर हम आज के डेट में G7 देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर नजर डालें तो उनमें से कई ऐसे देश है जो अपनी वृद्ध होती आबादी और श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में भारत के साथ साझेदारी उनके लिए काफी नेचुरल है और उनका बहुत सीधा फायदा उनको मिलता है। एक तो भारत के पास एक विशाल युवा और कुशल प्रतिभाओं का समूह है जो वैश्विक तकनीक और सेवा क्षेत्र का अभिन्न हिस्सा बन रहे हैं। लेकिन जागृति, यह साझेदारी केवल मानव पूंजी तक ही सीमित नहीं है। जैसा कि हाल में अपनाए गए भारत फ्रांस नवाचार रोडमैप को आप देखें, उससे साफ रेखांकित होता है कि G7 देश अब भारत को केवल एक विशाल उपभोक्ता बाजार के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि भारत एक अहम और विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभरा है। जागृति
0: अंकित, आज के दौर में जैसे जैसे AI आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता जा रहा है, भारत में मौजूदा डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा समावेशी AI डेवलपमेंट के लिए किस तरह से सहायक हो सकता है?
1: बिल्कुल जागृति, देखिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे यानी DPI और कृत्रिम बुद्धिमता यानी AI का एक साथ आना वास्तव में समावेशी विकास के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। ये देखने वाली बात है कि एकाधिकार वाले निजी प्लेटफॉर्म्स लाने के बजाय भारत ने आधार और UPI जैसी अपनी डिजिटल संरचना को पब्लिक गुड के लिए बनाया है। मतलब पहले दिन से ही व्यापक आबादी और सर्वसमावेशिता के उद्देश्य से ये मॉडल डिजाइन किए गए हैं। और अब जब आप इसमें AI को जोड़ देती हैं तो भारत का DPI बहुत विविधतापूर्ण, उच्च गुणवत्ता वाला और सहमति आधारित डेटाबेस प्रदान करता है जो AI मॉडल्स को जिम्मेदार और निष्पक्ष बनाने के लिए बहुत जरूरी है। जी जागृति,
0: धन्यवाद अंकित इस तमाम जानकारी के लिए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्लोवाकिया की उनकी यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कल स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी में कहा कि कला और संस्कृति में लोगों को करीब लाने की शक्ति है। इस प्रदर्शनी में स्लोवाकिया के कलाकारों की कृतियां भी शामिल थीं। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे ब्रातिस्लावा से बनारस का जुड़ाव बताते हुए स्लोवाकिया के कलाकारों द्वारा वाराणसी की रचनात्मक प्रस्तुति की सराहना की। स्लोवाकिया यात्रा के समापन पर श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापारिक संबंधों से युवाओं को बहुत लाभ होगा। उन्होंने स्लोवाकिया की सरकार और वहां के लोगों से मिले स्नेह के लिए आभार व्यक्त किया तथा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो को धन्यवाद दिया। ब्रातिस्लावा में श्री फित्सो ने प्रधानमंत्री मोदी को विदा किया। स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से भी सम्मानित किया। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बुधवार शाम पेरिस पहुंचेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार की सुबह प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इन बैठकों का सिलसिला दोपहर तक जारी रहने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री यूरोप के

0: प्रौद्योगिकी और नवाचार आयोजनों में से एक फिबाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे और वहां संबोधन करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों से संवाद करेंगे। कार्यक्रम में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने वाली सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की जाएंगी। यह आयोजन भारत और फ्रांस के बीच जन से जन संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया है कि आगामी नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। पुनर्परीक्षा 21 जून को होगी। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। एनटीए ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने का निर्देश दिया गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि विविध संस्कृतियों और भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला भारत स्वतंत्रता के बाद बढ़ती जनभागीदारी से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनकर उभरा है। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद के प्रतिभागियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 50 लाख से अधिक युवा आज युवा संसद से जुड़े हुए हैं।
2: कैसे हम विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए युवा संसद के माध्यम से तर्क संवाद की संस्कृति को बढ़ाने का ये कार्यक्रम आयोजित किया और निश्चित रूप से आज 50 लाख से ज्यादा युवा युवा संसद से जुड़े। अलग अलग राज्यों के अंदर युवाओं ने उस राज्य के विकसित और विकसित के साथ भारत विकसित के सपनों को साकार करने के लिए अपने विचार रखे।
1: सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांव में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांव में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज किया जा सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये दावा निराधार है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पिछले दशक में देश भर में बुनियादी ढांचे में सुधार का काम रिकॉर्ड स्तर पर हुआ है। सोशल मीडिया पर MyGov की एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए अगली पीढ़ी की अवसंरचना तैयार करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहन्ना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया। याचिका में तर्क दिया गया है कि फॉर्म 6 के तहत मौजूदा सत्यापन तंत्र अपर्याप्त है और इसके तहत उचित सहायक दस्तावेज के बिना भी व्यक्तियों को चुनावी डेटाबेस में शामिल किया जा सकता है। भारत ने आगाह किया है कि अगर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार केवल अस्थायी सदस्यता तक ही सीमित रखा गया तो

0: सुधार के प्रयास नाकाम हो सकते हैं। संयुक्त राष्ट्रों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पर्वतानेनी ने सुरक्षा परिषद में सुधारों पर अंतर सरकारी विचार विमर्श बैठक में ये बात कही।
1: UNSC reform would be grossly inadequate.
2: यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार सिर्फ अस्थायी सदस्य देशों के विस्तार तक ही सीमित रहता है तो ये सुधार अधूरे और नाकाम साबित होंगे। इससे मौजूदा 5 स्थायी सदस्यों की निर्णय लेने की शक्ति संरचना में कोई बुनियादी बदलाव नहीं आएगा। सुरक्षा परिषद और सदस्य देश लंबे समय से सार्थक सुधारों का इंतजार कर रहे
1: हैं।
0: ओमान के तट पर हुई दुखद समुद्री घटना के बाद MT सेटेबेलो जहाज के चालक दल के 21 भारतीय सदस्य सुरक्षित घर लौट आए हैं। ओमान के मस्कट स्थित भारतीय दूतावास ने आज ये जानकारी दी। पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू विकास और आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने के लिए देश की राजकोषीय नीति में बदलाव आ रहा है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत का जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण तात्कालिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने से हटकर दीर्घकालिक रणनीतिक स्थिरता की ओर अग्रसर है। आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक लगभग 0.5% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार के अनुसार सेंसेक्स 475 अंक बढ़कर 76,740 पर और निफ्टी 115 अंक बढ़कर 23,970 पर पहुंच गया। महिला हॉकी में भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। इस जीत के साथ भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड्स में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। आकाशवाणी चेन्नई आज अपनी स्थापना की 88वीं वर्षगांठ मना रहा है। AIR चेन्नई ने राज्य भर में लाखों लोगों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हिमालय की तराई वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज से बहुत तेज बारिश का अनुमान लगाया है। विभाग ने तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में शुक्रवार तक भारी बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने बताया कि आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली गिरने और 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम फ्रांस के एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में वाराणसी केंद्रित प्रदर्शनी की सराहना की। संबंधों को मजबूत करने में कला और संस्कृति की भूमिका पर दिया बल। नीट UG पुनर्परीक्षा से पहले सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर 22 जून तक प्रतिबंध लगाया। सर्वोच्च न्यायालय ने पहचान प्रमाण पत्र के रूप में केवल आधार कार्ड के उपयोग की याचिका पर केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा। और भारत ने महिला FIH नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट में जापान को हरा कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलो हर्ट्ज और FM बैंड 101.6 मेगा हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है लव यापा। स्वर है जुबिन नोटियाल और जहरा S. खान के।

पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉन्ग पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

लवयात्री फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। स्वर थे जुबिन नोटियाल, असीस कौर और बादशाह के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए अरिजीत सिंह के स्वर में। फिल्म का नाम है गदर 2।

फिल्म प्रेम रतन धन पायो का ये गीत अभी आपने सुना। स्वर थे अन्विशा, विनीत सिंह और हर्षदीप कौर शबाब सबरी के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा। स्वर हैं पायल देव और विशाल मिश्रा के।

फिल्म एक पहेली लीला का ये गीत अभी आपने सुना, स्वर थे तुलसी कुमार, आलम खान, ऐश्वर्या मजूमदार और दब्बू मलिक के। कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी, स्वर हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोपहर के 3 बज रहे हैं। हमारी ये सभा अब यहीं संपन्न होती है। शाम 5 बजे हमारी नियमित सांध्यकालीन सभा में हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए।

0: ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की संध्याकालीन सभा आरंभ होती है। अब समाचार होंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के इवियन शहर पहुंच गए हैं। इवियन पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि भारत अधिक टिकाऊ और समृद्ध ग्रह के लिए सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले श्री मोदी इवियन जाने के लिए स्विट्जरलैंड के जिनेवा पहुंचे। हवाई अड्डे पर स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय परमेलिन ने उनका स्वागत किया। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की यह लगातार 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज शाम प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत करेंगे। इसके बाद श्री मोदी नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनर्निर्माण करना विषय पर एक उच्च स्तरीय सत्र में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के दौरान कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। दोनों नेता पारस्परिक हित के महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किया है। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आकांक्षाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर कहा है कि औषधि नियमों के अनुसूची के में दवाओं के वर्ग शीर्षक के अंतर्गत शामिल सिरप शब्द को हटा दिया गया है। सिरप शब्द हटाए जाने के बाद अब खांसी के सिरप को इस छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इससे पहले 1000 से कम आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में खांसी के सिरप की बिक्री को लाइसेंस संबंधी प्रावधानों से छूट मिली हुई थी। यह संशोधन सिरप आधारित औषधियों पर नियामकीय निगरानी को और सुदृढ़ करने तथा छूट संबंधी व्यवस्था को वर्तमान जन स्वास्थ्य और सुरक्षा आवश्यकताओं के रूप बनाने के उद्देश्य से किया गया है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान यस बैंकों के ऋणों की कथित धोखाधड़ी पूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। निदेशालय ने बताया कि यह तलाशी अभियान कुछ एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों और यस बैंक के बीच कथित मिलीभगत से जुड़े धन शोधन मामले में सबूत जुटाने के लिए चलाया जा रहा है। जांच संकटग्रस्त संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए सर्कुलर लेन देन, नीलाम की गई संपत्तियों का कम मूल्य

0: रेखांकन, बढ़ा चढ़ाकर या धोखाधड़ी से किए गए दावे और कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में लेनदारों के मतदान अधिकारियों और पारदर्शिता से संबंधित मुद्दों के संबंध में है। हिमाचल प्रदेश में स्वगणना अवधि पूरी होने के बाद जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत गृह सूचीकरण और आवास जनगणना के लिए जमीनी अभियान आज से प्रारंभ हो गया। राज्य में जनगणना कर्मियों द्वारा घर घर जाकर सर्वेक्षण का कार्य अगले महीने की 15 तारीख तक जारी रहेगा। मंत्रालय ने बताया कि केरल और नागालैंड में स्वगणना सुविधा प्रारंभ हो चुकी है और ये इस महीने की 30 तारीख तक उपलब्ध रहेगी। इस बीच महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और झारखंड के साथ साथ दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में गृह सूचीकरण और आवास जनगणना का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। भारत ने न्यूजीलैंड में महिला FIH हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। पूल ए के दूसरे मैच में भारत ने जापान को 2-1 से हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर पहुंच गया है। बृहस्पतिवार को भारत का अगला मुकाबला उरुग्वे से होगा। पुरुष हॉकी में नीदरलैंड में आयोजित FIH हॉकी प्रो लीग में कल भारत का सामना जर्मनी से होगा। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र और सिक्किम में रविवार तक कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:05 हुए हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों के लिए कार्यक्रम युववाणी।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट एंड दोस्त वसुंधरा आचार्य,
1: और मैं हूं आपकी दोस्त दिशा।
0: दोस्तों, आज हम आपसे एक सवाल पूछेंगे। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आप स्टाइल से कुर्सी से उठना चाह रहे हैं और पैर सुन होने के कारण वापस उसी कुर्सी पर बैठ गए हो,
1: और फिर आसपास वालों को दिखाने के लिए ऐसा भी नहीं किया जैसे नहीं मैं तो बस कुछ भूल गई थी?
0: बिल्कुल, लेकिन ये मजाक की बात नहीं है दोस्तों। हमारा शरीर हमें संकेत दे रहा है कि भाई थोड़ी हरकत भी कर लिया करो।
1: सही कहा, और आज की पीढ़ी का हाल तो ऐसा है कि अंगूठी सबसे ज्यादा फिट है, दिन भर मोबाइल स्क्रॉल जो करते रहते हैं,
0: और बाकी शरीर सोचता रहता है कि भाई हमने क्या गलती कर दी है।
1: दोस्तों, इसी समस्या का एक शानदार समाधान है हमारे पास, वो है योग। आज हम बात करेंगे गतिशीलता और संतुलन के लिए योग की।
0: दिशा, सबसे पहले तो हमारे श्रोताओं को ये बताओ कि आखिर गतिशीलता होती क्या है।
1: वसुंधरा, अगर आसान भाषा में कहें तो बिना कराहे, बिना उफ बोले, बिना किसी की मदद लिए शरीर का आराम से घूमना फिरना ही गतिशीलता है।
0: वाह, यानी अगर जूते के फीते बांधने में 5 मिनट से ज्यादा और 3 आवाजें निकल रही है तो गतिशीलता पर थोड़ा काम करने की जरूरत है दोस्तों।
1: और योग इसमें बहुत मदद करता है। ताड़ासन, त्रिकोणासन और सूर्य नमस्कार जैसे आसन शरीर को लचीला और सक्रिय बनाते हैं।
0: वैसे मुझे तो सूर्य नमस्कार शरीर का गुड मॉर्निंग मैसेज लगता है।
1: और वसुंधरा, सबसे अच्छी बात तो यह है कि इसमें कोई ब्लू टिक का इंतजार भी तो नहीं रहता।
0: सही कहा दोस्तों। अब बात करते हैं संतुलन की। आजकल संतुलन सिर्फ सोशल मीडिया और पढ़ाई के बीच नहीं बल्कि शरीर में भी जरूरी है,
1: क्योंकि संतुलन का मतलब केवल गिरने से बचना नहीं है बल्कि शरीर और मन दोनों को स्थिर रखना है।
0: दोस्तों, इसके लिए वृक्षासन बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन पहली बार करने वाले अक्सर पेड़ से ज्यादा हवा में उड़ते पत्ते लगते हैं।
1: सच है, कई लोग वृक्षासन करते करते ऐसे डगमगाते हैं जैसे नेटवर्क कमजोर होने पर वीडियो कॉल डगमगाती है।
0: लेकिन धीरे धीरे अभ्यास से संतुलन बेहतर हो जाता है,
1: और सिर्फ शरीर ही नहीं ध्यान और एकाग्रता भी बढ़ती है। इसलिए खिलाड़ी, कलाकार और विद्यार्थी भी योग को अपनाते हैं।
0: दोस्तों, वैज्ञानिक अध्ययनों यानी कि साइंटिफिक स्टडीज में पाया गया है कि नियमित योग करने वालों में शरीर का नियंत्रण और संतुलन बेहतर होता है।
1: यानी योग कोई पुरानी परंपरा नहीं है बल्कि आधुनिक।

0: जीवन की जरूरत भी है।
1: और युवाओं के लिए तो खास तौर पर, क्योंकि घंटों मोबाइल, लैपटॉप और गेमिंग के कारण शरीर की गतिविधियां कम होती जा रही है।
0: ऐसे में दिन के सिर्फ 15 से 20 मिनट का योग भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
1: दिशा, कई लोग कहते हैं कि योग शुरू करेंगे, लेकिन कल से।
0: हाँ, और वो कल बेचारा कभी आता ही नहीं है।
1: इसलिए दोस्तों, शुरुआत आज से ही कीजिए। छोटे छोटे कदम भी बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं।
0: याद रखिए, फिटनेस का मतलब सिर्फ सिक्स पैक नहीं है। बिना दर्द के झुक पाना, आराम से चल पाना और शरीर का संतुलित रहना भी फिटनेस है।
1: और योग हमें यही सिखाता है, लचीलापन, संतुलन और आत्मविश्वास।
0: तो दोस्तों, मोबाइल की बैटरी चार्ज करने के साथ साथ अपने शरीर और मन को भी चार्ज करना मत भूलिएगा।
1: क्योंकि जब शरीर गतिशील और मन संतुलित होता है, तब जीवन की राह और भी आसान हो जाती है। दोस्तों, अभी हमने बात करी थी संतुलन की, कि मन में, शांति में, सब में संतुलन होना चाहिए। तो हमारी गीत और हमारी बातचीत में भी संतुलन होना चाहिए।

0: दोस्तों, गाने का मजा तो आपने ले लिया, तो क्यों ना अब शुरुआत की जाए आपकी नॉलेज को टेस्ट करने की।
1: जी हाँ दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके और हमारे पसंदीदा सेगमेंट यानी क्विज टाइम का,
0: जहाँ हम आपसे पूछेंगे दो सवाल और कार्यक्रम के अंत में देंगे उन्हीं सवालों के जवाब।
1: तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप पहल किस मंत्रालय द्वारा विकसित की गई। मैं अपना सवाल दोहराती हूँ, पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप पहल किस मंत्रालय द्वारा विकसित की गई।
0: और हमारा दूसरा सवाल है, 52G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। 52G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है।
1: दोस्तों, जवाब मिलने तक का सब्र रखिए और इन सवालों के जवाब खोजने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि कार्यक्रम के अंत में हम फिर हाजिर होंगे इन सवालों के उत्तर के साथ।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: गली गली आवाज ये जाए, हर घर अपनी गणना करवाए, मिलकर लिखेंगे कल का नया अध्याय। हमारी जनगणना, हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
6: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027, बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
1: दिशा, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो हजारों किलोमीटर दूर रहकर भी घर की रसोई में खुशबू, बच्चों की पढ़ाई में उम्मीद और माता पिता के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है।
0: अच्छा, क्या इसका जवाब प्यार हो सकता है?
1: प्यार तो है ही, लेकिन आज के विषय से जुड़ा जवाब है परिवार प्रेषण यानी रेबिटेंस।
0: बिल्कुल, और इसी महत्वपूर्ण विषय को समर्पित है अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस, जो हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है।
1: दोस्तों, जब कोई व्यक्ति अपने परिवार से दूर किसी दूसरे शहर या देश में काम करता है तो अपनी कमाई का एक हिस्सा घर भेजता है, तो उसे परिवार प्रेषण कहा जाता है।
0: और यह केवल पैसे भेजना नहीं होता, बल्कि उसमें छिपी होती है जिम्मेदारी।

0: जानकारी, त्याग और परिवार के प्रति समर्पण की भावना।
1: दिशा, मुझे हमेशा लगता है कि बैंक खाते में आने वाला वो संदेश, राशि जमा हो गई है, कई परिवारों के लिए सिर्फ एक मैसेज नहीं बल्कि राहत की सांस होती है।
0: बिल्कुल, कई घरों में उसी पैसे से बच्चों की फीस भरी जाती है, दवाइयाँ खरीदी जाती है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होती है।
1: दोस्तों, आज लाखों भारतीय युवा पढ़ाई या रोजगार के लिए अपने घरों से दूर रहते हैं, कई लोग विदेशों में भी कार्यरत हैं
0: और उनकी मेहनत से भेजी गई राशि न केवल उनके परिवार को सहारा देती है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान करती है।
1: सोचिए, कोई व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर बैठा है लेकिन उसके द्वारा भेजी गई रकम से गांव में किसी बच्चे की किताबें खरीदी जा रही है,
0: या किसी माँ की दवा खरीदी जा रही है, या किसी बहन की पढ़ाई आगे बढ़ रही हो। यही तो परिवार प्रेषण की असली ताकत है।
1: दोस्तों, आज तकनीक ने इस प्रक्रिया को बहुत आसान बना दिया है। पहले मनी ऑर्डर का इंतजार होता था
0: और अब एक मैसेज का, और अब मोबाइल पर कुछ क्लिक कीजिए, पैसा कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है।
1: वैसे दिशा, आज के युवाओं की एक आदत बड़ी मजेदार है।
0: कौन सी?
1: जब घर से पैसे आते हैं तो तुरंत मैसेज, थैंक यू मम्मी पापा, लेकिन जब खुद कमाकर घर भेजने की बारी आती है तब समझ आता है कि हर रुपए के पीछे कितनी मेहनत होती है।
0: तभी तो पता चलता है कि ऑनलाइन फूड ऑर्डर और महीने का बजट एक दूसरे से सबसे बड़े दुश्मन है।
1: सही कहा, लेकिन यही अनुभव युवाओं को जिम्मेदारी भी सिखाता है दोस्तों।
0: और यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस केवल आर्थिक योगदान का नहीं बल्कि पारिवारिक मूल्यों का भी उत्सव है।
1: एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी श्रमिक अपनी मेहनत से परिवारों का जीवन बेहतर बना रहे हैं।
0: उनके त्याग और योगदान को सम्मान देने के लिए ही इस दिवस का विशेष महत्व है।
1: दिशा, मुझे लगता है कि परिवार प्रेषण केवल बैंकिंग का विषय नहीं है
0: बल्कि यह भावनाओं का विषय है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति दूर रहकर अपने परिवार की खुशियों के लिए काम करता है तो वह सिर्फ पैसा नहीं अपना प्रेम और विश्वास भी भेज रहा होता है।
1: युवाओं के लिए इसमें एक बड़ी सीख भी छिपी है दोस्तों, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनना और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना,
0: और साथ ही साथ यह भी कि हमें उन लोगों के संघर्षों का सम्मान करना चाहिए जो अपने सपनों और परिवार दोनों के लिए मेहनत कर रहे हैं।
1: तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखें जो घर से दूर रहकर काम कर रहा हो तो उसके संघर्ष और समर्पण को जरूर समझिए,
0: क्योंकि कई बार किसी परिवार की मुस्कान के पीछे किसी दूर बैठे व्यक्ति की अथक मेहनत छिपी होती है।

0: मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।
1: संग प्रीत लगाई सजना सजना।
0: बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार। आकाश वाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरो से चमकता है।
1: तुझको आकाश की वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: दोस्तों, अब हम एक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की बात करेंगे जिन्होंने अपना जीवन देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिया। उनका नाम था देशबंधु चित्तरंजन दास जी।
1: वसुंधरा, देशबंधु चित्तरंजन दास जी का मतलब देशबंधु का मतलब है देश का दोस्त या भाई। और यह नाम उन्हें किसी सरकार ने नहीं बल्कि खुद भारत की जनता ने उनके अनोखे त्याग को देखकर दिया था। आज 16 जून को उनकी पुण्यतिथि है।
0: दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो अपने जमाने के देश के सबसे बड़े और मशहूर बैरिस्टर यानी कि प्रसिद्ध वकील थे, लेकिन उन्होंने अपने आरामदायक जीवन और सफल करियर से अधिक महत्व देश की स्वतंत्रता को दिया।
1: और जब देश में आज़ादी की लड़ाई तेज हुई तो उन्होंने महात्मा गांधी के कहने पर अपनी वकालत छोड़ दी थी। उन्होंने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का भी पूरा समर्थन किया। उनका मानना था कि देश की आज़ादी के लिए हर नागरिक को अपना योगदान देना चाहिए।
0: और उन्होंने अपने सारे महंगे और विलायती कपड़े जला दिए और खादी पहनकर सड़कों पर उतर आए।
1: वो सिर्फ वकील या नेता नहीं थे, उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी सारी संपत्ति, यहाँ तक कि अपना आलिशान घर भी देश के नाम दान कर दिया था, जो आज एक अस्पताल है। जब 1925 में उनका निधन हुआ था तो वसुंधरा, खुद महात्मा गांधी जी ने कहा था कि मैंने अपना एक बहुत बड़ा भाई और देश ने अपना सबसे सच्चा दोस्त खो दिया है।
0: दोस्तों, देशबंधु जी केवल एक नेता ही नहीं बल्कि एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी थे। वो शिक्षा, एकता और राष्ट्रभक्ति को बहुत महत्व देते थे।
1: उनका जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के लिए कार्य करने में है।
0: दिशा, उनके विचार और आदर्श आज भी हमें प्रेरित करते हैं।
1: वैसे वसुंधरा, जिनकी निगाहें सरहदों पर हैं इसलिए हमारी रातें सुकून से गुजरती हैं, जिनके साहस की गाथा शब्दों से नहीं बल्कि सम्मान से कही जाती है, उन वीर जवानों को नमन करते हुए सुनिए पद्मश्री कैलाश खेर की दमदार आवाज में भारतीय सेना।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
3: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: वसुंधरा, क्या तुम्हें पता है कि आज हम घर बैठे बिजली का बिल भर सकते हैं, ट्रेन की टिकट बुक कर सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं?
3: हाँ दिशा, और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सब कुछ मिनटों में हो जाता है। यही तो है डिजिटल भारत की ताकत।
2: बिल्कुल, और आज हम बात करेंगे कि कैसे तकनीक हमारे भारत को बदल रही है।
3: दोस्तों, पहले कई सरकारी कामों के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, अब बहुत सी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है।
2: सही कहा, डिजिटल तकनीक ने लोगों का समय और मेहनत दोनों बचाई है।
3: शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव आया है दोस्तों। अब छात्र ऑनलाइन कक्षाओं, डिजिटल पुस्तकालय और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से सीख सकते हैं।
2: और ग्रामीण क्षेत्रों में भी इंटरनेट की पहुंच बढ़ने से बच्चों को बेहतर शिक्षा के अवसर मिल रहे हैं।
3: बिल्कुल, लेकिन आज डिजिटल इंडिया की वजह से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, यानी सरकार बटन दबाती है और बिना किसी बिचौलिए के सीधा पैसा गरीब के बैंक खाते में पहुंच जाता है।
2: इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं में भी तकनीक मदद कर रही है। कई लोग दूर बैठे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं।
3: क्योंकि हमारी सेहत और पढ़ाई भी डिजिटल हो गई है दोस्तों, तो आज दूर दराज के गाँव में जहाँ बड़े डॉक्टर्स नहीं हैं, वहाँ लोग ई संजीवनी के जरिए शहर के बड़े डॉक्टर से फ़ोन या वीडियो कॉल पर मुफ्त में मशवरा ले रहे हैं। और डिजिटल क्लासरूम की वजह से गाँव का बच्चा भी देश के सबसे बेहतरीन शिक्षकों से पढ़ पा रहा है।
2: किसानों के लिए भी यह एक नई उम्मीद बनकर सामने आई है। वे मौसम की जानकारियों, खेत से जुड़ी नई तकनीकों के बारे में आसानी से जान सकते हैं।
3: दोस्तों, डिजिटल भुगतान ने भी लोगों की जिंदगी आसान बना दी है। अब नकद पैसे रखना जरूरी नहीं रहा।
2: वसुंधरा, यानी कि तकनीक सिर्फ शहर को ही नहीं बल्कि गाँव को भी विकास की नई दिशा दे रही है।
3: दिशा यानी दूरी मिटाना, चाहे वो डिजिटल रूप से हमारे दस्तावेजों को सुरक्षित रखना हो या घर बैठे ट्रेन की टिकट बुक करना, तकनीक ने समय बचाकर हमारी जिंदगी को बहुत सरल बना दिया है दोस्तों।
2: बिल्कुल, डिजिटल भारत केवल तकनीक का नाम नहीं है बल्कि यह एक ऐसे भारत का सपना है जहां हर नागरिक को बेहतर सुविधाएं मिले।
3: तो आइए हम तकनीक का सही और जिम्मेदारी से उपयोग करें और भारत को

0: वसुंधरा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि रेगिस्तान में सिर्फ रेत ही रेत होती है, और वहां देखने लायक कुछ खास क्या हो सकता है?
1: सच कहूँ तो

0: पहले मुझे भी यही लगता था दिशा। जब भी रेगिस्तान का नाम सुनती थी बस गर्मी, रेत और खाली मैदान ही दिमाग में आते थे। लेकिन जब मैंने राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में पढ़ा तो मेरी सोच पूरी तरह बदल गई।
1: मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मुझे तो सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हुई कि जहाँ पानी की इतनी कमी होती है वहाँ भी इतने सारे जीव जंतु और पक्षी कैसे रह सकते हैं।
0: और यही तो राष्ट्रीय मरु उद्यान की खासियत है दिशा। राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में फैला ये उद्यान हमें सिखाता है कि प्रकृति हर जगह अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हों।
1: वैसे जब मैंने इसकी तस्वीर देखी तो दूर दूर तक फैले ये सुनहरे रेत के टीले किसी फिल्म के दृश्य जैसे लग रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था मानो धरती ने सोने की चादर ओढ़ रखी हो।
0: सही कहा, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय तो यहाँ का नज़ारा और भी खूबसूरत हो जाता है। लेकिन सिर्फ सुंदरता ही इसकी पहचान नहीं है दिशा। राष्ट्रीय मरु उद्यान भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,162 वर्ग किलोमीटर है।
1: इतना बड़ा, तभी मैं सोचूं कि यहाँ इतने अलग अलग प्रकार के जीव जंतु कैसे पाए जाते होंगे। वैसे मैंने एक पक्षी के बारे में पढ़ा था जो यहाँ की सबसे बड़ी पहचान माना जाता है।
0: शायद तुम गुडावन की बात कर रही हो।
1: हाँ बिल्कुल, गुडावन के बारे में पढ़कर मुझे बहुत दिलचस्पी हुई थी क्योंकि ये राजस्थान का राज्य पक्षी भी कहा जाता है।
0: और दिशा, इतना दुर्लभ है ये कि इसकी संख्या बहुत कम बची है। राष्ट्रीय मरु उद्यान गुडावन के लिए सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण आवासों में से एक माना जाता है, इसलिए वन विभाग इसके संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहा है।
1: मुझे लगता है कि अगर ऐसे दुर्लभ पक्षियों की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियां उन्हें सिर्फ किताबों में ही देख पाएंगी।
0: बिल्कुल, और सिर्फ गुडावन ही नहीं, यहाँ कई अन्य पक्षी भी पाए जाते हैं। सर्दियों में तो दूर दूर के देशों से प्रवासी पक्षी भी यहाँ आते हैं। सोचो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके ये पक्षी इस रेगिस्तान में पहुंचते हैं।
1: यह सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय मरु उद्यान पक्षियों का एक बड़ा स्वागत केंद्र बना है।
0: हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। यहाँ बाज, चील, गिद्ध, तीतर और कई अन्य पक्षी भी देखे जा सकते हैं।
1: लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, इतनी गर्म और सूखी जगह में जानवर अपना जीवन कैसे बिताते होंगे।
0: यही तो प्रकृति का कमाल है दिशा। यहाँ रहने वाले जीवों ने खुद को रेगिस्तान के अनुसार ढाल लिया है। उदाहरण के लिए चिंकारा, रेगिस्तान लोमड़ी और जंगली बिल्ली कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं।
1: वैसे चिंकारा तो बहुत सुंदर हिरन जैसा ही जानवर है ना।
0: हाँ, और ये बहुत तेज दौड़ता भी है। इसके अलावा यहाँ भेड़िए, खरगोश और कई प्रकार के सरीसृप भी पाए जाते हैं।
1: लेकिन वसुंधरा, यहाँ की वनस्पति भी बहुत खास है। हालांकि पानी कम होता है फिर भी खेजड़ी, रोहिड़ा, बेर और आग जैसे पौधे यहाँ अच्छी तरह उगते हैं। राजस्थान में खेजड़ी की महत्वपूर्ण पेड़ माना जाता है।
0: सही कहा, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती है, इसलिए कम पानी में भी जीवित रह सकता है। और यही कारण है कि ये रेगिस्तानी क्षेत्रों में लोगों और पशुओं दोनों के लिए उपयोगी है।
1: वसुंधरा, यहाँ एक जगह है आकलवुड फॉसिल्स पार्क। वहाँ तुम्हें पेड़ों के ऐसे अवशेष यानी कि फॉसिल्स मिलेंगे जो करीब 18 करोड़ साल पुराने हैं, यानी कि जुरासिक काल के, जब डायनासोर हुआ करते थे।
0: दोस्तों, वैज्ञानिकों का मानना है कि बहुत पुराने समय में ये क्षेत्र समुद्र का हिस्सा रहा होगा। यहाँ मिले जीवाश्म यानी कि फॉसिल्स पृथ्वी के प्राचीन इतिहास की जानकारी देते हैं।
1: मतलब एक ही जगह पर प्रकृति, वन्य जीव, इतिहास और विज्ञान सब कुछ देखने को मिल रहा है।
0: और यही कारण है कि ये स्थान पर्यटकों यानी टूरिस्ट और शोधकर्ताओं दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र है।
1: वैसे वसुंधरा, अगर मुझे कभी जैसलमेर जाने का मौका मिला तो मैं राष्ट्रीय मरु उद्यान जरूर देखना चाहूंगी।
0: मैं भी, खासकर ऊंट सफारी और पक्षी अवलोकन का अनुभव तो बहुत रोमांचक होगा।

0: दोस्तों, अब हम आपके साथ साझा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके भविष्य और करियर के लिए उपयोगी हो सकती है।
1: तो आइए बात करते हैं रोजगार सूचना के बारे में। आज की रोजगार सूचना है आरपीएससी एपीओ रिक्रूटमेंट 2026 की।
0: दोस्तों, आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के 371 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं
1: और जिसकी शुरुआती दिनांक है 8 जून 2026
0: और जिसकी अंतिम दिनांक है 7 जुलाई 2026।
1: पद की योग्यता की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट को मान्यता प्राप्त किसी यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए
0: और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
1: तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक थी। उम्मीद है कि यह आपके काम आएगी। वैसे वसुंधरा, हम तुम्हें कुछ याद आया कि प्रोग्राम के शुरुआत में हमने दोस्तों से सवाल पूछे थे?
0: जी हाँ दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछे थे 2 सवाल जिनके उत्तर आपको सोच के रखने थे और अब हम हाजिर हुए हैं उन सवालों के उत्तर के साथ।
1: जहाँ आपका पहला सवाल था, पीएम अजय पोर्टल और मोबाइल ऐप पहल किस मंत्रालय द्वारा विकसित की गई?
0: और इसका सही उत्तर है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्रालय।
1: जहाँ आपका दूसरा सवाल था, 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है?
0: फ्रांस के एवियो शहर में 13 से 15 जून 2026 तक।
1: तो दोस्तों, आज हमने काफ़ी सारी बातें की और इस सफ़र में बातों और विचारों का कारवां बहुत ही खूबसूरत रास्ते से गुजरा। आज हमने जाना कि राष्ट्रीय मरुद्यान की वो शांत रेत और वहाँ का अनूठा पर्यावरण हमें

0: अपनी जड़ों और प्रकृति से कैसे जोड़ता है।
1: और जब बात खुद को जोड़ने और संभालने की आती है तो जीवन को गतिशीलता और संतुलन का होना कितना ज़रूरी है। तो हमें योग सिखाता है जो सिर्फ शरीर को नहीं हमारे मन और विचारों को भी संतुलित करता है।
0: आज परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी है जो उन प्रवासियों के सम्मान का दिन जो दूर रहकर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करते हैं।
1: अपनों के लिए ये त्याग और देश के लिए ये जज्बा हमें इतिहास के उन पन्नों की याद दिलाता है जहाँ देशबंधु चित्तरंजन दास जैसे महान देशभक्त खड़े हैं।
0: इतिहास की सीख, प्रकृति का साथ, योग का संतुलन, परिवार का प्यार और तकनीक की रफ्तार, यही तो हमारी ताकत है।
1: पर दोस्तों, घड़ी की सुइयां अब रुकने का इशारा कर रही है। आप अपने दोस्तों को इजाज़त दीजिए, हम फिर मिलेंगे कुछ और नई बातों और जानकारियों के साथ। इसी के साथ मैं थी वसुंधरा आचार्य
0: और मैं हूँ दिशा।
1: नमस्कार।

ये था युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए हमारी इस सभा के कार्यक्रमों का विवरण।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुनते हैं जिले की चिट्ठी शाम 6:42 पर। ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00। कार्यक्रम में श्रोता सुनेंगे चर्चा एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन, खरीफ फसलों हेतु बीजोपचार, कुसुम योजना, अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण, साथ ही अन्य जानकारियां और लोक संगीत। कार्यक्रम ग्रामीण जगत शाम 7:00।

हमारी सभा में लोक संगीत का कार्यक्रम होगा रात्रि 8:30 पर। सुगम संगीत हम आपको सुनवाएंगे शाम 7:45 पर और रात्रि 9:30 पर।

हमारे इस सभा के फिल्म संगीत के कार्यक्रम शाम 6:05 पर सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं पप्पी लाहिरी। फिल्म संगीत का एक और कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:00, फिर रात्रि 9:15 और रात्रि 10:00 होगा फिल्म संगीत का आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम आपकी पसंद रात्रि 10:00।

ये था हमारे इस सभा के कार्यक्रमों का विवरण। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। शाम के 6 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 दिन की यात्रा पर फ्रांस के एवियां शहर पहुंच गए हैं। एवियां पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वे विश्व नेताओं के साथ बातचीत करने और प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि पृथ्वी को अधिक सतत और समृद्ध बनाने के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार ये 7वीं उपस्थिति है और इस मंच पर भारत की 13वीं भागीदारी है। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्ने, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टामर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे। इस बीच शिखर सम्मेलन में आज अमेरिका के सहयोगी देशों ने 4 साल से अधिक समय से चल रहे यूक्रेन युद्ध को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एजेंडे में फिर से प्राथमिकता दिलाने के लिए काम किया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रॉन ने कहा कि वे श्री ट्रंप को यूक्रेन का समर्थन जारी रखने और शांति समझौते तक पहुंचने में मदद के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए मनाने का प्रयास करेंगे। अमरीका द्वारा यूक्रेन को दी जाने वाली सहायता में कटौती के बाद फ्रांस और उसके यूरोपीय सहयोगी यूक्रेन को सैन्य और वित्तीय सहायता प्रदान करने वाले सबसे बड़े देश हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की भी सुबह की कार्य बैठक में G7 नेताओं के साथ शामिल हुए, लेकिन वार्ता जल्दी समाप्त हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया है कि 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा के लिए पिछले 24 घंटों में 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड किए हैं। इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से ही किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान येस बैंक के ऋणों के कथित धोखाधड़ीपूर्ण आवंटन के संबंध में मुंबई, खंडाला और नई दिल्ली में 17 स्थानों पर छापेमारी कर रहा है। निदेशालय ने सुरक्षा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड, ख्याति रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनके निदेशकों और कर्मचारियों के साथ साथ येस बैंक के पूर्व कर्मचारी के परिसर की तलाशी ली। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके राज्य में जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है जिसे ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि दार्जिलिंग में गोरखा समुदाय के दीर्घकाल से लंबित मुद्दों का समाधान भारत के संवैधानिक ढांचे के भीतर किया जाएगा। दार्जिलिंग में कुर्सियोंग में एक जनसभा में उन्होंने कहा कि गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन में कथित भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान

0: के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमरीका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका में ग्रुप आई के मुकाबले में आज फ्रांस और सेनेगल आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समयानुसार रात 12:30 बजे से शुरू होगा। एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे का सामना इराक से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार तड़के 3:30 बजे से खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम HIF हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। पूल ए के अपने दूसरे मैच में भारत ने जापान को हराया। भारत 6 अंकों के साथ पूल ए में शीर्ष पर है। अगला मुकाबला भारत का उरुग्वे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं बप्पी लाहिरी।

फिल्म का नाम आंगन की कली, गायिका लता मंगेशकर, गीतकार शैली शैलेंद्र और संगीतकार बप्पी लाहिरी। आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं बप्पी लाहिरी। और अब सुनिए फिल्म टूटे खिलौने से कैफी आजमी का ये गीत, जिसे गाया है यीशुदास ने।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

आकाशवाणी एट 90। आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही संगीतकार। आज के संगीतकार हैं बप्पी लाहिरी। और अब सुनिए फिल्म 100 करोड़ से लता मंगेशकर की आवाज़ में सूरज सानिम का ये गीत।

श्रोताओं, ये थे आशा भोंसले और भूपेंद्र, फिल्म का नाम एतबार, गीतकार हसन कमाल। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही संगीतकार, और अब सुनिए बप्पी लाहिरी के ही संगीतों से, संगीत धुनों से सजाइए फारूक कैसर का गीत, फिल्म का नाम है लहू के दो रंग। इसे गाया है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम एक ही संगीतकार अब यहीं संपन्न होता है। आज आपने कार्यक्रम में सुने बप्पी लाहिरी के संगीतबद्ध किए फिल्मी गीत। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर शाम के 6:30 हो रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी भाषा में प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की आशंका वाले जिलों की पहचान कर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर 22 जून तक रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1,54,00,000 से अधिक पंजीकरण हुए, इनमें 82,00,000 से ज्यादा महिला श्रमिक शामिल। और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मृत्यु। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीफ 2026 की देशव्यापी तैयारियों के लिए आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की। कृषि भवन में हुई इस बैठक में उन्होंने अधिकारियों के साथ संभावित अल नीनो स्थिति पर चर्चा की। कृषि मंत्री ने कहा कि जिन जिलों में कम बारिश की आशंका है उनकी पहचान कर पहले से फसल वार कंटिंजेंसी प्लान तैयार किया जाए, जिससे किसी भी मौसमी चुनौती की स्थिति में किसानों को तुरंत विकल्प, सलाह और सहायता उपलब्ध कराई जा सके। कृषि मंत्री ने फसल वार लक्ष्य, बुआई की प्रगति और राज्यवार तैयारियों की समीक्षा करते हुए कपास उत्पादन बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। बैठक में दलहन आत्मनिर्भरता मिशन पर भी चर्चा की गई। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र और राज्यों से एक याचिका पर जवाब मांगा है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की ओर से जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, निवास स्थान और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है। याचिका में ये निर्देश देने की मांग की गई है कि इसका उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आज फ्रांस के एवियो पहुंचे। श्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। वहीं इस महत्वपूर्ण बहुपक्षीय आयोजन में भारत 13वीं बार भागीदारी कर रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री श्री मोदी दुनिया के विकासशील देशों का पक्ष और चिंताएं मजबूती से रखेंगे। श्री मोदी एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लेंगे। सत्र का विषय नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनर्स्थापित करना है। सत्र में G7 देशों, भागीदारी देशों के नेता, विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के लिए बीते 24 घंटों में 10,00,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों ने अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि इस बीच पारदर्शिता बढ़ाने और पेपर लीक की आशंकाओं को समाप्त करने के लिए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम एप्लीकेशन पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर रोक लगा दी है। NTA ने कहा कि ये प्रतिबंध नीट पुनर्परीक्षा के दिन और उसके तुरंत बाद तक लागू रहेगा। एजेंसी ने कहा कि टेलीग्राम को 30 तारीख तक पहले से पोस्ट किए गए संदेशों को संपादित करने की सुविधा को भी बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर प्रदेश में भी नीट यूजी

0: परीक्षा को सुचारू रूप से संपन्न करवाने के लिए व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर कानून व्यवस्था, परीक्षा सामग्री के सुरक्षित वितरण और यातायात प्रबंधन के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित E20 ईंधन के इस्तेमाल से वाहन बीमा दावों को खारिज करने वाली खबर का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया है कि ये दावा निराधार है। PIB ने ये भी स्पष्ट किया है कि E20 ईंधन के इस्तेमाल के बावजूद मोटर बीमा पॉलिसियां वैध रहती हैं। केंद्र सरकार ने औषधि नियम 1945 में संशोधन अधिसूचित किया है। इसमें छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री पर दी गई छूट वापस ले ली गई है। अब छोटे गांवों में कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल विधिवत लाइसेंस प्राप्त फार्मेसियों के माध्यम से किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य में ई श्रम पोर्टल के लिए श्रमिकों में जागरूकता बढ़ी है। अब तक 1,54,00,000 से अधिक श्रमिक पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें 82,00,000 से ज्यादा महिलाएं और करीब 72,00,000 से ज्यादा पुरुष श्रमिक हैं। महिलाओं की श्रम भागीदारी प्रदेश में करीब 53% है, जो आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती सक्रियता दर्शाती है। पंजीकृत श्रमिक केवल एक क्लिक पर अनेक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ सकते हैं। साथ ही ई श्रम पोर्टल रोजगार, कौशल विकास और स्वरोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा दे रहा है। ये श्रमिकों को पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और आवास सहित अन्य सुविधाओं से जोड़ने वाला एकीकृत मंच है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 के आयोजन के लिए रीको और लघु उद्योग भारती के बीच आज जयपुर में MOU पर हस्ताक्षर किए गए। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ की मौजूदगी में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ये आयोजन हुआ। इस मौके पर श्री राठौड़ ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य में पत्थर और शिल्प की कोई कमी नहीं है, इसे उत्कृष्ट पहचान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि स्टोन मार्ट पत्थर उद्योग के लिए वैश्विक मंच के रूप में उभर चुका है।
1: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइमस्टोन हो, सैंडस्टोन हो, नॉर्बोर्ग स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले है, मंदिर है, वो हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई। और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को और कितना ऊंचा लेंगे।
0: प्रदेश में बीते 24 घंटों में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मौत हो गई। बारा जिले के छबड़ा क्षेत्र में पार्वती नदी में डूबने से 4 लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार ये लोग मध्य प्रदेश के गुना के निवासी थे और छबड़ा के गुगोर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। उधर बालोतरा में आज एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना पाटोदी गांव के पास रोडवेज बस और कार की टक्कर से हुई, जिसमें कार सवार चारों भाइयों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं पाली जोधपुर हाईवे पर मंडिया बाईपास के पास एक कार के बेकाबू होकर डिवाइडर से टकराने से 2 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर भिवाड़ी में एक औद्योगिक इकाई के निर्माणाधीन हौद की दीवार ढहने से 3 बालकों की मौत हो गई, वहीं 3 अन्य बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा कल दोपहर हुआ, जिसमें कल एक बालक की मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य बालकों ने आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल आज कोटा पहुंचे। उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, समूचे प्रकरण की जांच की जा रही है। उन्होंने NDA सरकार की पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियां गिनाते हुए इसे बदलते भारत की तस्वीर बताया।
2: मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी

0: सरकार की सारी सुविधाओं को सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। 7 दिन और 365 12 महीने यानी हमारा एक निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
1: प्रेस वार्ता में मंत्री मदन दिलावर और हीरालाल नागर मौजूद रहे। उधर भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने काजरी सभागार में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित किया। श्री सूर्या ने कहा कि आज के दौर में सूचनाओं का बहुत तेजी से प्रसार हो रहा है और प्रौद्योगिकी के इस समय में गांव ढाणी में बैठा व्यक्ति भी पूरी दुनिया के घटनाक्रम की जानकारी रखता है। मीडिया से बातचीत में श्री सूर्या ने कहा कि केंद्र सरकार पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न स्थानों पर प्रेस वार्ता कर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी गई। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की कल 486वीं जयंती है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने प्रताप जयंती पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री बागड़े ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को मेवाड़ से खदेड़ा था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर अपने शुभकामना संदेश में उन्हें आत्मगौरव के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाला बताया है। प्रताप जयंती के अवसर पर सलूम्बर जिले के चावंड स्थित प्रताप स्मारक पर कल विशेष कार्यक्रम रखा गया है। उधर पाली के धानमंडी में कल होने वाले जन्म जयंती समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज महाराणा की राजतिलक स्थली गोगुंदा में भी विशेष आयोजन हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गोगुंदा पहुंचे हैं। वहीं राजसमंद की मचींद गांव स्थित राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर प्रताप जयंती के मौके पर आयोजित 2 दिन का मेला आज संपन्न हुआ। सरहदी जिले जैसलमेर में नियमित और सुचारू जलापूर्ति के लिए आज 5 नलकूपों का लोकार्पण किया गया। 55 लाख रुपए की लागत से ये नलकूप गजरूप सागर स्थित परिसर में लगाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कम बारिश की आशंका वाले जिलों की पहचान कर फसलवार कंटिंजेंसी प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। 21 जून को दोबारा होने वाली नीट यूजी परीक्षा के मद्देनजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर ऑनलाइन संदेश भेजने पर 22 जून तक रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल पर अब तक 1,54,00,000 से अधिक पंजीकरण हुए, इनमें 82 लाख से ज्यादा महिला श्रमिक शामिल। और प्रदेश में अलग अलग हादसों में 10 लोगों की मृत्यु। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से अजमेर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका लेख नीलिमा दाधीच ने तैयार किया है। अजमेर जिले में इन दिनों धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों का क्रम भी जारी है। विश्व प्रसिद्ध तीर्थराज पुष्कर में देशी और विदेशी पर्यटकों की आवाजाही बनी हुई है। वहीं आगामी मॉनसून और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। आज जिले की चिट्ठी में बात करेंगे ऐसी ही कुछ प्रमुख गतिविधियों की। गुलाब की खेती और गुलकंद के लिए प्रसिद्ध पुष्कर क्षेत्र के कड़ैल गांव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित ग्राम विकास चौपाल में भाग लिया और ग्रामीणों की समस्याएं तथा सुझाव सुने। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर कड़ैल अस्पताल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा की। इसके साथ ही गांव में बस सेवा शुरू करने और बालिका विद्यालय की चहारदीवारी निर्माण की घोषणा भी की। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी भी पुष्कर में आयोजित कांग्रेस पार्टी के 10 दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने पहुंचे। शिविर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और विभिन्न जिलों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार के

0: 12 वर्ष पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से नारी चौपाल, विशेष पूजा अर्चना, पौधरोपण, प्रदर्शनी और प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। आमजन की समस्याओं के स्थानीय स्तर पर समाधान के उद्देश्य से 12 जून से 15 जुलाई तक जिले में शहरी सेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। विभिन्न नगरीय निकायों, उपखंडों और वार्डों में आयोजित इन शिविरों में पट्टों का वितरण, पेंशन सत्यापन, जन आधार सत्यापन, मंगला पशु बीमा, फसल बीमा पॉलिसी जारी करने, जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र सहित विभिन्न काम एक ही स्थान पर किए जा रहे हैं। जिले में 19वें रोजगार मेले का आयोजन अजमेर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के एसटीआई ऑडिटोरियम में किया गया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत की मौजूदगी में विभिन्न विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। रेल, गृह, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण और वित्तीय सेवाओं सहित विभिन्न विभागों में चयनित 558 अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दी गई। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने उपनिरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 के पुनः आयोजन की तारीख घोषित की है। ये परीक्षा 20 सितंबर को आयोजित की जाएगी। परीक्षा में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने पहले आयोजित दोनों लिखित परीक्षाओं में भाग लिया था। आयोग ने इसके साथ ही आरएएस 2026 परीक्षा का विज्ञापन भी जारी किया। 607 पदों के लिए आयोजित होने वाली इस परीक्षा में 192 राज्य सेवा और 415 अधीनस्थ सेवा के पद शामिल हैं। बीते दिनों जिले में विभिन्न विकास कार्यों की शुरुआत हुई। विधानसभा अध्यक्ष ने पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में जिगजैग पद्धति से पौधारोपण अभियान की शुरुआत की। इसके तहत फलदार और छायादार पौधे लगाए जा रहे हैं। जनाना अस्पताल में नए कॉटेज निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हेरिटेज लाइट और सजावटी पोल लगाने के काम भी शुरू किए गए हैं। वहीं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने 3 नई नियमित रेल सेवाओं का शुभारंभ किया। इन रेल सेवाओं के शुरू होने से यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध हुए हैं। उधर नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा, विधानसभा अध्यक्ष और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की उपस्थिति में लगभग 28 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कन्वेंशन सेंटर और सभागार के निर्माण काम का भी शुभारंभ किया गया। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां चल रही हैं। विभिन्न सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों की ओर से योग अभ्यास और योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अजमेर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश री शंका वाला जिला ने पिछाण कर फसल वार कंटिजेंसी प्लान तैयार करण बाबत कहो। 21 जून उजू भेवन वाली नीट यूजी परीक्षा न ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजन पर 22 जून ताई रोक। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल तक 1,54,00,000 बत्ता नाम मंडाई किया, 82,00,000 बत्ती महिला मजूर शामिल। और प्रदेश में फिर न्यारा न्यारा हादसा में 10 जना री मौत। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान खरीफ 2026 री तैयारियां सारू आज नई दिल्ली में आला दर्जारा अहलकारा सागे मीटिंग कीनी। ए दौरान कृषि मंत्री कम बिरखा री शंका वाला जिला री ओळखाण कर फसलवार तैयारी करण सारू कहो। वे फसलवार लक्ष्य, बुआई री प्रगति और राज्यवार तैयारियां रो जायजो लीनो। मंत्री कपास री उपज बढ़ावण और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन रा बारा में चर्चा कीनी। सुप्रीम कोर्ट रा मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति वी मोहनारी पीठ भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का नियम जारी करी जिया आधार कार्ड रो बेजा इस्तेमाल नागरिकता रहवास रा पता रा सबूत रा तौरों करण रा आरोप वाली एक अर्जी माथे सुनवाई करता थका आज केंद्र और राज्यों

0: जवाब तलब की नो। अर्जी माए आधार नंबर ने केवल पहचान सत्यापन रा कागज रा तौर वहीं काम लेवन रो हुकम देवन री अर्ज करी ची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में शामिल हेवन सारू फ्रांस रा एवियो पूग किया है। श्री मोदी लगातार सातवीं दफा G7 सम्मेलन में भाग ले रहा है, जबकि भारत इनमें 13वीं दफा शिरकत कर रहा है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी विकासशील देशों रो पक्ष और चिंतावां री बात रखेला। श्री मोदी नई भागीदारी बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता पुनः स्थापित करना मुद्दा वाला कार्य सत्र माए शामिल फैला। सत्र माए G7 देशां और भागीदार देशां रा नेता विश्व बैंक और अफ्रीका विकास बैंक रा नुमाइंदा शामिल फैला। श्री मोदी कनाडा रा प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन रा प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात रा राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान सा गई मुलाकात करेला। 21 जून ने ओजू भेवन वाली नीट UG परीक्षा सारू लाडला 24 घंटा में 10,00,000 बत्ता उम्मीदवार प्रवेश पत्र डाउनलोड कीना। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA रे मुजब परीक्षा माय साफ कोई बधावण और पेपर लीक री शंका खत्म करण सारू सरकार 22 जून ताई टेलीग्राम एप्लीकेशन रे जरिए ऑनलाइन संदेश भेजण माथे रोक लगा दीनी है। NTA रे मुजब आ रोक नीट री परीक्षा रा दिन वारा तुरंत बाद ताई लागू रहवेला। NTA रे मुजब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम ने 30 जून ताई पहलीम पोस्ट करी जिया संदेश एडिट करण रो सुबितो बहाल नी करण सारू कही चियो है। प्रदेश में आई नीट UG परीक्षा साफ कोई सागर करावण सारू जरूरी तैयारियां करी जा रही है। जयपुर रा जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि परीक्षा केंद्रा माथे कानून व्यवस्था, परीक्षा सामग्री ने हिफाजत सागे पुगावण और यातायात प्रबंधन सारू पुख्ता बंदोबस्त करया जावेला। केंद्र सरकार सोशल मीडिया माथे चाल रही E20 ईंधन काम लेवन वाली गाड़ियां रा बीमा दावा खारिज करण वाली खबर ने गलत बताई है। पत्र सूचना कार्यालय री तथ्य जांच इकाई साफ कीनो है कि E20 ईंधन काम लेवन वाली गाड़ियां री मोटर बीमा पॉलिसियां वैध है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक माथे AIR News Rajasthan पर आई सुन सको हो। राज्य में ई श्रम पोर्टल माथे हाल ताई 1,54,00,000 बत्ता मजूर नाम मंडा लीना है। आम आए 82,00,000 बत्ते महिलावां और 72,00,000 बत्ता पुरुष मजूर शामिल है। राज्य री श्रम शक्ति माए महिलावां री तादाद करीब 53% है, जो माली और सामाजिक हलका माए महिलावां री बढ़ती भागीदारी बतावे है। ई श्रम पोर्टल माथे नाम मंडायोड़ा मजूर एक क्लिक कर और कई सामाजिक सुरक्षा योजनावां जुड़ सके है। वो पोर्टल मजूरा ने पेंशन, बीमा, स्वास्थ्य और रहवास समेत न्यारा न्यारा सुविधाओं जोड़े है। इंडिया स्टोन मार्ट 2028 सारू रीको और लघु उद्योग भारती बीच आज जयपुर में करार माथे सही करी ची। इस मौके उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ कहो कि राज्य में भाटा और शिल्प री कोई कमी नहीं है, पर इन्हें ओलखाण देवन री जरूरत है। वह कहो कि स्टोन मार्ट भाटा रा कारोबार सारू दुनिया रा खास मंच रा तौर सामने आयो है।
1: राजस्थान का जो पत्थर है वो निश्चित रूप से बहुत मशहूर, चाहे यहाँ का मार्बल हो, हमारा कोटा स्टोन हो, लाइम स्टोन हो, सैंड स्टोन हो, नॉर्वर्क स्टोन हो, जैसलमेर स्टोन हो, हर तरह से, चाहे आधुनिक बिल्डिंग हो, चाहे पुरानी जो किले हैं, मंदिर हैं, वो हर तरफ हमें राजस्थान का पत्थर दिखाई। और ये पत्थर तो ऐसा है जिसके साथ तस्वीर खिंचाने के लिए टूरिस्ट विदेशों से आते हैं, तो पत्थर में कोई कमी नहीं। अब ये हमारी पीढ़ी के ऊपर निर्भर करता है, हम एक दूसरे के साथ बैठकर किस तरह का मंथन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, किस तरह से जोड़कर अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर अब डिपेंड करता है कि हम राजस्थान के पत्थर को अब और कितना ऊंचा लेंगे।
0: राज्य माए लारला 24 घंटा माए फिया न्यारा न्यारा हादसा माए 10 जना री मौत वेकी। 12 जिला रा छबड़ा हलका माए पार्वती नदी माए डूब जावणो 4 जना री मौत वेकी। पुलिस रे मुजब ए लोग मध्य प्रदेश माए गुना रा रहवासी हा और छबड़ा

0: कन गुगोर माए एक ब्याह माए शामिल फे वनसारू आया हा। बालोतरा जिला माए पाटोदी गांव कने आज रोडवेज री बस सरकार री टक्कर रे कारण चार जना री मौत वे की। मरण वाला चार ही जना कार माए सवार हा जो एक ही परिवार रहा। पाली जोधपुर हाईवे माथे मंडिया बाईपास कने एक बेकाबू कार सड़क रा डिवाइडर उन टकरा जावन रे कारण दो जना री मौके ही मौत वेगी, जदका एक महिला घनी जख्मी वेगी जिनने पाली रा बांगड़ अस्पताल माए भर्ती कराई ची। भिवाड़ी माए एक कारखाना माए बनाए जा रहा हौद री भींत ढस जावनु तीन बच्चा री मौत वेगी और तीन बच्चा घना जख्मी वेग्या। काल दोपहर व्या ई हादसा माए एक बालक री कार ली मौत वेगी ही, जदका दो बालक आज दम तोड़ तीनों। भारतीय जनता पार्टी रा राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल कहो है कि नीट पेपर लीक मामला माए दोषियां रे खिलाफ कार्रवाई करी ची है और मामला री जांच करी जा रही है। वे आज कोटा माए खबर नवीसा सागे बातचीत कर रहा हा। श्री बंसल केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल री उपलब्धियां रो जिक्र करता थका इनने बदलता भारत री तस्वीर बतायो।
1: मोदी जी के नेतृत्व में 12 सालों के अंदर अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति तक भी सरकार की सारी सुविधाओं को सारी योजनाओं को पहुंचाने का काम किया है। सातों दिन और 365 12 महीने यानी हमारा निरंतर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कैसे इस देश का विकास हो, कैसे इस देश के हर गरीब तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचे, कैसे इस देश की महिलाओं को और सशक्तिकरण किया जाए, कैसे इस देश के किसानों को और उनकी समृद्धि बढ़ाई जाए, ऐसे विभिन्न प्रकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है।
0: मंत्री मदन दिलावर और हीरा लाल नागरी पत्रकार वार्ता रे दौरान मौजूद रहा। भारतीय जनता युवा मोर्चा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्याई आज जोधपुर पुग्या। वह प्रबुद्ध जन सम्मेलन माए कहो कि मौजूदा दौर माए जानकारियां तेजी पसरे है और बेहतर प्रौद्योगिकी रा दौर माए गांव ढाणी माए बैठा लोग ही आखी दुनिया रा हालात री जानकारी रखे है। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका सूर्या कहो कि केंद्र सरकार पेपर लीक रा वाकया माथे रोक लगावन सारू करड़ा जतन कर रही है। वह केंद्र माए एनडीए रा राज रा 12 साल पूरा वेवन रा सिलसिला माए खबर नवीसा ने सरकार री उपलब्धियां री जानकारी दीनी। मेवाड़ रा महाराणा प्रताप री काल 486वीं जयंती मनाई जावेला। ये मौके राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाना संदेश माए कहो के महाराणा प्रताप जबरदस्त हिम्मत रो दर्शाव करता थका मुगला ने मेवाड़ भगा दीना हा। श्री बागड़े कहो के मायड़ भूमि री हिफाजत सारू वारी लड़ाई हमेशा याद राखी जावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ये प्रताप जयंती रे मौके शुभकामना संदेश माए महाराणा प्रताप ने खुदरो माथो ऊंचो राखण सारू सब कुछ निछावर कर देवन वाला बताया। प्रताप जयंती रे मौके सलूम्बर जिला माए चावंडरा प्रताप स्मारक माथे खास कार्यक्रम राख्यो जावेला। पालीरा धान मंडी परिसर माए काल महाराणा प्रताप जन्म जयंती समारोह मनायो जावेला। इनु पहली महाराणा प्रताप रो राज तिलक वेवन रिठौड़ गोगुंदा माए आज खास आयोजन राख्यो जा रियो है। इन माए शामिल वेवन सारू लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ए गोगुंदा पधारिया। राजसमंद जिला रा मचींद माए राणा पूंजा पर्यटन स्थल मा थई प्रताप जयंती रे मौके भरी जियो दो दिन रो मेलो आज पूरो फेंक्यो। अरब मौसम मौसम विभाग राज्य माए आवता 4-5 दिन ताई प्रदेश रा कई हल्का माए आंधी और गरज चमक सागे बरसात रो सिलसिलो चाल तो रहवन रा आसार जताया है। पश्चिमी विक्षोभ सागे राज्य रे ऊपर बनिया चक्रवाती तंत्र रे कारण हवा माए लगातार नमी बनियोड़ी है। इनु कई ठोणा बरसात वेवन रा आसार है। इन बीचे आज चूरू माए जोरदार बायरो बाजियो। सिंजानीपुर भीलवाड़ा जिला रा गुलाबपुरा माए झमाझम में बरसियो। बीकानेर हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जैसलमेर नागौर पाली और फलौदी माए 60-70 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार बायरो बाजन सागे अंधड़ चालन री संभावना है। पांचना बंधारो पानी नेहरा माए छोड़वारी मांग करता थका गैर कमांड हल्का रा किसान सवाई माधोपुर जिला रा खंडीप माए आज ही धरनो दे रहा है। किसान थोड़ी देर ताई दिल्ली मुंबई रेलवे लेन ने जाम कर दी। अवध एक्सप्रेस गाड़ी ने थोड़ी देर ताई रोकनी पड़ी। मौका माथे जरूरी पुलिस जाप तो तैनात करी चियो है और हालात काबू माए है। आखिर माए खास समाचार एक और फेर सुन ली रहो।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कम बारिश की शंका वाला जिला ने पिछाण कर फसल वार कंटिजेंसी प्लान तैयार करने बाबत कहो। 21 जून ने ओजू भवन वाली नीट यूजी परीक्षा ने ध्यान रखता थका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम माथे ऑनलाइन संदेश भेजन पना 22 जून ताई रोक। राज्य में ई शाह

चौवन लाख को बताना।

ये आकाशवाणी बीकानेर का ढोला मारो चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और FM 101.6 मेगा हर्ट्स पर शाम के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण श्रोताओं के लिए कार्यक्रम ग्रामीण जगत।

0: कार्यक्रम सुनणारा सगळा भाया अरबेनाने आपरे हेताळे भरतकुमार जाजडा अर
1: अनिल सिंग खिचडा घणा घणा राम राम। भरतभाई थाने भी घणा घणा राम राम सा।
0: थाने भी घणा घणा और भाई लोगा ने एक अर फेरू राम राम। देखो अनिल भाई अबार जको छांटो छिड़को हो रियो है नी वो चोखो लाग रियो है। मानसून पहली जकी बरसात आवे नी ये मौसम तो सुहावनो हो ही हुए। आज की लाई पड़ती त दिन बढ़ती बाजती भी ऊँ खासो आराम आयो है। तापमान में कमी आने सु कही है कि रात रा नींद लेना आसान हो गया है।
1: देखो भरत भाई मैं तो एक ही बात जाना कि जको किसान है नी वो ताती जकी बाजती हो ने सहन कर ले पर टेम सारू बिरखा ना हो बिजान नहीं हुए वह सहन को नहीं हुए।
0: बिल्कुल सही।
1: और अब आर जकी बिरखा हुई है आनंद सो आ गयो और जकी बिरखा होने लग रही है वह मैं जका किसान भाई बहना नहीं हुई है बट है और भी हो जाई और जको बिजान कर सियाँ वो शांत रो कर सियाँ तो ताकि अच्छी पैदावार होए और आगे मानसून आ जाए तो चौकी मावट लाग जाए फसला में और अच्छी पैदावार हो जाए।
0: देखो मानसून तो आसी है वे अड़ी उम्मीद करा पर ई बरसात रे साथ एक दूसरी चीज आ गई है और वो है कि माखी मच्छर कीट पतंगा।
1: तो देखो वह खातर तो आपने आपनों जो को स्वास्थ्य है वह भी ध्यान रखना जरूरी है और वह सागे सागे आपने देखा कि भरत भाई आपने जो कि खेत है नहीं खेती बाड़ी करा वह भी आप कई तरीके की सावधानियां रखकर अपने खेती बाड़ी में भी आप ज्यादा उत्पादन ले सका जी। हाँ एकीकृत नासी जीव प्रबंधन है।
0: हाँ
1: तो वैसो आप ध्यान रखा और जो कि छोटी छोटी बातें ध्यान में रख कर अपना उत्पादन ने बढ़ा सका जी। आप जैविक खेती ने अपनावा और सागे सागे आप मिश्रित खेती है वे ने अपनावा मिश्रित खेती रे सागे सागे जो कि आप कह सका कि भाई केचुआ खाते है वे ने अपनावा फसल चक्र ने अपनावा और बेंगे सागे आप जो कि कह सका कि मित्र कीट है उन्होंने अपनावा और अपने कने कोई चारो नहीं हुआ तो आप जो कि नीम रा उपचारित तरीका है उन्होंने अपनावा फिर उन्होंने भी काम नहीं चले नहीं तो आप रसायन पदार्थ ना काम आई कम सुकम लेवा।
0: बिल्कुल सही बात कह रही है। तो एक ही लाइन मैंने तो इतनी बात काम रही कह दी कि कहीं बतावा। देखो थाने जड़ जानकारी आदमी में नहीं मानी हुए ये तो जानकारी कीट जगह है आप देखा कि अभी शुरुआत रे मैंने इं को पंखिया दें फड़फड़ा कौन पहले तीन वो लार्वा बने वह लटक जगह ने कह नहीं बा बनिया करे तो भी स्थिति मैंने नियंत्रण आसान हो जाए शुरुआत में बाद में दो रो जाए काम। और कई बार देखा कि किसान बिना जरूरत ही कंटा कट में पूछ रहा जाए कीड़ा दवाई छिड़कते या तो भी दवाई कीड़ा मरे ही को नहीं या मरे तो कोई एक दो प्रजाति रहा मर जाए सगड़ा को नहीं मरे। तो जरूरी आ है कि आप कुछ भी कीट रे नियंत्रण वास्ते रासायनिक पदार्थ प्रयोग करा पहली विशेषज्ञ सलाह ले लवा।
1: और कई बार क्या है कि भरत भाई अपना जगह प्राकृतिक नुस्खा है नहीं वे भी आप खेती बाड़ी में काम लेवा तो वह सो आप घनी ब्याह दिया सो बच जावा जी। आप बात करा थोड़ी दिन बाद में जो कि सावणी री फसल है वे में मोटी जकी ब्याधी है वह कातरे री होया करे कातरे बचन खातर आप जकी प्राकृतिक तरीका की बात करा तो आपने जगह खेतर में ही आप लागे कि कातरो हो सके तो वह चारों तरफ आप गहरी खाई खोद देवा तो वो कातरो एक खेत सो दूसरे खेतर में ही कौन जावे।
0: फेरोमोन ट्रैप लगा सका हाँ या फिर लाइट ट्रैप या चिपचिपा पदार्थ कई कार्ड आया करे बे अगर आप लगा ला

0: तो फिर कई कीट जगह बिरखनी आकर्षित दूर आ जावे और बे बैठई फंस जावे।
1: तो ये जकी या लाइट री या बात करी भरत भाई, ऐसु मारे ध्यान आ गई कि भाई जकी मारे गांव रे माई जको खेती बाड़ी करना रा जका मिनक है, वे शाम रे टाइम जका घर जाते वक्त खेत रे जको आपा कह इसका मेड़बंदी होती बैठे कि एक फसल रो बचड़ो अवशेष रे माई थोड़ो थोड़ो रोजाना आग लगा देता है। आग लगाने रो मतलब है धुआं हो जाए तो वह उस आगे, और सागे जको थोड़ी बहुत लपटा आए करती तो खेत रे जका कीट पतंग आए वे सकला वे मार जड़ नष्ट हो जाता है, तो वह अपनी फसल घनी भी आदि सु बच जाते।
0: ये रिलो जो कहीं है भगत सर्व निराई गुडाई करता रहे हमारी जने जकी खर पतवार है बाहर जैसी, और खर पतवार हटी जने कई कीट परजीवी लार्वा है भी खर पतवार माथे ही पड़े बड़े बेबी नष्ट हो जावे। खर पतवार है सागे सागे वो भी जरूरी है कि आप फसल चक्र अपनावा, फसल चक्र अपनावा वो भी कीट ने बढ़वार रोकन रहे मैंने खासो सहायक है। मूंग मोठ ग्वार बाजरा सरसों इमें तो बदल बदल लेवा तो कीट नियंत्रण में घनी मदद मिले।
1: भरत भाई थे जो कि खर पतवार हटाने की बात बताई मैं सुम्हारे ध्यान में आई है कि भाई आजकल जो किसान भाई बहन है वे खर पतवार हटाने खातर जो निराई गुड़ाई रो तरीको है नी वो तो कम अपनावा है, और रासायनिक पदार्थ रो छिड़काव कर रहे फसलों अलावा जका पौधा है नी उन्होंने खत्म करने खातर जकी दवाएं रो छिड़काव कर देवे, तो जठेती हो सके दवाएं रो छिड़काव नहीं करे खरपतवार ठाण खातर निराई गुड़ाई करनी ध्यान देवे, और निराई गुड़ाई करन रे सागे सागे जको आप कभी नीम रो अर्क है वह सुबह आप इन्होंने खत्म कर सका। हाँ
0: तो थे बहुत ही सखरी बात बताई कि नीम रो अरक प्रयोग लिया। देखो प्राकृतिक है इरा कोई भी नुकसान बात भी को नहीं मैंने, जबकि अगर आप रासायनिक कीटनाशक काम में लेवा तो भी कई तरह रा जगह है दूसरा नुकसान देखने में मिलिया करे है, और रासायनिक जकी दवाई है आजकल तो लोग भी ने कम पसंद करे, आजकल तो लोग पाछो प्राकृतिक तरीका का नहीं आवण आ गया, तो बीर वास्ते भी नीम रो अर्क खासो महत्व है।
1: रासायनिक पदार्थ नो ज्यादा छिड़काव करा भरतवाई भैंसो की है कि अपनी जकी खेतरी भूमि है वो बंजर भी हो जावे।
0: हाँ, और इर अलावा वो भी है कि अगर मजबूरी मैंने कोई रासायनिक पदार्थ छिड़कनो पड़े तो एक तो नाक माथे ढाटो बांधो डोवे, आजकल तो मास्क आवण लाग गया बे होना चीज है, हाथा में जगह ग्लव्स बोले दस्ताना बोले बे लागूड़ा होना चीज है, और पूरे शरीर में कपड़ा पेरूड़ा होना चीज है ताकि रासायनिक पदार्थ सीधो अपने चामड़ी के संपर्क में नहीं आवे।
1: सबसे मोटी बात भरत भाई एक ही है कि जो किसान भाई रासायनिक पदार्थ रो छिड़काव करे वो सबसे पहला जो कि जहरी बोतल है वे न खोलने रो प्रयास करे, और वे ऊपर मुंडो कर कभी भी बोतल ने ना खोले और साइड में मुंडो कर खोले ताकि वे में जकी रुकेड़ी गैस है वह सीधी वे मुंडे ऊपर नहीं लागे और वो जहर रे प्रभाव से बच सके।
0: बिल्कुल, और प्राकृतिक तरीका अगर अपनावा तो पर्यावरण रे अनुकूल है, जैव रे अनुकूल है, खेत रे वास्ते भी फायदेमंद है, तो बढ़िया होए कि रासायनिक अपने कीटनाशक से बचनो चीज है, और एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन अगर अपनावा तो भी कम खर्च हुए और उत्पादन ज्यादा है।
1: और देखो आप जी अपनी खेती बाड़ी में उत्पादन बढ़ावा मैं सरूँ अच्छा अच्छा काम करा, और वही तरीके से अपने प्रोग्राम ने भी आप आगे बढ़ाने खातर कोई गीतड़ला और मनोरंजन ले रहा हूँ तो
0: समझ गए मैं थे कोई गीतड़लो सुना रही हो तो मान तो आओ बता दो थे केरी आवाज में गीतड़लो सुनवा रही हो।
1: देखो चंपा मेथी री आवाज रे माई आप मीठो सो यो गीतड़लो सुना
0: सुनाओ फिर।

0: स्टेशन।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव, जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
3: इंसानों के कारण जलवायु परिवर्तन, यह यूनेस्को का संदेश है। कोयला, तेल और गैस जलाना, पेड़ काटना और पशुओं को पालना जैसे मानवीय काम ऐसे ग्रीन हाउस गैसेस उत्पन्न करते हैं जो पृथ्वी को गर्म कर देते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद से पृथ्वी की सतह का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा बढ़ चुका है और जमीन महासागर के मुकाबले और तेज गर्म हो रही है। बर्फ के प्राचीन अध्ययन बताते हैं कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर अब 8 लाख सालों या 800 हजार सालों में सबसे ज्यादा है। बर्फ का पिघलना, समुद्र का स्तर बढ़ना, यह बदलाव वापस नहीं किया जा सकता। फिर भी उत्सर्जन लगातार बढ़ता जा रहा है। समुद्रों, बर्फ की परतों और समुद्र तल में होने वाले कई परिवर्तन अब लौटाए जा नहीं सकते। क्या आप जानते हैं पृथ्वी का तापमान लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ चुका है, जिससे जमीन, समुद्र और वायुमंडल सब पर गहरा असर पड़ा है।
4: बर्त भाई देखो आभार आप गीतलो सुने और संदेशा सुने और आप जो कि बात अपनी करा खेती बाड़ी से संबंधित तो खेती बाड़ी में आप नित नया जगह तकनीक आई है उन्होंने तो काम में ही लेवाइया वह सागे सागे आप चाहवा कि भाई अपने कम खर्चा में ज़्यादा उत्पादन हो तो ऐ सारू भी आप जो कि परंपरागत तकनीक है उन्होंने नहीं छोड़ा। और परंपरागत तकनीक की बात करें तो भाई मैं देखो आप सबसे पहला बात आवे कि भाई अपना जो को परंपरागत तरीके से अच्छो उन्नत बीज होए करो नहीं मैंने आप वर्षों तक बचा के रखा करता
5: बिल्कुल।
4: और वे में घनी हरी बीमारियां कम हो वह खातर वह बीजोपचार भी करता। आजकल आधुनिक तकनीकों भी बीजोपचार कर आप बीजान करा तो वह से भी आप घनी बीमारियां से अपनी फसल ने बचा सका।
5: बिल्कुल सही है। और बीजोपचार करने वास्ते वो भी जरूरी है कि रासायनिक प्राकृतिक दोनों ही साधन उपलब्ध है लेकिन प्राकृतिक तरीके से बीजोपचार करना ज़्यादा चौखो रहे क्योंकि बीर मैंने कही है कि कहीं भी नुकसान को नहीं ना वो जमीन ने नुकसान करे ना बीज ने नुकसान करे।
4: और सबसे बड़ी बात है कि भाई रासायनिक पदार्थों छिड़काव करा तो अपना जो मित्र पक्षी है वह भी धीरे धीरे खत्म होता जाने लग रहा है क्योंकि वो जो दाणो खूड सु बाहर रह जो है वह वो पक्षी खा जाए और वह जहर सू वो मौत हो जाए तो आपने जिठे थी हो सके रासायनिक पदार्थ से आप बीजोपचार नहीं करें प्राकृतिक तरीके से बीजोपचार करें।
5: और अगर मजबूरी मैंने रासायनिक बीजोपचार कर लिया हो तो एकदम विशेषज्ञ रे सलाह बाद में करना है बीती मात्रा ही काम में लेनी है। कई बार देखा कि भी मैं लिखा हुआ है कि 0.1% गोड़ लेकिन वो 0.1% गोड़ बनाना आवी को नहीं। कई बार तो ऐसा हुआ है कि पूरी जो 200 लीटर ढोलकी में एक चमचो इसे भी कम डालना हुआ है एक दो बूंद डालना हुआ है लेकिन लोग कह के रंग जितने तक धोड़ो नहीं हो जाए रंग बदले नहीं जितने तक वो काम में ले तो बहुत ज्यादा
4: नुकसानदायक हो
5: नुकसानदायक।
4: और मैं सागे सागे आप कई बार भरत भाई देखा भी है वो नुकसान के भी आपने खेत में ही जावा जब कई बार कमेड़ी मरेड़ी मिल जावा आपने कई बार बीजान होएडो है बटे मोरियो मरेड़ो मिला है वो क्या खतर मिले कभी आपने जो खेत में बीजान होएडो है वो बीज जो बारे रह गए वो खा ले और खाने से वहीं डेथ हो जाए मृत्यु हो जाए
5: भाई चौखी बात को नहीं है। और इन अलावा जो वो भी है कि किसान कई बार बीजा ने सीधो खोत रहे खेत में बो देवे बिना बीजोपचार बाबी बात ठीक होनी है। बीजोपचार करनो बहुत जरूरी हो जाए। बाजरा, मूंग, मोठ, गवार, मूंगफली, तिल एडी खरीफ फसला में तो बीजोपचार बहुत ही जरूरी हो जाए। इसे अंकुरण भी चोखा हुआ है और पौधों भी मजबूत बने
4: पौधों मजबूत बन रहे सागे सागे वह में जो कि बीमारियां हैं वह भी कम पन पाए और बीमारियों प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मैं पौधे में ज़्यादा होया करें। और मैं सारू आप देखा कि भाई अपनी जो कि पैदावार है वह भी बढ़ोतरी और वही गुणवत्ता भी ज़्यादा बढ़ जाए
5: बिल्कुल।
4: भरत भाई एक बात और अपना किसान भाई बहन ध्यान रखनी पड़ेगी कभी बीजोपचार करा में सागे सागे जो कि उन्नत किस्म है और आप देखा कभी टीम सरू रिज की किस्म है आपने क्षेत्र रिज की किस्म है वही अपने अपनानी चाहिए। जी आप देखा कभी आपने बरानी किस्म है और पछेती बुआई करने लग रहे हैं तो आप जो कि फसल री पछेती बुआई री उन्नत किस्म है वही आप बुआई करनी चाहिए। और खास करके ध्यान भी देवा कि फसल री अच्छी बढ़वार हो सरू की एक कतार सू कतारगी और बीज सू बीज की जो कि दूरी है वह भी आप मनाए रखा
5: बिल्कुल सही बात है। ये तो सगली छोटी छोटी बात है बहुत जरूरी हो जाए।

0: रासायनिक बीजोपचार अगर करो तो थायरम हुए, कार्बन डाइजाम हुआ, इसी दवाया वैज्ञानिक सलाह रहे बाद में ही, और वैज्ञानिक सलाह रहे बाद में भी यार कितनी मात्रा काम में लेनी है अभी वैज्ञानिक सलाह रहे आधार पर ही काम में लेनी है। और जैविक बीजोपचार भी काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, इनमें ट्राइकोडर्मा, PSB, एजिडोबैक्टर, राइजोबियम ऐसा जैव उत्पाद है, ए बीजा पर लगाया जावे जगह फसल ने कोई नुकसान होवे कौन,
1: और अपनी फसल रह सागे सागे अपनी फसल ने भी तो उत्पादन बढ़ावे ही बढ़ावे और अपनी खेतरी जो की मिट्टी है वन भी उपजाऊ बनावे।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और राइजोबियम जो को होया करे है बहुत जड़ान मैंने गांठा बना और पछे नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी लाभ देवे।
1: तो देखो आप इन बातों जाना और अबार आप जी बात करें कि भाई अपने कार्यक्रम ने आगे बढ़ा रही तो किसान भाई बहन उड़ीक रख रहे गीतड़ ले रही।
0: बिल्कुल, तो सुनाओ फिर चोखो सी गीतड़ लो, चाला आप ही कठे
1: भूंगर खां री आवाज रमाई सुनायो मीठो सो गीतड़ लो
0: सुनाओ।

0: आपका व्यवसाय आपकी पहचान
1: अब गूंजेगी हर कोने में आकाशवाणी बीकानेर के संग।
0: जी हाँ, अपने उत्पादों, सेवाओं और संस्थान को दीजिए नई पहचान।
1: जन जन की वाणी आकाशवाणी के माध्यम से।
0: बस आइए करनी सिंह स्टेडियम के पास आकाशवाणी बीकानेर कार्यालय में,
1: सोमवार से शुक्रवार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
0: बुक कराइए अपना विज्ञापन, पहुँचाइए अपने व्यवसाय को कोने कोने तक,
1: क्योंकि आकाशवाणी माध्यम है विश्वास का, पहचान का और विस्तार का।
0: जुड़िए आकाशवाणी बीकानेर से और अपने व्यवसाय को दीजिए सफलता की नई उड़ान।
1: आकाशवाणी बीकानेर, आपकी आवाज जन जन तक।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: भरत भाई, देखो आप संदेश सुने और संदेश सागे सागे आप जकी बातें करा अपनी, कभी खेती बाड़ी ने किया आप आगे बढ़ावा, पशु पालन ने किया आगे बढ़ावा। मैं सागे सागे आपने घनी योजना भी आवे जी आपने आगे बढ़ाने की खतरा आवे, उन योजना की भी आप पूरी जानकारी लेवा और जानकारी ले आप खुद ही काम में ही नहीं लेवा, अपने भाई बंधुओं भी मैं जानकारी सु अवगत करावा और उन्होंने भी उन योजना शुरू बतार आगे बढ़ाने प्रयास करा।
5: बिल्कुल, और इसी एक जानकारी है, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा योजना और उत्थान महाभियान, इन्हें पीएम किसान योजना भी कह रहे हैं, और इन मैंने ऊर्जा सूरज की जरूरत है भी पर ध्यान दीजिए।
4: तो देखो आप योजना से जुड़ा और जानकारी लेवा कभी कुसुम योजना है जो कि आपने किया आगे बढ़ा सका है और आप किया ऊर्जा रो संचय कर आगे बढ़ सका है और आप किन किन बातों ने ध्यान में ही रखा।
5: बिल्कुल, ये योजना मैंने कही है कि किसान सोलर पंप ऑपरेटर लगवा सके, खेत्र में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर सके और बिजली उत्पादन कर आय भी कमा सके है। योजना तीन घटक है, सोलर पावर हुआ है, इसके अलावा स्टैंड अलोन सोलर कृषि पंप है और मौजूदा कृषि पंप रो सोलराइजेशन है, यानी कि वो सूरज की रोशनी जोड़ने रो काम है।
4: तो देखो भरत भाई, आप किसान भाई बहन हाँ और अपनी खेती बाड़ी में आप देखा कि भाई सिंचाई साधन रही बार बार सुविधारी जरूरत होया करे और जो कि आप देखा कि बिजली दिन में कई बार चली जावे कई बार आ जावे, आप इसी व्यवस्था करानी जो अपना जो कुआ है नलकूप है वो आसानी से हर समय आप चला सका वह सर के
5: का। ना सिर्फ बिजली अपार काम में लिया बल्कि बनार बेचा भी सरकार ने,
4: बेच भी सका पर आप ध्यान देवा कभी अपना नलकूप है कुआ है उन्होंने अपना टेम सरू चला सका और अपनी फसलों ने पानी दे सका वह सरू के आप सोलर जका प्लांट है उन्होंने लगावा और अपना जो कह सका कभी सिंचाई का साधन है उन्होंने सुचारू रख सका और जकी थे बात आई कभी ज्यादा बिजली रो आप उत्पादन कर सका तो वह सू आप दूसरा बिजली भी पीछे कमा सका।
5: बिल्कुल बिल्कुल, और राजस्थान में मैंने तो कही है कि अपार गर्मी पड़े भी घनी है तो गर्मी रो एक चोखो उपयोग हो सके, प्राकृतिक तरीके से उपलब्ध है, अक्षय ऊर्जा है, कभी खत्म भी कोनी हुए।
4: तो देखो आप समझा जाना और योजना से जुड़ा और योजना रो पूरा फायदा उठा।
5: बिल्कुल, और इसके अलावा आपने एक अगर सरकार योजना लाभ लेवा तो सरकारी तरफ से कई सब्सिडी जिकी है वह भी उपलब्ध कराया जा करे बिरो भी लाभ लिया जा सके और नज़दीकी कृषि जो को विभाग है ऊर्जा विभाग है या ई मित्र केंद्र बैठे सो जानकारी ले सको या आप सरपंच साहब सो पूछ सको ये बारे में। और किसान अगर सौर ऊर्जा माथे निर्भर हो गयो तो वो ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी हो जैसे।
4: और सबसे बड़ी बात है भरत भाई कि भाई

मैं आकाशवाणी हूँ। 90 साल की आपकी आकाशवाणी। नब्बे साल और एक स्वर्णिम सफर आकाशवाणी। आकाशवाणी जिसने संगीत, नाटक, कविता और अपनी बातों के माध्यम से पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा।

बच्चों से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक, युवाओं से लेकर किसानों तक और किसानों से लेकर जवानों तक, हर दिल की आवाज बना आकाशवाणी का जादुई माइक। और आकाशवाणी का ये माइक भारत की सभी भाषाओं में मूल्य और संस्कृति का एक समागम है।

और अब तो रेडियो से आगे बढ़कर पॉडकास्ट और वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी आपके सुनहरे कल की कहानियां दोबारा सुनाने को है तैयार आकाशवाणी।

0: तो हमेशा सुनिए रेडियो, रेडियो रेडियो महसूस कीजिए रेडियो, रेडियो रेडियो रेडियो क्योंकि आप सवार हैं आकाशवाणी के संस्कृति रूपी स्वर्ण रथ पर जो दमकता है और प्रतिभा के अनमोल हीरों से चमकता है।
1: तुझको आशिकी वाणी का है आसरा, मन का रेडियो बजने दे जरा।
0: आकाशवाणी का 90वें साल में प्रवेश, कोशिश रहेगी अब से प्रसारण का हर लम्हा होगा आपके लिए अति विशेष।

0: भरत भाई देखो, संदेश सुने और संदेश से पहला मीठो सो गीत सुने। और देखो, काम धंधो चाहे अपनो कोई भी हो भरत भाई, मैं खातर स्वस्थ रहना बहुत ही जरूरी है, और स्वस्थ रहने खातर टाइम सर खाना पीना बहुत ही जरूरी है। और खाने पीने की बात करें तो अपनी सरकार है वो भी अपना पूरा ध्यान रख रहे
1: क्या करे, स्वास्थ्य रस्तो भोजन के माध्यम से ही आगे बढ़िया करे है। और सरकार जो है गरीब मजदूर श्रमिक वर्ग वास्ते, खासकर यात्री गण वास्ते पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने वास्ते अन्नपूर्णा रसोई योजना लाई है ग्रामीण क्षेत्र में भी। और इरो उद्देश्य ओ है कि अगर आप कोई काम धंधो कर रहे हैं तो बिरखा नहीं आपने भोजन मिल जाए,
0: और भोजन वो भी सस्ती दर पे नाम मात्र कीमत रही आपने जो भरपेट भोजन मिल जाए जो सगड़ारी पूंछ में हुए।
1: बिल्कुल, और सगड़ार वास्ते है अगर कोई भी है, यात्री है, मजदूर है, श्रमिक है, कामगार है, कोई अस्पताल रे काम आवे या अचानक कोई निकल जावे, जरूरी कोने हरदम वहाँ पर टिप्पण सागे ले जा सके, जद नहीं है तो ऐसी स्थिति में कम पैसा मैंने भोजन उपलब्ध हो जाए, जो आर्थिक बोझ भी बढ़े कोनी और खुदरी जरूरत भी पूरी हो जाए।
0: भरत भाई जो कि सरकार है अपनी वह भी आपने आगे बढ़ाने रो हर तरीके से प्रयास करने लग रही है, आप भी उन्हारी जो कि योजना है उन्होंने सफल बनाने रो काम करा और अभी अपना कार्यक्रम ने आगे बढ़ाने रो काम करा।
1: बिल्कुल, टाबरा वास्ते विशेष तौर पर

0: भरत भाई देखो अबारा पाँ मीठो सो गीतड़लो सुनो
1: काड़ू राम प्रजापति री आवाज रे मैंने
0: टबरिया खातर थे बड़ो ही मीठो गीतड़लो ले रहा है।
1: और अब जो बारी है एमएसपी री रबी री एमएसपी है जो कि 2026-27 रे वास्ते है। गौरी है आ प्रति क्विंटल रे भाव हिसाब से है। गहूँ 2585 रुपया, जौ 2150, चना 5875, मसूर दाल 7000, सरसों 6200 और कुसुम यानी सूर्यमुखी 6540।
0: और देखो आप सावणी की फसलों की बात करा तो धान है जो 2025-26 रमाई रहसी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपया, और जो बाजरा रो रहसी 2775 रुपया, रागी 4886 रुपया, मक्का 2400 रुपया, और मूंग जो है 8768 रुपया। और जो कि मूंगफली की बात करा तो मूंगफली है वो 7263 रुपया रहसी, और तिल रे जो कि 9846 रुपया 2000

0: 25-26 रो यो न्यूनतम समर्थन मूल्य रहेछ
1: और अब घड़ी इशारो कर रही है कि बेदा जनेर बगत आ गयो है तो आप रहे थड़े भाई भरत कुमार जाजड़ा और
0: अनिल सिंह खिचड़ ने दो सिख
1: घना घना
0: राम राम।

ये था ग्रामीण श्रोताओं का कार्यक्रम ग्रामीण जगत, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्स पर। शाम के 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में सबसे पहले सुनिए नानक देव जी का रचा ये भक्ति गीत। गायक हैं फैयाज खां।

श्रोताओं, ये थे ज्ञानेश्वर सोनी और इस भक्ति गीत के रचनाकार महाकवि सूरदास। और अब सुनिए ये पारंपरिक भक्ति गीत, गायिका हैं हर्ष दारावल।

श्रोताओं, इस भक्ति गीत के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है, मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ये थे अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेवा, फिल्म का नाम जानम, गीतकार फैज़ अनवर और संगीतकार अनु मलिक। लीजिए अब सुनिए जाल फिल्म से लता मंगेशकर और साथियों को। गीतकार हैं साहिर लुधियानवी और संगीतकार एस डी बर्मन।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के

0: वाद तक
1: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। और अब सुनिए मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों को। फिल्म का नाम है जाने जान, गीतकार गुलशन बावरा और संगीतकार आर डी बर्मन।

0: से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार।
1: गुमराह, इस फिल्म से अभी आपने सुना महेंद्र कपूर की आवाज में साहिर लुधियानवी का ये गीत, गीतकार साहिर लुधियानवी और संगीतकार रवि। आप सुनिए जान की कसम फिल्म से अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू को, बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्ज़ और FM 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। लीजिए

सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं मांगी बाई के गाए इस पारंपरिक लोक गीत के साथ।

0: जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मिले आपके अमूल्य सहयोग के लिए जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता है। आपके सहयोग से प्रदेश की सही और समग्र जानकारी संकलित हो रही है।
1: अब फरवरी 2027 में जनगणना के अगले चरण में भी आपके इसी सहयोग और सक्रिय भागीदारी की अपेक्षा है। जनगणना 2027 बेहतर भविष्य की मजबूत नींव। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और अब सुनिए मिश्रीलाल कलावत का गाया ये लोक भजन।

0: मोहनलाल और साथियों के गाइस लोक भजन के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर रात्रि के 8:45 हो रहे हैं। अब श्रोता सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या और उसके बाद न्यूज़ एट 9।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।

0: वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। कल अमरीका के राष्ट्रपति से मुलाकात होगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चालू खरीफ सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं की भर्ती की घोषणा की। भारत और जापान ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी और सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के लिए नियम अपनाए। ईरान ने कहा अमेरिका के साथ युद्ध विराम समझौते के लिए इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। उत्तर भारत में कल बिजली कड़कने और तेज आंधी का अनुमान। और 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के एवियॉन में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग ले रहे हैं। नई साझेदारियां बनाना और अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का पुनः निर्माण विषय पर आधारित इस सत्र में G7 देशों के नेता, सहयोगी देशों के नेता और विश्व बैंक तथा अफ्रीकी विकास बैंक के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक की शुरुआत फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा प्रधानमंत्री मोदी और अन्य भागीदार देशों के नेताओं का औपचारिक स्वागत करने के बाद हुई। शिखर सम्मेलन के बारे में अधिक जानकारी के लिए चलते हैं एवियॉन में मौजूद हमारे संवाददाता अंकित कुमार के पास। अंकित, भारत के लिए सम्मेलन का रणनीतिक महत्व क्या है?
1: जी प्रियंका, देखिए भारत इस G7 शिखर सम्मेलन को केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ संवाद के मंच के रूप में ही नहीं बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती से रखने के अवसर के रूप में भी देख रहा है। भारत की अपेक्षा है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, नवाचार और भरोसेमंद सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाया जाए। खासतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार बढ़ रही है और इस दिशा में भारत ठोस साझेदारियों की उम्मीद कर रहा है। इसके साथ ही इस बात की भी उम्मीद है कि भारत विकासशील देशों से जुड़े मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाएगा। इनमें सतत विकास, जलवायु, वित्त, ऊर्जा सुरक्षा और समावेशी आर्थिक विकास जैसे विषय शामिल है। भारत लगातार ये कह रहा है कि वैश्विक नीतियों और निर्णयों में विकासशील देशों की चिंताओं को पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। जी प्रियंका,
0: धन्यवाद अंकित इस जानकारी के लिए। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का राजनयिक कार्यक्रम भी व्यस्त है। वे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने यह बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। एक रिपोर्ट।
2: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट संदेश दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किसानों के हितों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में इस बात पर भी ध्यान केंद्रित किया गया कि फसल

0: मौसम के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रतिकूल मौसम स्थिति से कृषि और किसानों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम पहले से ही उठाए जाएं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन जिलों में कम वर्षा या असमान वर्षा की संभावना है वहां पहले से ही पूरी तैयारी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों की स्पष्ट पहचान की जानी चाहिए और राज्य सरकारों के समन्वय से फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार की जानी चाहिए, जिससे मौसम संबंधी किसी भी चुनौती की स्थिति में किसानों को तत्काल विकल्प, सलाह और सहायता प्रदान की जा सके। इसके साथ ही उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, अंतर फसल खेती और वैकल्पिक फसल पैटर्न पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। सुपर्णा सेकिया के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच श्री चौहान ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के करसियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने आज स्वास्थ्य सेवा, पेयजल, तकनीक, डिजिटल कनेक्टिविटी और सुशासन से जुड़े कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। इसके अंतर्गत नागपुर में हाई एनर्जी मेडिकल साइक्लोट्रॉन प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मध्य भारत की ये पहली परियोजना है जिससे अलग अलग बीमारियों की जाँच और उपचार बेहतर होने की उम्मीद है। मंत्रिमंडल ने ग्रामीण इलाकों में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल नीति तथा नवाचार और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र अनमैंड सिस्टम पॉलिसी को मंजूरी दी। महाराष्ट्र में जून के पहले चरण में सामान्य से 26% ही बारिश हुई है। राज्य सरकार ने किसानों को सलाह दी है कि वे जल्दबाजी में बुआई न करें। सरकार ने किसानों से आग्रह किया है कि वे बुआई का काम शुरू करने से पहले बारिश की स्थिति पर ध्यान दें। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला अधिकारियों के साथ पेयजल संवाद का आयोजन किया। इसमें वरिष्ठ अधिकारी, जिला अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के जल जीवन मिशन के डायरेक्टर शामिल हुए। इसका उद्देश्य जल के जीवन मिशन 2.0 के लागू होने की रफ्तार बढ़ाने और बेहतरीन तौर तरीकों पर चर्चा करना था। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने आज डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से स्वगणना की प्रक्रिया पूरी करके जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत की। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना है और ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रशासनिक तथा सांख्यिकी कार्य है, जिसे पूरी तरह से ऐप आधारित पेपरलेस सिस्टम के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। पत्र सूचना कार्यालय की फैक्ट चेक इकाई ने कहा है कि ये दावा निराधार है। इकाई ने कहा है कि परीक्षा के प्रश्न पत्र देश भर से चयनित संबंधित विषयों के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत के आधार पर भारत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के नाम से विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज बात आतंकवाद से निपटने के लिए सरकार की शून्य सहिष्णुता नीति की।
2: पिछले वर्ष 6 और 7 मई की मध्य रात्रि को भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने पूरी दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया कि भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट किया कि यदि आतंकवाद किसी देश की नीति का हिस्सा बनेगा तो उसका सीधा और सशक्त जवाब दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के जरिए भारतीय सेना ने लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में स्थित 9 प्रमुख आतंकवादी लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया। इस अभियान में 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। वहीं 9 और 10 मई को भारत ने इतिहास रचते हुए परमाणु

0: हथियार युक्त किसी देश के 11 एयरबेसों पर एक ही अभियान में प्रहार करने वाला पहला राष्ट्र बनने का गौरव प्राप्त किया। इस कार्रवाई के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान वायुसेना के लगभग 20% बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में जम्मू कश्मीर में 15वीं कोर के पूर्व कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी एजेंसियों की खुफिया क्षमता और समन्वय की सराहना की।
1: इंडिया फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ,
2: भारत ने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद जिम्मेदार लोकतंत्र और परमाणु संपन्न देश होने के नाते उनकी इस अपील को स्वीकार कर लिया। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकी देश को कड़ा सबक सिखाया कि भारत पर किसी भी आतंकी कृत्य को बख्शा नहीं जाएगा।
0: वहीं 7 पड़ोसी देशों से लगी 15,000 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत आज नेशन फर्स्ट के सिद्धांत पर आधारित प्रभावी विदेश नीति का पालन कर रहा है। सिलचर के प्रोफेसर अनूप कुमार डे ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि
3: 263 में से ज्यादातर हिस्सों में इंटरनेशनल जो बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ फेंसिंग हो गया है, उसके कारण ना केवल वहां से जो अनुप्रवेश है उसमें रोक लगी है, उसके साथ साथ वहां से जो इल्लीगल ट्रेड्स होता था वो भी बंद हुआ है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाकर देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया के सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया जाना देश के लिए अत्यंत गौरव की बात है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि ये देश में प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कल्याणकारी कार्यों को मान्यता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और जापान ने जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्रवाई, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी तथा सतत विकास पहलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए पेरिस समझौते के अंतर्गत संयुक्त क्रेडिटिंग तंत्र के कार्यान्वयन नियमों को अपनाया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अनुसार JCM के लिए पिछले वर्ष दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित सहयोग ज्ञापन के बाद इस वर्ष 8 जून को कार्यान्वयन नियमों को अपनाया गया। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत इसराइल को लेबनान से पीछे हटना होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने आज कहा कि दक्षिणी लेबनान पर इसराइल का निरंतर कब्जा अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता ज्ञापन का उल्लंघन है। अमेरिका ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि लेबनान अंतिम समझौते का हिस्सा है या नहीं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश करता है तो भयानक तबाही मच जाएगी। फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन से इतर कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी के साथ द्विपक्षीय बैठक में श्री ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौते में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। मौसम विभाग ने कल उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में उत्तर पूर्वी भारत, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा हो सकती है। अगले 4 से 5 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान है। भारतीय तलवारबाजी संघ ने 26वीं सीनियर एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। भारत पहली बार इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा। 19 से 24 जून तक दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में 30 से अधिक देशों के शामिल होने की उम्मीद है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के एवियन में G7 शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय कार्य सत्र में भाग लिया। वे आज रात कनाडा तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स के पुनरुद्धार की घोषणा की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi participates in G7 summit in Evian, France.

श्रोताओं, ये थे किशोर कुमार, आशा भोंसले, महेंद्र कपूर और साथी। फिल्म का नाम जानी दुश्मन, गीतकार वर्मा मलिक और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और लीजिए अब सुनिए आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया ये गीत, जिसे लिखा समीर ने। गायक कलाकार हैं अलका याग्निक और मनहर उदास। फिल्म का नाम जानवर।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्स और FM 101.6 मेगाहर्ट्स पर रात्रि के 9:30 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में गैर फिल्मी गीत और गजलें। कार्यक्रम के प्रारंभ में सुनिए इंद्राणी रिजवी की गई इस गजल को, जिसे लिखा मिर्जा गालिब ने।

अभी श्रोताओं ने सुनी फिराक गोरखपुरी की ये गज़ल, जिसे गाया जमील अहमद ने। और अब सुनिए सुगम संगीत के कार्यक्रम में इकबाल बानो को

मीडियम वेव 215.05 मीटर यानी 1395 किलो हर्ट्स और एफएम 101.6 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी बीकानेर के ढोला मारू चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बजे हैं। लीजिए सुनिए आपके पत्रों पर आधारित फरमाइशी फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद।

कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, ये गीत सुनने के लिए हमें फरमाइशी पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं। सुराणा मोहल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल सुराणा, शरद सुराणा, मयंक सुराणा, विमला भाणी, लालेंद्र होलेंद्र आचार्य, रोशन अली मिस्त्री, लालगढ़ बीकानेर से असगर अली, पंजाब के रनवर अली, मुमताज़, सोनू, टीना, वहीदा, साहिदा, ताहिरा, एम ए पवार, खातून बेगम, शीतलागढ़ बीकानेर से मोहम्मद शफी खींची, शरीफ खींची, शुजैन आजम खींची, अकमल हुसैन, अमजद अली, अमर सिंहपुरा बीकानेर से मोहम्मद अफजल, मुमताज अली, सिकंदर अली, शबनम बानो, मोहम्मद कैफ और इनके परिवारजन, मोहम्मद सरबाज श्री डूंगरगढ़ से मोहम्मद असगर पंवार, अकबर, राबिया, मुन्नी, बरकत हाजन, अजीज गुलजार और असगर भाई, जेनवी कॉलोनी बीकानेर से डॉक्टर अशोक कुमार शाही, संतोष शाही, राजश्री और गौरव शाही, पौनपुरी बीकानेर से भंवरलाल सोनगरा, प्रेमी गीता रानी, राज मनोहर लाल, बी एल सोनगरा, डॉक्टर सोनू दायमा, सरोज सत्यनारायण दायमा, अखिल मूलचंद सोनगरा, सुनीता प्रथमराज, हंसराज कृष्णा, मुकेश सोनगरा, सावित्री सत्यनारायण, मिस्त्री सीताराम पंवार, दीफू पंवार, आशीष, जतिन सोनगरा, वल्लभ गार्डन बीकानेर से एलसी शहजादा, कमला देवी पंवार, राजकुमार, गीता रानी, मयंक, अनन्या, सत्यनारायण पंवार, लालचंद पंवार और इनके साथी। और अब श्रोताओं, अगले गीत के लिए फरमाइशी पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं। ब्रह्मपुरी चौक बीकानेर से जीपी दवे, सुरेश दवे, गोपाल दवे, इनके परिवारजन, चौतीना कुआं बीकानेर से राजेंद्र कुमार पांडे, इनके परिवारजन और साथी, रानी बाजार बीकानेर से रानी झाम, बिट्टू झाम, कमला कॉलोनी बीकानेर से सुभाष खत्री और इनके परिवारजन, बीकानेर से ही रमजान अली लखारा और इनके साथी, कोहरियान मोहल्ला बीकानेर से इकरामुद्दीन कोहरी, इनके साथी और परिवारजन, विनोबा बस्ती बीकानेर से हरीश कुमार सियोता, इनके परिवारजन और साथी, चुनगरों का चौक बीकानेर से एस मोहम्मद अली, जीतू, शबनम बानो, अख्तर बानो, महनाज बानो, साजिद मुगल, इनके परिवारजन और साथी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं फिल्म जब जब प्यार हुआ से लता मंगेशकर और

अरे ना ये गोरों को मिलती है ना ये कालों को मिलती है, मोहब्बत खुद ब खुद होती है, पैदा की नहीं जाती। अमां खुदा की खास नेमत है जो दिल वालों को मिलती है।

श्रोताओं, ये थे महेंद्र कपूर और फिल्म जब याद किसी की आती है के लिए इन्होंने ये गीत गाया। इस गीत को लिखने वाले राजा मेहंदी अली खां और संगीतकार मदन मोहन, फरमाइश करने वाले हमारे श्रोताओं के नाम हैं देशनोक बीकानेर से गोपाल दान, प्रकाश दान, भोम दान, शिकोलायत से भूसराज सोनी और इनके परिवारजन, दौलतपुरा श्रीगंगानगर से शोलाल, शांति, मंजू, मोहित, हेमंत, बेनीवाल, सादुल शहर से ओम प्रकाश, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश, वेद प्रकाश चौहान, कोलपोल उदयपुर से गोपाल, कांता नैनवया, गोपाल, तिलक, सक्षम, तंबोली, गिरिराज सोनी, घनश्याम, जगदीश मोदी, गोविंदगढ़ श्री करणपुर से राजू, खुशदिल, उर्मिला, गुड्डू, जीनू, मनु, आदित्य, भूमि, राखी, अमृत, शिव, सेठी, इस्माइल, टुटेजा, अरैयावाला, हनुमानगढ़ से कालू खान दमामी, इनके परिवारजन, बाड़मेर से बबलेश डेनी, मनीष पंवार, बाड़मेर से ही खुदा बख्श, बच्चू खां, मोमिन खलीफा, चौमेला, राजस्थान से कैलाश चंद्र गर्ग और इनके परिवारजन और साथी। कार्यक्रम में अगला गीत सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद शमीम बेगम, इमरान खां, इरफान खां, तापू जोधपुर से विश्नाराम बालियान और इनके परिवारजन, रटलाई झालावाड़ से प्रभुलाल, मनोहर बाई और बागरी परिवार, फरांसी रेस से राजकुमार, सरजीत सिंह, प्रमोद डूडी, डबवाली से राजेंद्र, अंजू और मोहित नारंग, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोत, निखिल, अंकित, साहिल कांगड़ा, हांसी शहर से राजू, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू और इनके परिवारजन, अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारणी, सूरज, ज्योति, रयांश और गुड़िया ठाकुर, बाबा कुटी उफरा से प्रेम, यमुना, तुलसी, हेमलता साहू, पटियाला से मुकेश, नीलम, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश पट्टा। ये सभी सुनना चाहते हैं मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर को। गीत हमने लिया है इन श्रोताओं की पसंद का, फिल्म पालकी से। बोल शकील बदायूनी के हैं और संगीत नौशाद का।

फिल्म का नाम पापा कहते हैं। गए कलाकार कुमार सानू और अलका याग्निक। इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं भटिंडा पंजाब से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी जेएस नायक, शोभा और डागला परिवार। लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब, साबिर राही, महराज जहां। बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक, मयंक, चेतन, दीक्षा, कुश मुनत। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू और इनके साथी। लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी, इनके साथी और परिवारजन। दतरंगी से भागवत वर्मा, इनके साथी और परिवारजन। इसी गीत को सुनना चाहते थे सनावद मध्य प्रदेश से यूनुस खत्री, शफी खत्री, इदरीस, नूर मोहम्मद, इरफान, कासिफ, हासिम मीना। डब्वाली से राजेंद्र रंजू और मोहित। डब्वाली से ही बसंत सिंह चन, राजकुमार।

0: सुनीता कुलदीप गांधी, इनके परिवारजन और साथी डबवाली शहर से ही जेके बाकोलिया, सुनीता, संजय, अनिल, मीनू बाकोलिया। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म पाकिजा का, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, जिसे लिखा कैफ भोपाली ने और संगीतबद्ध किया गुलाम मोहम्मद ने। और इस गीत को सुनना चाहते हैं प्रमिलागंज जालोट से बलवंत कुमार वर्मा, राजू बाई, माया, शोभा, राहुल, ज्योति, अतुल प्रियांश, ऋषि वर्मा। मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, सौरव शर्मा। मलोट पंजाब से ही छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, सी एस पेगाना। इसी शहर मलोट से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरजू, जाजोरिया और इनके परिवारजन, राजीव, रजनी, आरती, तनिष, सेतिया, इनके परिवारजन और साथी, सतीश, सीमा, शाइना, विशाल, सुप्रिया, अनमोल, धर्मपाल, रमेश मिगलानी, मलोट पंजाब से। जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र चंदसोलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और आराध्या। भिलाई से मुकेश, सरिता, गौरव, गरिमा शर्मा, इनके परिवारजन और साथी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद, परमानंद, प्रमोद, पंकज, रोहित और मोहित आर्य। लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये गीत सुनिए।
1: लेके अंगड़ाई सरे बज़्म बहुत पछताई, आया गुस्सा कभी अपने पे कभी शर्माई, उठी घबरा के मगर ऐसी कमर बल खाई।

हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को गया लता मंगेशकर ने। फिल्म का नाम पगला कहीं का, संगीतकार शंकर जयकिशन। और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम हैं, शिवाजी नगर वड़ाली देशमुख से राजेश शिवसागर, इंदिराबाई सुनैना खोबरखेड़े, जलगांव से राम, दीपाली और स्वराज धाड़े, अमरावती से सुनैना और पावन भोंडे और इनके साथी, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा, फाजिलका पंजाब से भूषण, विशु, विशाल, टिवांशी, शालिनी, आरवी, लाड़ी, जीवन सिंह बुक, खेड़ा परिवार, फड़भुंजी मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय और इनके परिवारजन, रोपड़ पंजाब से मीका, बलविंद्र, जयतेग, विरक, हरदेव मीका, लुधियाना से विनोदपुरी और इनके परिवारजन और साथी, बठेना से बलकरण, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, भिवानी से कृष्ण मेहरा, इनके परिवारजन और साथी। कार्यक्रम का अगला गीत है फिल्म पतंगा से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे लिखा राजेंद्र कृष्ण ने और संगीतबद्ध किया सी रामचंद्र ने। इस गीत को सुनने के लिए पत्र लिखने वाले श्रोताओं के नाम है, मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक मल्होत्रा, बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआर इनके साथी, इंदौर से जगदीश चौहान इनके साथी, मुरादाबाद से अयूब खां, इरम गुड़िया, शुएब, नावेद खां, मोहम्मद फरीद अंसारी इनके परिवारजन, जफर हुसैन और इनके परिवारजन, नाहन हिमाचल प्रदेश से रजाक मोहम्मद इनके परिवारजन और साथी, हरिपुरा झज्जर से प्रदीप वधवा इनके परिवारजन और साथी, अहमदाबाद से भालचंद्र वड़के इनके परिवारजन और साथी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर इनके परिवारजन और साथी, मधुबनी बिहार से हेमलता सज्जन और इनके परिवारजन। लीजिए श्रोताओं, आपकी पसंद का ये गीत सुनिए।

फिल्म का नाम पत्थर के सनम, गायक कलाकार मुकेश, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। ये गीत सुनना चाहते थे भाटापारा से प्रमोद साहू, इनके परिवारजन और साथी, जलालाबाद से सुरेश गगनेजा और इनके परिवारजन, भाटापारा छत्तीसगढ़ से ही सोहन जोशी, इनके परिवारजन और साथी, मेहरनगर महाराष्ट्र से अभिजीत गवहांकर, इनके परिवारजन और साथी, विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवहांकर और इनके परिवारजन, भिलाई से प्रताप पांडे, इनके परिवारजन और साथी, शिवाजी चौक कटनी से अनिल ताम्रकार, अमर ताम्रकार, संतोष शर्मा, रज्जन रजक, राजू ताम्रकार, दिलीप वर्मा, पंचू सोनी, पावन यादव, सत्तू सोनी, अरुण कन्नौजिया, संजय सोनी, लालू सोना और इनके परिवारजन और साथी, नरगोड़ा सीपत छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी और इनके परिवारजन और साथी। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हमें पत्र लिखने वाले श्रोता जो इस गीत को सुनना चाहते हैं, उनके नाम हैं राम सिंहपुर श्रीगंगानगर से अशोक बब्बर, इनके परिवारजन, श्रीगंगानगर से ही सरबजीत सिंह जोशन, इनके परिवारजन और साथी, मऊ मांगरोल बारह से श्रवण लाल योगी और योगी परिवार, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा और इनके साथी, जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, इनके परिवारजन, जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, इनके परिवारजन और साथी, गोविंदपुरा नीमका थाना से दातार सिंह, इनके परिवारजन और साथी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार, सैंसवास झुंझुनू से नेकीराम रेवाड़ और इनके परिवारजन, गोविंदगढ़ माझीवाला शिकरणपुर से राजू टुटेजा खुशदिल, इनके परिवारजन और साथी। ये सभी श्रोता सुनना चाहते हैं पर

श्रोताओं, अनुराधा पौडवाल और हरिहरन के गए इस गीत के साथ ही कार्यक्रम आपकी पसंद का समय पूरा हो रहा है। दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद, आकाशवाणी बीकानेर का ये ढोला मारू चैनल है। मीडियम वेव 215.05 मीटर अर्थात 1395 किलोहर्ट्ज़ और एफएम 101.6 मेगाहर्ट्ज़ पर रात्रि के 11 बज रहे हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फ्रांस के एविया में G7 शिखर सम्मेलन के एक उच्च स्तरीय कार्य सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत हमेशा मानवता पहले के सिद्धांत पर चलता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, मिशन लाइफ और एक पेड़ माँ के नाम जैसे भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत की सोच वसुधा कुटुम्बकम यानी विश्व एक परिवार है पर आधारित है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं के समय भारत हमेशा जरूरतमंद देशों की सहायता के लिए आगे रहा है। प्रधानमंत्री ने वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए संवाद, कूटनीति तथा अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के सम्मान पर जोर दिया। शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा प्रधानमंत्री मोदी का व्यस्त राजनयिक कार्यक्रम भी है। वो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कील स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। आज रात वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित भव्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी की कल

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के साझा दृष्टिकोण ने भारत इनोवेट्स की आधारशिला रखी, जो भविष्य के लिए एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है। श्री गोयल ने ये बात फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल

0: भारत इनोवेट्स के समापन समारोह में कही। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय कृषि समीक्षा बैठक में चालू खरीफ सीजन के लिए देश भर में की गई तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कपास उत्पादन बढ़ाने, दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने और कम वर्षा वाले जिलों के लिए अग्रिम आकस्मिक योजनाओं पर विशेष बल दिया। श्री चौहान ने कहा कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी की 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआत होगी। श्री चौहान ने आज नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण के साथ हुई बैठक के दौरान ये बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि ऐतिहासिक ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स का शीघ्र ही पुनरुद्धार किया जाएगा और 1000 से अधिक गोरखा युवाओं को राज्य पुलिस बल में भर्ती किया जाएगा। दार्जिलिंग जिले के कुर्सियोंग में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री अधिकारी ने घोषणा की कि राज्य पुलिस बल में भर्ती शीघ्र ही खोली जाएगी, जिससे बड़ी संख्या में गोरखा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य भर्ती में कम से कम 30% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र पुलिस की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने और उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए 733 करोड़ रुपए से अधिक की आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये परियोजना संयुक्त वित्त पोषण मॉडल के माध्यम से लागू की जाएगी। इसमें केंद्र सरकार कुल लागत का 60% और राज्य सरकार 40% वहन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट परीक्षा से पहले अभिभावकों और उम्मीदवारों को जालसाजों से सावधान रहने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा कि टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जालसाज पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र साझा करने का दावा करके रुपयों की मांग कर रहे हैं। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि पुनर्परीक्षा का कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते पर हस्ताक्षर शुक्रवार को लुसेन शहर के पास स्थित बर्गेनस्टॉक रिजॉर्ट में किए जाएंगे। मंत्रालय ने कहा कि वो दोनों देशों के साथ इस संभावित समझौते पर हस्ताक्षर के संबंध में लगातार संपर्क में है, जिसकी घोषणा अमरीकी और ईरानी अधिकारियों ने सप्ताहांत में की थी। मौसम विभाग ने कल पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। Prime Minister Narendra Modi today addressed the outreach session on forging new partnerships and rebuilding international solidarity at the G7 summit in Avignon, France. Ministry of External Affairs informed that during the session, the Prime Minister underscored the importance of trust in building international partnerships, especially in an increasingly interconnected world. During the meeting, the Prime Minister also highlighted that India has always followed a humanity-first approach. He said this is reflected in India-led initiatives such as the International Solar Alliance, the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, the Global Biofuel Alliance, Mission Life, and the Ek Ped Mark Inam campaign. He further said that India's vision of international partnership is rooted in the timeless philosophy of Vasudeva Kutumbakam, the world is one family. The Prime Minister further added that this inclusive approach has also led India to be the first responder when natural disasters have struck various parts of the world, be it a cyclone in Sri Lanka, earthquake in Afghanistan, floods in Mozambique, or hurricane in Jamaica. Speaking about India's inclusive and sustainable growth, Mr. Modi elaborated that its mantra of Sarvajan Hitai, Sarvajan Sukhai has led to appreciable results in fostering financial inclusion, health security, digital identity, technology-led empowerment of people and women-led development. The Prime Minister also noted that international partnerships should move beyond the donor-recipient paradigm to one of solidarity and equal ownership. He also stated that lack of respect for international law was the biggest hurdle to building international